इस गाने को गाया है फहीम अब्दुल्ला ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म चांद मेरा दिल से सुनते रहिए चांद मेरा दिल ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: बच्चे लोग, तुमने कभी काला ताजमहल देखा है?
1: क्या, क्या, क्या?
0: कभी बिना पानी का समंदर देखा है?
1: नहीं तो।
0: रसगुल्ले से रसगुल हो जाए तो पता है कैसे दिखता है?
1: कैसा, कैसा, कैसा?
0: वो देखो, जीता जागता नमूना मिस शिवानी।
2: ए, क्या लगा रखा है ये सब? हाँ, क्या लगा रखा है?
0: अरे बोर हो रहे हैं यार, कुछ तो मस्ती करने दो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, अरे कुछ तो करो यार।

0: तू लगती है नानी।
1: ए, क्या लगा रखा है ये सब, क्या लगा रखा है?
2: अरे बोर हो रहे हैं यार, कुछ तो मस्ती करने दो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, अरे कुछ तो करो यार।

देखिए, जैसा ये दिन आता है ना, मेरे जहन में ये गाना तो बजना ही बजना है। अजी ये वाला नहीं, ये वाला आई रे खुशी खुशी खुशी खुशी। अजी मेरी बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो वीकेंड की बात कर रही हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणक्कम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आफरीन, आपके साथ ऑन 89.6 मिर्ची वन और द शो मिर्ची मॉर्निंग्स, एंड इट्स वीकेंड। मतलब आप सोच रहे हो आफरीन दुआ है तुम्हारा, थर्सडे आज वीकडे है आज? नहीं जी, मेरे लिए थर्सडे ही वीकेंड है दोस्त। मतलब थर्सडे को जो इंजॉय करने में मजा आता है ना शाम के वक्त, वो फ्राइडे को भी नहीं आता है, वो सैटरडे को भी नहीं आता है। सच कह रही हूँ, मतलब थर्सडे को अगर आपने शाम में अपना प्लान सेट कर लिया, शाम को ही पार्टी कर लिया, शाम को ही कहीं घूमने चले गए, शाम को ही शॉपिंग कर ली, तो ऐसा लगता है जब आप व्हेन यू गो बैक होम, अरे हमारी छुट्टी तो कल से है और जो वीकेंड के लिए सोचा था वो तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो कितनी खुशी मिलती है ना। That's why I say, आई रे खुशी। और ये थर्सडे वाली, ये वीकेंड वाली खुशी आपको मुबारक हो। राइट ईयर फ्रॉम माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहेगा और मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Gabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: हेलो
3: हेलो भाई संतोष से बात कर रहा हूँ। मेरी
2: बोल रहा हूँ।
3: हाँ जी भाई संतोष, यहाँ थाने से बोल रहा हूँ। आपको थाना आना पड़ेगा।
2: क्यों?
3: मैं आपको यही बता रहा हूँ, आप वहाँ पे गए थे जंतर मंतर?
2: गए थे जी।
3: आपने धरने पे बैठे थे? आप
2: जी बैठे थे।
3: वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ था, सबके लाठियाँ पड़ी थी, आपके रह गई हैं, आपकी तीन लाठियाँ लगनी है, यहाँ आके लगवा लो जल्दी से।
2: हाँ बताओ। जस्टिस के लिए गए थे सर वहाँ पे।
3: जस्टिस कैसा? जस्टिस भाई कैसा, मैं ये नहीं जानता जस्टिस। आप वहाँ पे गए थे, आप इस बात को मान रहे हो?
2: जी जी गए थे जी।
3: लाठी चार्ज हुआ वहाँ पे?
2: जी जी।
3: आपके पड़ी लाठी कोई?
2: मेरे तो नहीं पड़ी।
3: वही तो मैं कह रहा हूँ, आपके तीन लाठियाँ रख गई हैं यार, तीन लाठियाँ आपके लगनी है और आपको आने में परेशानी है, तो आपके एरिया इंचार्ज से बोल देंगे, वो वहाँ चले जाओ, वो दो तीन लाठियाँ मार देगा आपके यार। वैसे ही मीडिया ने हमें बदनाम कर रखा है, वो कह रहे हैं सबके लाठी पड़ी, आपके पड़ी नहीं, आप आगे बढ़वाओ यार जल्दी से।
2: सर आप नाराज क्यों?
3: नहीं नाराज क्यों की बात है, बताइए। हाँ बताओ।
2: सर अपने दोस्तों के कहने पे गया था, लाठी
3: तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आप बहुत दूर थे ना वहाँ से भाई, बहुत दूर थे,
2: बहुत दूर था
3: भाई। तने मैं यही तो कह रहा हूँ, बहुत दूर खड़े थे आप, आपके कोई लाठी लगी है नहीं लगी है बताओ?
2: दूर था तो सर मेरे कैसे लगती?
3: वही तो मैं कह रहा हूँ यार, आप बच गए, तीन लाठी रजिस्टर पे चढ़ाई, अब आपके नहीं लगाएंगे तो बात कैसे बनेगी?
2: सर नाराज क्यों है?
3: नहीं
2: तो
3: नाराजगी की तो बात है,
2: मैं दोस्तों के कहने पे गया
3: तो मैं आपसे, मैं भी आपका दोस्त हुआ, आपको आ जाओ, तीन लाठियां मारेंगे आपके, छोड़ देंगे आपको यार, क्या परेशानी है? वो भी हमसे परेशानी ये हो गई कि रजिस्टर में तीन लाठी चढ़ा दी, इसलिए मारनी है भाई, जल्दी आ जाओ भाई यार।
2: नहीं
3: यार, नहीं नहीं यार, मेरे को तमीज सिखा रहे हैं आप, हैं मेरे को तमीज सिखा रहा, मैं यार तमीज से बात कर रहा हूँ, मैं तमीज से बात कर रहा हूँ भाई, इस बात समझ में नहीं आ रही, लाठी चार्ज हुआ था उसमें तीन लाठियां तुम्हारे नाम की है,
2: वो
3: बहुत दूर था, नाराज वाली बात है यार। ओके चलो लाठी मत करो, लाठी नहीं मारेंगे, मुर्गा बन जाओ। संतोष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। भैया मुझे किसी ने बताया था तुम धरने पे गए थे और तुम्हारी कोई लाठी नहीं लगी थी, वाला के वहाँ लाठी चार्ज हुआ था और अब तो अब मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए आप
2: कुकड़ों को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
5: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
4: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
6: 89.6
4: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: देखो अब तो कंफर्म हो गया है कि गर्मी जो है ऑफिशियली आ रही है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और मैं नहीं भाई, कतर मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट कहता है कि भाई अब जो है द राइज ऑफ अल शर्तैन स्टार, ये हो चुका है। मतलब ये जो स्टार है ये आसमान में नजर आ गया है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगले 13 दिन यानी तकरीबन 2 हफ्ते हमारे कतर में स्ट्रॉन्ग नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स नजर आएंगी आपको। उसके अलावा बहुत सारी जो ये विंड्स है ना, डस्ट स्टॉर्म्स बहुत लेकर आता है, अनस्टेबल वेदर होता है, एंड यू आर डेफिनेटली going to experience a noticeable rise in temperatures. लेकिन अगर आज की खास temperature की बात करें तो वो आंकड़ों में क्या कहता है, जरा देख लेते हैं।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट,
0: देखिए वेदर अपडेट ये कह रहा है दैट मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस पर है, मिनिमम 30 पर है, एक्चुअल फील्स जो है वो रहेंगी 32 पर। पर ऑल इन ऑल यही है कि भाई थोड़ी सी ह्यूमिडिटी अभी हल्की सी कम है क्योंकि हवाएं बहुत चल रही है ना। तो चलिए ठीक है, इसे अच्छी साइन मानते हुए वीकेंड एंजॉय कीजिए यार। गर्मी खली वाली जो वक्त है अब है, शाम के वक्त पर ज्यादा गर्मी नहीं होती, उसे पूरी तरह से एंजॉय करते हुए बने रहिए मेरे साथ यानी माइक से दिल तक आफरीन के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: feeling strong.
1: मिर्ची स्टोरीज
2: स्टोरीज बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार थाईलैंड में एक बंदा था जिसकी अंतिम इच्छा थी कि उसके अंतिम संस्कार में चीयर गर्ल्स आए।
4: हाँ इसका भी सही है, इसने अपनी आफ्टर लाइफ पार्टी का फुल प्लान सेट कर रखा था और ऊपर से अब ये शोक सभा नहीं शौक सभा होगी।
0: मिर्ची इट्स हॉट।

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कदर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

देखिए, भले दुनिया जितनी भी चाहे एडवांस हो जाए, लेकिन कुछ पुरानी चीजें जो है ना, वो कभी भी रिप्लेस होनी नहीं चाहिए। और मेरा ख्याल है उनमें से एक है खिताब, है ना। मतलब डिजिटल दुनिया आ गई है, ऑडियो बुक्स आ गई है, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, पॉडकास्ट एंड ऑल दीज थिंग्स, लेकिन जो एक किताब की खुशबू होती है, किताब का जादू होता है, आई एम श्योर द मिलेनियल्स आउट देयर हु आर लिसनिंग टू मी, यू विल रिलेट टू इट। वो पहली नॉवल शायद जो आपने पढ़ी होगी, वो भले ही वो साइंस साइफाई हो या फिर मिस्ट्री वाली हो या रोमांटिक हो, एंड स्कूल की किताबें क्यों ना हो भाई, एक किताबों के साथ में हमारा रिश्ता कितना पुराना है ना, तो बस उसे रिवाइव क्यों ना करें। सो वेल, दोहा वाले रेडी हो जाइए, बिकॉज मच अवेटेड दोहा इंटरनेशनल बुक फेयर वापस आ रहा है, एंड द डेट्स आर 14 से लेके 23 मई तक एट द आइकॉनिक दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर। और बता दो, ये कोई छोटा मोटा बुक मेला नहीं है, बस ये रीजन का सबसे पुराना और लार्जेस्ट बुक फेयर में से एक है। ये पहली बार लॉन्च हुआ था इन द ईयर 1972, मतलब इस फेयर ने जनरेशन को ग्रो होते देखा है। इस बार अराउंड 500 पब्लिशिंग हाउसेस फ्रॉम 40 प्लस कंट्रीज एक ही रूफ के नीचे होने वाले हैं, मतलब प्योर लिटरेरी मल्टीवर्स वाइब्स। वाओ भाई, आजकल ना हम सब रील्स को स्क्रॉल करते रहते हैं, अटेंशन स्पैन इतना इंस्टेंट नूडल जैसा बन गया है, तो मे बी दिस फेयर सिर्फ बुक्स खरीदने का नहीं, अपने फोकस को शायद रीबूट करने का भी एक चांस हो सकता है। और बेस्ट पार्ट, ये सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं है, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, कल्चरल एक्टिविटीज, मतलब अगर आपको राइटिंग, पोएट्री, सेल्फ ग्रोथ, बिजनेस, पेरेंटिंग या इवन कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट है, तो यहाँ आइडियाज का पूरा भंडार आपको मिलने वाला है। चलिए टाइमिंग भी नोट कर लीजिए, 14th मई का ओपनिंग है, उसके अलावा 11:45 AM से लेकर 10 PM डेली आपको ये 9 AM से मिलेगा, खाली फर्स्ट डे 11:45 का है। अगर फ्राइडे की बात करें तो 3 PM से लेकर 10 PM तक है, एंड यू नो वॉट, मजे की बात, इन सबके बीच दैट एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री। माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
2: शाहरुख खान ऐश्वर्या राय।
3: वो उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश जोश जोश।
2: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
3: सलमान खान एंड सैफ अली खान, वो तो उन्होंने कौन से पिक्चर में भाई।
2: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होंगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
3: मैं मुझे नहीं पता।
2: हम साथ
3: कौन
2: साथ
3: सी है? ओ हाँ, हम साथ साथ है। और
2: नाना पाटेकर कटरीना कैफ,
3: ये भाई बहन थे। वेलकम।
1: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्ड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: Weather check brought to you by RSL Group of Company. Ab pao Qatar mein delivery riders aur driver ki job. For bright future call now 3100-0813. Mirchi Mornings brought to you by Kim's Health Medical Center.
5: Khat khat.
6: Kaun hai?
5: Ajju.
6: Ajju kaun?
5: Ajju na aaye baal ma, saavan beeta jaye. Hoye.
6: Khat khat. Who that?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मैं मराठी हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड बंगाली है, उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कैसे समझाऊं?
1: अरे कोचू, बंगाली है तो बंगाली में समझाना।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस।

0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot. 89.6 Mirchi One. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी का इशारा सुबह के 7 बजे की तरफ और आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स इट्स हॉट।

0: देखिए दिस इज व्हाट आई लाइक, मतलब ज्यादा इंतजार नहीं करवाते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और जरा देखते हैं भाई ओटीटी का हालचाल क्या चल रहा है।
1: भाभी जी एकदम लेटेस्ट डिजाइन है,
2: फ्रेश है भैया, फ्रेश है,
3: एकदम नया आया है।
4: अरे मार्केट में नया क्या है,
0: देखिए नया तो ये है दैट जो मूवी इतनी ज्यादा चर्चे में इंडिया में थी वो आ रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, और पार्ट टू की बात कर रही हूँ मैं, एंड इट इज धुरंधर द रिवेंज जो पार्ट टू है। एंड इतनी जल्दी, मतलब आपको यकीन नहीं आ रहा है ना कि यार अभी तो ये मूवी थिएटर में लगी। मतलब देखो भाई उन लोगों ने कमा लिया जितना कमाना था, लोगों ने देख लिया है जिनको देखना था। अब जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम भाई नहीं, हम तो भाई वो ढीट लोग हैं, हम थिएटर में जाकर देखेंगे ही नहीं, पैसा खर्च करेंगे ही नहीं, हम घर पर ही देखेंगे, नेटफ्लिक्स पर। So yes, Netflix पर धुरंधर 2 आ गई है और आप यहाँ पर देख सकते हो। Well, this movie has, मतलब इतने ज़्यादा records तोड़ दी है, super duper hit, the movie of this year 2026, रणवीर सिंह की acting की इतनी तारीफ हुई है। लेकिन हालांकि मैं ऐसे genre की movies की generally इतनी fan नहीं हूँ, बहुत ही ज़्यादा violence, मतलब मैंने part 1 देखा था and I just couldn't take it। Well, अगर आप शौकीन हो इस type की movie के, then धुरंधर 2 is for you। Well, आज मेरे recommend डेशन में सिर्फ धुरंधर ही नहीं है, और दो चीजें हैं जो दूसरी है, दैट इज कर्तव्य। और ये सैफ अली खान की मूवी है, और जब सैफ अली खान ना ऐसे सीरियस अवतार में आते हैं ना बहुत सही लगते हैं। तांडव करके भी उनका एक आया था सीरीज, उसका पार्ट टू अभी तक आया नहीं है, लेकिन दिस वन कर्तव्य इज अ मूवी जो नेटफ्लिक्स पर आई है। और इसके साथ इनके साथ जो है स्टारकास्ट बहुत अच्छा है, रसिका दुग्गल है, संजय मिश्रा है एंड मैनी मोर। सो दिस स्टोरी इज अबाउट अ डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर कॉट इन अ ग्रिपिंग मॉरल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज ड्यूटी एंड हिज फैमिली सेफ्टी। मजे का रहेगा आई एम श्योर। अपार्ट फ्रॉम दैट द लास्ट वन ऑन माय लिस्ट इज सपने वर्सेस एवरीवन सीजन 2, और ये मैं पिछले हफ्ते भी मैंने रेकमेंड किया था। अगर अब तक ये आपने देखा नहीं है देन यू शुड वॉच द सीजन 1 एज वेल। यार कभी कभार जो छोटे एक्टर्स होते हैं ना उनकी एक्टिंग कमाल होती है भाई, ये थिएटर एक्टर वाले एक्टर्स है। सो फॉर सम रियल स्टोरी, सम ग्रेट एक्टिंग, सपने वर्सेस एवरीवन इज योर पिक। अमरीश वर्मा का डायरेक्टेड, अमरीश वर्मा की एक्टिंग, एवरीथिंग इज अमेजिंग। फिलहाल तो आफरीन आपके साथ जुड़ी है माइक से दिल तक राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो,
3: गुड इवनिंग मिस्टर मनोज.
2: गुड इवनिंग
3: मिस्टर मनोज, मैं तिवारी बोल रहा हूँ ऑल इंडिया चिल्ड्रन सोसाइटी से.
2: ओके
3: सर, आपको थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि हम हर हफ्ते एक फंक्शन रखते हैं जिसमें ज्यादातर पेरेंट्स और ज्यादातर बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. अनफॉर्चुनेटली आप इत्तेफाक से यहाँ पे आ नहीं पाए, तो हम उन लोगों को भी फोन कर रहे हैं और उनसे सवाल जवाब पूछ रहे हैं ताकि बच्चे की तरह उनकी भी नॉलेज अच्छी रहे. राइट फाइन. तो सर आपसे दो चार सवाल करेंगे प्लीज, आपके पास दो मिनट होंगे और यहाँ पे कई लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं. हमने आपको कनेक्ट कर रखा है तो कुछ सवाल आपके होंगे, जवाब देने पड़ेंगे. राइट सर. मिस्टर मनोज, आपके सवाल ये रहे, टू टू जा
2: फोर.
3: वेट सर, वेट.
2: इवेंट ये फंक्शन कहाँ हो रहा है?
3: सर यही पे लोधी रोड पे हो रहा है, अगर आप आना चाहते हैं तो आ भी जाइएगा. दूसरा आपका सवाल सर, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो
2: डर जाएगी.
3: गुड सर, वेरी गुड सर.
2: सर ये कोई इतने मुश्किल सवाल जवाब तो है नहीं.
3: सर आप चाहते हैं कि मुश्किल पूछे जाए आपसे, ये तो और आप हमारे लिए आसानी कर रहे हैं, हम तो जान के आसान.
2: मेरी नॉलेज चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं
3: सर? वही नॉलेज ही चेक कर रहे हैं, ताकि बच्चों की तो नॉलेज हम चेक करते ही रहते हैं. पेरेंट्स को अकल कितनी है, और प्लीज बुरा मत मानिएगा, अगर आप चाहते हैं तो आपसे हम ज्यादा मुश्किल सवाल पूछ सकते हैं बड़ों वाले.
2: पूछो यार.
3: अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 नहीं है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो
2: डर जाएगी.
3: गुड सर, वेरी गुड सर.
2: सर ये कोई इतने मुश्किल सवाल जवाब तो है नहीं.
3: सर आप चाहते हैं कि मुश्किल पूछे जाए आपसे, ये तो और आप हमारे लिए आसानी कर रहे हैं, हम तो जान के आसान.
2: मेरी नॉलेज चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं
3: सर? वही नॉलेज ही चेक कर रहे हैं, ताकि बच्चों की तो नॉलेज हम चेक करते ही रहते हैं. पेरेंट्स को अकल कितनी है, और प्लीज बुरा मत मानिएगा, अगर आप चाहते

0: ग्रेट मिस मनोज ग्रेट।
1: सर आपका अगला थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। सर पोषण मावई पोषण पाल लाल किले में क्या हुआ? 100 रुपए की चोरी चुराई, अब तो कहाँ आना पड़ेगा?
2: जेल में जाना पड़ेगा।
1: ग्रेट सर, ग्रेट। रेडियो मिर्ची पर जो भी मुझसे बात करता है उसका बन जाता है क्या?
2: समझा नहीं मैं।
1: मैं बताता हूँ सर, इसका जवाब है मुर्गा।
3: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपका प्यारा सा जो बेटा है रोहन, उसने आपका मुर्गा बनवाया है और ये क्विज उसी का था। जो भी नवेद से बात करता है वो खुद बोलता है क्या?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center. Mirchi Mornings, brought to you by KIMS Health Medical Center.
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
4: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। Qatar का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM Mirchi 1. It's hot.

देखो दिस इज अ नोन फैक्ट ना कि प्लानिंग जितनी आप सही से करते हो उतना ज्यादा एग्जीक्यूशन सही से होता है। And well, my friends, this applies to weekend as well. Very good morning. आप सुन रहे हैं Simply Afreen को, writer on Mirchi Mornings. और जब भी weekend आने वाला होता है या weekend होता है तब आप ना आपकी जो planning है वो पहले से करके रखोगे ना तो क्या time waste नहीं होता कि गाड़ी में बैठे फिर सोच रहे कहाँ जा सकते हैं यहाँ जा सकते हैं, सोचने का नहीं साफ decide करके आने का, क्या बोलते हैं। तो बस ऐसे ही यहाँ पर बता दूँ कि weekend पर हमारे कतर में क्या चला है, किधर किधर रौनक लगी है। वेल,

टॉकिंग अबाउट दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर की रौनक, पहले ये बता दूं भाई खिताबों की रौनक वहां लगी है। दोहा इंटरनेशनल बुक फेयर ये जो है वहां चल रहा है। टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक और फ्राइडे को 3 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। ये तो हो गया किताबी कीड़ों के लिए। उसके अलावा शॉपिंग वॉपिंग करना हो तो और थोड़ा सा फ्रेश प्रोड्यूस लेना है तो तोरबा मार्केट ऑन द ब्रिज, ये बड़ा यूनिक लगा मुझे। मतलब तोरबा मार्केट हमारे कतर में होते रहता है बट दिस टाइम इट्स ऑन द ब्रिज एट कनत कार्थियर at the Pearl Island, है ना? और इसकी जो डेट है, this is happening on 16th of May. चलिए, ये हो गया और उसके अलावा हमारा सर्कस तो चल ही रहा है, फुल फ्लेज चल रहा है और बड़ा सुपर डुपर हिट चल रहा है। अगर वो नहीं देखा अब तक है तो क्या मतलब टिकट्स अगर आप बुक करके प्लान करके जाओ। फोंटाना सर्कस विच इज अ वाटर थीम सर्कस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द मिडिल ईस्ट, नॉट ओनली कतर, एंड दिस इज हैपनिंग एट हयात प्लाजा के टेंट में। ठीक है, ये है जो उसकी टिकट्स ऑनलाइन बिक रही है तो आप वहां पर जाकर ले लीजिए। इट्स एट platinumlist.com। सो वेल, ये थी हमारी कतर की रौनक जो चल रही है आजकल। सो आप कहाँ जाने का सोच रहे हो इनमें से कुछ, या अपना ही कुछ और प्लान किया है? लेट मी नो। 5000196 इज माई नंबर। तब तक के लिए माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार थाईलैंड में एक बंदा था जिसकी अंतिम इच्छा थी कि उसके अंतिम संस्कार में चीयर गर्ल्स आए।
0: हाय इसका भी सही है, इसने अपनी आफ्टर लाइफ पार्टी का फुल प्लान सेट कर रखा था और ऊपर से अब ये शोक सभा नहीं शौक सभा होगी।
3: मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
4: अर्ज किया है
5: इरशाद।

0: IBE payments ka wah tarika. With IBE, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IBE app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IBE, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: Hello shops. Our product is phenomenal, one of a kind, but still profit नहीं हो रहा है. मैंने बाबा जी से advice ली तो कहते हैं
2: office के toilet में toilet paper white नहीं yellow लगाओ, profit आएगा.
1: relative से advice लो तो कहते हैं
3: काम को time दो, 25 घंटे काम करो, dark circles होंगे तो future bright होगा.
1: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ promotion fund के लिए, जिसके लिए आप 50% equity ले सकते हो.
4: भाई क्या कर रहा है तू? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है. गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट.
5: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ. कॉल नाउ 7070 7687.

0: एक जमाना था जब हम घर पर वॉलेट भूल जाते थे तो आधे रास्ते से वापस जाना पड़ता था, बट आई थिंक सो नो मोर जब फोन आपके पास है तो। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और ये डिजिटल दुनिया में अब ये सब पुरानी चीजें हो गई है, वॉलेट बटवा एंड ऑल दीज थिंग्स, एंड दिस इज ऑल रिप्लेस्ड बाय ऑल डिजिटल पेमेंट्स। और उसी तरह से आज हम बात करने वाले हैं आईपे के बारे में, जो कतर में एक रेवोल्यूशन ही लेकर आए हैं हम कह सकते हैं, ये डिजिटल पेमेंट्स हर किस्म की जो होती है उसे आसान करने में। और इस बारे में और भी डिटेल्स देने के लिए हमारे साथ जुड़ गई है मिस आलिया अहमद, हेड ऑफ मार्केटिंग आईपे विच इज अ वोडाफोन कतर कंपनी। वेलकम टू द स्टूडियो मिस आलिया।
1: Hi Afreen, thank you so much for having me here.
0: And मिस आलिया, आईपे के बारे में हम हर रोज इनफैक्ट बातें करते हैं यहाँ पर, एंड आईपे से कितनी जिंदगी आसान हो गई है ये आप हम बता सकते हैं कैसे?
1: बेसिकली आईपे को हमने डिज़ाइन किया है आपकी डेली नीड्स को जहन में रख के। सो जो भी एक्सपैट्स यहाँ कतर में रहते हैं या फॉर दैट मैटर जो इवन लोकल्स भी हैं, आपकी पेमेंट्स की जितनी नीड्स हैं वो आईपे के थ्रू पूरी होती हैं। आपने रेमिटेंसेस भिजवानी हैं तो 145 कंट्रीज में आप आईपे के थ्रू अपनी रेमिटेंस भेज सकते हैं विद द बेस्ट एफएक्स रेट।
0: दैट इज इम्पॉर्टेंट, राइट?
1: विच इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट? कि हम सब चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम वैल्यू फॉर द बक्स दैट वी आर सेंडिंग वो मिले। सो आईपे इंश्योर करता है, वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ प्रमोशंस भी लॉन्च करते रहते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, ताकि उनको फीस जो वो पे करते हैं रेमिटेंस की उस पे भी हम इंसेंटिव दे सकें।
0: फैंटास्टिक। और उसके बारे में भी हम और बातें करेंगे यहाँ पर, जो प्रमोशंस है आपके आईपे में फिलहाल के लिए उसके बारे में और बहुत सी चीजें। और जैसे मिस आलिया ने बहुत सही बात ये बताई है कि इट्स आफ्टर ऑल आर हार्ड अर्नड मनी, तो हर एक पाई हर एक रियल इज इम्पॉर्टेंट, तो बस आईपे वहीं पर आपका फायदा करता है। सो मैं हूँ आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक। यू गॉट टू स्टे ट्यून्ड विद अस ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है। What did you steal in your childhood?
2: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे। मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसे चॉकलेट्स खत्म कर दिए कभी, और आज तक बोला नहीं कि वो मैं था।
1: What a way to confess, अभय देओल। अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज ए चाइल्ड। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
3: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.
4: यार बजट ही भी बन रहा है, प्राइसेस देखे, सब्जी को हाथ लगाओ तो करंट लगता है।
5: मैंने बोला था ना, मई 12th का वेट कर।
4: क्यों, सब सस्ता हो जाएगा क्या?
5: सब जगह नहीं, सिर्फ पेरिस हाइपरमार्केट में मुमताजा ब्रांच की 4th एनिवर्सरी है, 12th टू 18th में, इट्स अ बिग प्राइस रिडक्शन।
4: किलर ऑफर्स, मैं अभी बैकपैक करता हूँ।
3: जॉइन द सेलिब्रेशन ऑफ सेविंग्स, ह्यूज डिस्काउंट्स ओनली एट पेरिस हाइपरमार्केट। मुमताजा, डोंट मिस आउट।
6: खटखट,
7: कौन है?
6: दवे।
7: दवे कौन?
6: द वे यू लव मी, आई हाय मर जावा।
7: खटखट, हू दैट?
8: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: देखिए 5, 10, 15, 20 ये तो हमने अक्सर मॉल्स और सुपरमार्केट्स में सुना है, लेकिन डिजिटल पेमेंट्स में भी ऐसा हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है जब आई पे है हमारे साथ। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, और मैं अकेली नहीं हूँ आज स्टूडियो में, मेरे साथ जुड़ी है मिस आलिया अहमद, हेड ऑफ आई पे मार्केटिंग विच इज अ वोडाफोन कतर कंपनी, वेलकम। और हम यहाँ पर 5, 10, 15, 20 के बारे में आपने मुझे कुछ बताया, और थोड़ी देर में सोचा अच्छा ऐसा डिजिटल पेमेंट में भी होता है, कैसे भाई लोग भी यही सोच रहे हैं, आप बताइए जरा।
1: अच्छा देखिए, आई पे जो है ना सिर्फ आपको बेस्ट एक्सचेंज रेट्स देता है, बल्कि वी वुड लाइक टू बी वेरी कम्पेटिटिव विद द फी एज वेल। सो हमने अभी एक प्रमोशन लॉन्च की है जो कि चलेगी 31 जुलाई तक, जिसके अंदर अगर आप 500 रियाल तक भिजवा रहे हैं आउट ऑफ कतर तो आपको सिर्फ 5 रियाल की फीस देनी होगी। और मजे की बात यह है कि अगर आप 5,000 रियाल से ऊपर भिजवा रहे हैं तो सिर्फ आपको 20 रियाल फीस देनी होगी। सो हमने ये स्लैब्स बनाए हैं डिफरेंट, जिसमें आपको डिफरेंट अमाउंट्स पे डिफरेंट फी पे करनी होगी, लेकिन सबसे मजे की बात ये कि स्टार्ट्स फ्रॉम 5 रियाल एंड गोज अप टू 20 रियाल। और जैसे कि आप जानती हैं कि आप आई पे के थ्रू पर डे 25,000 रियाल्स भिजवा सकती हैं, सो विच मीन्स कि आपको सिर्फ और सिर्फ 20 रियाल देने हैं अगर आप 25,000 रियाल रेमिटेंस में अक्रॉस द वर्ल्ड 145 कंट्रीज में भिजवा रहे हैं तो।
0: वाओ, नाउ दैट्स अ डील, अ रियल डील भाई, मतलब यहीं पर आपके पैसे ऐसे बच रहे हैं। एंड मोस्ट बड़ी बात मुझे लगता है कि ये सारे डिजिटल पेमेंट ऐप की आपका वक्त बचता है कि आप कहीं जाते हो, पे करते हो, एंड दिस ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स
1: लाइन में खड़े होते हो।
0: एग्जैक्टली, टाइम इज मनी आजकल की दुनिया में। तो बस इसी के साथ मिसालिया जी के बारे में साथ और भी बातें होने वाली है राइटर ऑन द शो मिर्ची मॉर्निंग्स, माइक से दिल तक आप फ्रीन के साथ बने रहिएगा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेल्पलाइन।
1: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मेरे हस्बैंड ऑफिस से रोज लेट आते हैं और खाना खा के सीधा सो जाते हैं, क्या करूं?
1: अरे मैडम, उनको बोलो खाना खा के सीधा ना सोए, बाएं साइड सोए, उससे क्या हेल्थ भी अच्छी रहेगी।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Mirchi, Mirchi Mornings. Mirchi Mornings. Mirchi, Mirchi Mornings. Mirchi Mornings.
0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot. 89.6
2: मिर्ची घड़ी का इशारा सुबह के 8 बजे की तरफ साथ जुड़ गया है आफरीन के साथ राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: देखिए, बदलते जमाने के साथ तौर तरीके हमें बदलना होता है, तो फिर गिफ्टिंग के तौर तरीके क्यों ना बदले। जैसे आप जानते हैं, एवरीथिंग इज नाउ एट योर फिंगर टिप्स, लिटरली द वर्ल्ड इज एट योर फिंगर टिप। तो भाई कौन है, वो कौन सा जमाना है कि आप घर से निकलते हो, दुकान में जाते हो, किसी के लिए गिफ्ट्स लेते हो, स्पेशली अभी जब ईद का मौका आ रहा है, ईदी देनी है, गिफ्ट्स देनी है, तो भाई वेट, लेट मी मेक इट सिंपल फॉर यू, और रादर लेट समवन एल्स मेक इट सिंपल फॉर यू, बिकॉज वी हैव विद अस मिस आलिया अहमद, हेड ऑफ आई पे मार्केटिंग, विच इज अ वोडाफोन कतर ग्रुप। बताइए भाई, आप हमें बताइए कुछ तो सोल्यूशन इसका, जहाँ हमारा वक्त इतना जाता है गिफ्टिंग के लिए।
1: भाई अब डिजिटल लाइफस्टाइल के बारे में हम बात करते हैं, सब कुछ हम डिजिटल करना चाहते हैं, तो गिफ्टिंग क्यों हम ऐसे करते हैं कि हम जाके दुकान से गिफ्ट खरीदें, जैसे आपने बोला। सो इसके लिए अपने कस्टमर्स के बेहद इसरार पर हमने ये कैटेगरी इंट्रोड्यूस कराई है आईपे ऐप के अंदर, जिसके अंदर बेतहाशा गिफ्टिंग ऑप्शंस हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो गेमिंग हो, आप बात कर रहे हैं अमेजोन USA की, आप बात कर रहे हैं एक्सबॉक्स की, आप बात कर रहे हैं गूगल प्ले की, so these all things are available. आप सबको मैं कहूंगी कि एक दफा जरूर जाके वो कैटेगरी चेक करें, एंड आई थिंक यू विल बी वेरी वेरी एक्साइटेड, एंड डू ट्राई इट आउट दिस ईद विद योर यंगर वंस, जो कि आई एम श्योर इसको बहुत एंजॉय करेंगे रादर देन द कन्वेंशनल ईदी मेथड्स।
0: हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही कही है कि भाई जो ईदी छोटों को देते हैं और उनकी जो कैटेगरी ऑफ गिफ्ट होती है, वो शायद आपको आईपे पे जरूर मिलेगी। सो वेल, अगर आपके पास एप्लीकेशन ऑलरेडी है तो गो एंड चेक आउट, अगर नहीं है तो गो एंड डाउनलोड राइट अवे। मैं हूं आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक, ऑन विद शी इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na
1: vidva la burga. Milci, burga. Aga. हेलो
2: भाई साहब, श्रीनिवासपुरी थाने से बोल रहे हो। मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
1: मोबाइल
2: ये सर आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
1: क्या रिपोर्ट आ गई है?
2: यही कि ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
1: मोबाइल चोरी हो गया?
2: हाँ जी भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
1: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
2: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
1: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
2: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
1: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
2: भाई मैं कह रहा हूँ चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
1: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
2: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।
1: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
2: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
1: हाँ जी सर।
2: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
1: अच्छा बात करवा दो, कौन है ये?
3: ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर।
1: कुकड़ों को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर। मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर। अर्ज किया है
5: इरशाद, इरशाद

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
2: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: देखिए, मैं जानती हूँ, मैं आप हम इतने बिजी रहते हैं कि अक्सर ना हम वो गजनी मोड में आ जाते हैं। गजनी समझ रहे हो ना? हाँ, मतलब अक्सर ऐसे कहते हैं ना कि अरे ये तो मैं भूल गया, अरे मैं तो गजनी बन गया। तो ऐसा बहुत होता है कि हमारे इनफैक्ट कभी कभार इंपॉर्टेंट पेमेंट्स होते हैं, कुछ टाइमली पेमेंट्स आई वुड से वो करने होते हैं और हमें ध्यान में नहीं होता है। और ये सारी चीजें, इसका सोल्यूशन अब हम लेकर आए हैं रादर मिसालिया अहमद, हु इज हेड ऑफ मार्केटिंग आईपे, विच इज अ वोडाफोन ग्रुप कंपनी। और आप यहाँ पर बता रही थी कि भाई आईपे में इतने अच्छे से आप सिस्टमैटिक पेमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन मेरा एक कंसर्न हमेशा रहता है कि जब भी मेरे डोमेस्टिक हेल्प जो है उन्हें पेमेंट करनी होती है, तो मैं आई एम नॉट अ कैश पर्सन, ठीक है, मैं रखती नहीं हूँ, मेरे पास अक्सर 50 रियाल से ज़्यादा होता नहीं है, आई एम ऑलवेज ऑन द गो विद द डिजिटल पेमेंट्स। तो जब उन्हें देना होता है तो कैश कहीं से निकाल के देना होता है, इसका भी सोल्यूशन है क्या आपके पास?
1: बिल्कुल है आफरीन, और ये एक्चुअली घर घर की कहानी है। हमारे यहाँ बिना जब महीना शुरू होता है तो मुझे अपने हस्बैंड को बार बार रिमाइंड करना पड़ता है कि डोमेस्टिक हेल्प की जो है ना सैलरी निकाल कर लाएं कैश से। फिर वो कभी याद रहता है उनको, कभी नहीं याद रहता है, फिर वो लाते हैं, फिर वो, सो यू नो इट्स अ बिग हैसल। सो विद आईपे यू हैव दिस पे सैलरी ऑप्शन विद इन द ऐप, जिसमें बेसिकली आपने बस एक दफ़ा जाके सेट करना है। ऑफ कोर्स आपकी जो डोमेस्टिक हेल्प है उनके पास भी आईपे डाउनलोड होना चाहिए, उसका अकाउंट होना चाहिए,
0: बट बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है, जैसे आप कह रही हैं आईपे ही सिर्फ काफी है। क्या बात है,
1: आपको पता है कि आईपे का रजिस्ट्रेशन कितना आसान है, इट्स अ 2 मिनट थिंग लिटरली।
0: एग्जैक्टली,
1: सो जस्ट जो लोग नए हैं उनको बताने के लिए कि आपने अपना नंबर डालना है, आपने अपनी आईडी स्कैन करनी है, आपने अपनी पिक्चर लेनी है, एंड दैट्स अबाउट इट, आप आईपे पे रजिस्टर हो जाते हैं। सो इट्स एज सिंपल एज 1 2 3, राइट?
0: करेक्ट।
1: लेकिन आप जैसे ही अपनी डोमेस्टिक हेल्प जो के आपके घर में है उनका आईपे का अकाउंट खुलवाते हैं, और फिर अपनी ऐप में जाके आपने सेट कर दिया कि ये सैलरी इस तारीख को हर महीने इस अकाउंट में ट्रांसफर हो जानी है, बस आपने एक दफा करना है और फिर आपने भूल जाना है, बस ये याद रखना है कि हाँ आईपे के अकाउंट में पैसे होने चाहिए। तो जब वो लेट्स सपोज कि आपने फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ कहा है कि मेरी जो डोमेस्टिक हेल्प है उसको 2000 रियाल ट्रांसफर हो जाने चाहिए, इट विल बी ऑटोमेटिकली डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट एंड विल मूव टू द अकाउंट ऑफ योर डोमेस्टिक हेल्प।
0: ये बिल्कुल सही है, मतलब ये आई थिंक सो यूनिवर्सल प्रॉब्लम होगा यहाँ पर, घर घर का प्रॉब्लम होगा कि कैश घर में रहता नहीं है, तो उसकी जरूरत नहीं है अब, है ना, क्योंकि आईपे है। सो विद दिस आईपे के इतने सारे बेनिफिट्स यहाँ पर मिसालिया ने हमें बताए, एक तो 5, 10, 15, 20 का ऑफर बताया है उन्होंने, जहाँ पर बस 500 रियाल्स के तक का ट्रांसफर करना है तो 5 कतरी रियाल चार्जेस होंगे, 5000 से ज्यादा करना है तो 20 कतरी रियाल। दैट इज मतलब इतनी जबरदस्त रेट्स के साथ, उतना ही नहीं गिफ्ट वाउचर्स की भी हमने बात की यहाँ पर, एंड सो मेनी थिंग। थैंक यू सो मच फॉर

0: लेटिंग अस नो अबाउट सो मेनी डिटेल्स अबाउट आईपे, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट आईपे, ये हमारी जिंदगी आसान करने का एक तरीका था. रोहल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टू द स्टूडियो.
1: थैंक यू, रियली आई हैड अ गुड टाइम. थैंक यू आफरीन.
0: राइट, विद दिस आप बने रहिएगा मेरे साथ, यानी माइक से दिल तक आफरीन के साथ, और मिर्ची के साथ.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार थाईलैंड में एक बंदा था जिसकी अंतिम इच्छा थी कि उसके अंतिम संस्कार में चीयर गर्ल्स आए।
3: हाय, इसका भी सही है। इसने अपनी आफ्टर लाइफ पार्टी का फुल प्लान सेट कर रखा था और ऊपर से अब ये शोक सभा नहीं शौक सभा होगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
5: कथक के हर कदम में छुपा है ग्रेस, कल्चर और कॉन्फिडेंस। एम के आर्ट्स एकेडमी अब दो ब्रांचेस में, अल वक्रा, अल जनूब गार्डन्स, ओल्ड एयरपोर्ट। 6 साल से लेकर हर एज के लर्नर्स के लिए सर्टिफाइड कोर्सेज अवेलेबल। एनरोल नाउ, कॉल या व्हाट्सएप करें 5112424। एम के आर्ट्स एकेडमी, वेयर ट्रेडिशन मीट्स एक्सलेंस।
6: When you're hungry for real flavor, think Indie Grill. Authentic Indian cuisine, rich spices, sizzling grills, unforgettable taste. Al Saad, West Bay and The Pearl. Dine in or take away. Indie Grill, where Indian flavors come alive.
7: नहीं! बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
8: अरे, पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
9: कैसे रुक सकता है?
4: Qatar ka number one radio station. 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: अगर आपको ये लग रहा है कि कतर में अब गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है तो नो माय फ्रेंड्स, कतर में और भी बहुत सी चीजें यानी ग्रैंड एक्सपीरियंसेस शुरू होने वाली है। और बात हो रही है अबाउट विजिट कतर समर कमबैक कैंपेन के बारे में। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आफ्टरनून है आपके साथ राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और आज की बड़ी गर्मा गर्म खबर में ये है,
1: क्या खबर कतर?
0: खबर ऐसी है दैट विजिट कतर ने अनाउंस किया है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव समर कैंपेन जो 1 मई से सितंबर एंड तक चलेगा। अब ये कैंपेन जो है ये सिर्फ टूरिस्ट के लिए नहीं है, दिस इज बल्कि अ वेरी स्ट्रांग मैसेज दैट यू गॉट टू वेट एंड वॉच हाउ कतर इज रेडी टू बाउंस बैक बिगर एंड बेटर। रीसेंट रीजनल स्लो डाउन के बाद टूरिज्म सेक्टर में थोड़ा पॉज जरूर आया है, लेकिन अब गियर्स चेंज हो चुके हैं। विजिट कतर ने ऑफिशियली ये क्लियर किया है कि दे used this time wisely, planning, partnerships और preparation के साथ अब return हो रहे हैं full force में, you get it? अब देखिए इस summer का major focus जो है वो family friendly activities पर होने वाला है, जैसे hotels और hospitality sector की तरफ है। उसके अलावा बात करते हैं entertainment side, that's also quite vibrant। जैसे recently कतर ने launch किए हैं 2 नए beaches, that is the Nami Beach और Ladies Only Beach। तो ये हो गए leisure के 2 strong options। साथ ही साथ ये जो लास्ट हॉट व्हील इवेंट्स का रिस्पांस इतना जबरदस्त था कि ऑलमोस्ट हर दिन सोल्ड आउट गया है, इससे ये जरूर सिग्नल मिलता है कि पब्लिक का एपेटाइट फॉर लाइव इवेंट्स और फैमिली एंटरटेनमेंट काफी स्ट्रांग है इन कतर, है ना। यहां पर एक और एक्साइटिंग अपडेट ऐसी है दैट टॉय फेस्टिवल भी इस साल वापस आ रहा है बिगर स्केल पर। लास्ट ईयर इस इवेंट में 120,000 से ज्यादा विजिटर्स अट्रैक्ट किए गए थे और इस साल टारगेट और भी ज्यादा है। तो देखिए टूरिज्म सिर्फ फ्लाइट्स और होटल का नाम नहीं होता है, टूरिज्म एक कंट्री का कॉन्फिडेंस मीटर होता है और कतर का मीटर क्लियरली अपवर्ड्स जा रहा है स्मार्ट प्लानिंग, रेजिलियंस और फैमिली फोकस की तरफ। दैट इज आवर कतर माय फ्रेंड्स। मैं हूं आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक, राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

देखिए कतर में अगर कोई चीज का बेसब्री से इंतजार होता है तो वो है ईद का। एंड थैंक्स टू कतर की हुकूमत जो दिल खोल के इतनी छुट्टियां जो देती है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू सिंपली आफरीन को राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड टॉकिंग अबाउट ईद की छुट्टियां, कतर में हर एक इंसान इस छुट्टियों को मनाता है। कोई यहां पर अपनों के साथ में फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ सेलिब्रेट करके, तो कोई बाहर घूम कर वेकेशन प्लान्स बनाकर या अपने होम टाउन विजिट करके। एंड ऑन दिस नोट कतर कैलेंडर हाउस के एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 27 मई को ईद उल अदा का पहला दिन हो सकता है। Yes, you heard it right. और 18th में से दुहल्हज्जा शुरू होने के expectations भी है। So well, आपके क्या plans है this Eid? Let me know. वैसे अभी तक छुट्टियों की जो dates है वो आए नहीं है, वो कुछ ही दिनों में आ जाएंगे और हम यहाँ पर आपको बता देंगे। लेकिन जहाँ आपको ईद का एक अंदाजा तो अब आ गया है कि अराउंड विच डेट्स है, तो कुछ तो सोचा होगा अपने ईद में यहाँ रहना है, कहीं जाना है, या आर यू प्लानिंग ऑन सम वेकेशंस? 5000196 इज माई नंबर, लेट्स कनेक्ट हियर। तब तक के लिए माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिबलिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
3: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
4: वीडियो गेम्स बंद हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
3: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
2: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
5: Cut, cut.
6: Who that?
5: Akbar.
6: Akbar who?
5: अरे अकबर बता दिया है, बार बार नहीं ना बता पाएंगे।
6: Cut, cut. Who that?
7: Only on 89.6 Mirchi 1.
1: Mirchi. It's hot. It's hot.

0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
1: 89.6
0: Mirchi One. It's hot. Mirchi Mornings brought to you by Kim's Health Medical Center.
2: मिर्ची घड़ी का इशारा सुबह के 9 बजे की तरफ और आप सुन रहे हो सब्जी आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
3: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.

0: देखिए दिस इज व्हाट आई लाइक, मतलब ज्यादा इंतजार नहीं करवाते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट ऑन विची मॉर्निंग्स। और जरा देखते हैं भाई ओटीटी का हालचाल क्या चल रहा है।
1: भाभी जी एकदम लेटेस्ट डिजाइन है,
2: फ्रेश है भैया, फ्रेश है,
3: एकदम नया आया है।
4: अरे मार्केट में नया क्या है,
0: देखिए नया तो ये है दैट जो मूवी इतनी ज्यादा चर्चे में इंडिया में थी वो आ रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, और पार्ट टू की बात कर रही हूँ मैं। एंड इट इज धुरंधर द रिवेंज जो पार्ट टू है, एंड इतनी जल्दी, मतलब आपको यकीन नहीं आ रहा है ना कि यार अभी तो ये मूवी थिएटर में लगी रही। मतलब देखो भाई उन लोगों ने कमा लिया जितना कमाना था, लोगों ने देख लिया है जिनको देखना था। अब जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम भाई नहीं, हम तो भाई वो ढीठ लोग हैं, हम थिएटर में जाकर देखेंगे ही नहीं, पैसा खर्च करेंगे ही नहीं, हम घर पर ही देखेंगे, नेटफ्लिक्स पर। So yes, Netflix पर धुरंधर 2 आ गई है और आप यहाँ पर देख सकते हो। Well, this movie has, मतलब इतने ज़्यादा records तोड़ दी है, super duper hit, the movie of this year 2026, रणवीर सिंह की एक्टिंग की इतनी तारीफ हुई है। लेकिन हालांकि मैं ऐसे जॉनर की मूवीज की जनरली इतनी फैन नहीं हूँ, बहुत ही ज्यादा वायलेंस, मतलब मैंने पार्ट 1 देखा था एंड आई जस्ट कुडंट टेक इट। अगर आप शौकीन हो इसका, इस टाइप की मूवी के, then धुरंधर 2 is for you। Well, आज मेरे recommend डेशन में सिर्फ धुरंधर ही नहीं है, और दो चीजें हैं जो दूसरी है, दैट इज कर्तव्य, और ये सैफ अली खान की मूवी है। और जब सैफ अली खान ना ऐसे सीरियस अवतार में आते हैं ना, बहुत सही लगते हैं। तांडव करके भी उनका एक आया था सीरीज, उसका पार्ट टू अभी तक आया नहीं है, लेकिन दिस वन कर्तव्य इज अ मूवी जो नेटफ्लिक्स पर आई है। और इसके साथ, इनके साथ जो है स्टारकास्ट बहुत अच्छा है, रसिका दुग्गल है, संजय मिश्रा है, एंड मैनी मोर। सो दिस स्टोरी इज अबाउट अ डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर कॉट इन अ ग्रिपिंग मॉरल conflict between his duty and his family's safety. मजे का रहेगा, आई एम श्योर। अपार्ट फ्रॉम दैट द लास्ट वन ऑन माई लिस्ट इज सपने वर्सेज एवरी वन सीजन 2, और ये मैं पिछले हफ्ते भी मैंने रिकमेंड किया था। अगर अब तक ये आपने देखा नहीं है देन यू शुड वॉच द सीजन 1 एज वेल। यार कभी कभार जो छोटे एक्टर्स होते हैं ना उनकी एक्टिंग कमाल होती है भाई, ये थिएटर एक्टर वाले एक्टर्स है। सो फॉर सम रियल स्टोरी, सम ग्रेट एक्टिंग, सपने वर्सेज एवरी वन इज योर पिक। अमरीश वर्मा का डायरेक्टेड, अमरीश वर्मा की एक्टिंग, एवरीथिंग इज अमेजिंग। फिलहाल तो आफरीन आपके साथ जुड़ी है माइक से दिल तक, राइट ऑन विच इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Yes.
3: Motor se bol rahe hain?
2: हाँ जी
3: मैडम, प्लीज किसी मैकेनिक को बुला देंगे, मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है।
2: ठीक है सर,
3: 5 सेकंड जल्दी।
4: इतने में तो एक्सीडेंट हो जाएगा यार, जल्दी बुलाओ।
2: हेलो
3: हेलो
2: हेलो,
3: प्लीज जल्दी बता दो।
2: हेलो
3: हेलो, होल्ड नहीं कर सकता। हेलो,
5: हाँ जी सर।
3: सर प्लीज मेरे को बता दो, मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, ये किस तरह रुकेगी?
5: सर हैंड ब्रेक खींच दो।
3: एक सेकंड
5: सर, हैंड ब्रेक खींच दो सर।
3: एक सेकंड रुकिए
5: सर, साइड में, लेफ्ट साइड में।
3: ओ यार, मेरा वो छोले भटूरे वाला भी निकल गया, मैं रोज का दादा था, कैसे रुकूं? एक सेकंड
5: सर, इग्निशन ऑफ कर दो।
3: इग्निशन, एक सेकंड रुकिए, ये चाबी से बंद करने को बोल रहे हैं।
5: हाँ जी।
3: एक सेकंड सर, कोई रास्ता मालूम है जिस रास्ते पे ले सकता हूँ इसको?
5: मेरे को क्या पता कहाँ पे है।
3: मैं इस वक्त पालम की तरफ से निकल रहा हूँ, पालम एयरपोर्ट की तरफ से।
5: सर इसका हैंड ब्रेक खींच दो।
3: एक सेकंड हैंड ब्रेक नहीं खींचना, एक सेकंड कुछ और। ये हैंड ब्रेक ऊपर करते हैं?
5: हाँ जी।
3: ऊपर करने से नहीं हो रहा है, और कुछ बता सकते हैं? ब्रेक बिल्कुल गए,
5: बिल्कुल गए। एक्सेलरेशन छोड़ दो सर।
3: क्या करूँ?
5: एक्सेलरेशन छोड़ दो।
3: एक सेकंड रुकिए।
5: क्या हो गया?
3: गाड़ी ठुक गई।
4: मैडम, क्या नाम है आपका?
2: दिव्या,
4: मैं रेडियो मिर्ची से नावेद बोल रहा हूँ। छोटा सा मजाक किया था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया हमने।
2: I was so tense, I don't know what happened.
6: कुकड़ों को मिर्ची मुर्गा नावेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot, it's bugger। कतर में है और ड्राइविंग लाइसेंस भी है, क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
7: तो इंतजार खत्म, RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
6: अभी कॉल करें 3100813।
8: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
9: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
6: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
9: कम है के?
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
6: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

देखिए, भले दुनिया जितनी भी चाहे एडवांस हो जाए, लेकिन कुछ पुरानी चीजें जो है ना, वो कभी भी रिप्लेस होनी नहीं चाहिए। और मेरा ख्याल है उनमें से एक है खिताब, है ना। मतलब डिजिटल दुनिया आ गई है, ऑडियो बुक्स आ गई है, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, पॉडकास्ट एंड ऑल दीज थिंग्स, लेकिन जो एक किताब की खुशबू होती है, किताब का जादू होता है, आई एम श्योर द मिलेनियल्स आउट देयर हु आर लिसनिंग टू मी, यू विल रिलेट टू इट। वो पहली नॉवल शायद जो आपने पढ़ी होगी, वो भले ही वो साइंस साइफाई हो या फिर मिस्ट्री वाली हो या रोमांटिक हो, एंड स्कूल की किताबें क्यों ना हो भाई, एक किताबों के साथ में हमारा रिश्ता कितना पुराना है ना, तो बस उसे रिवाइव क्यों ना करें। सो वेल, दोहा वाले रेडी हो जाइए, बिकॉज मच अवेटेड दोहा इंटरनेशनल बुक फेयर वापस आ रहा है, एंड द डेट्स आर 14 से लेके 23 मई तक एट द आइकॉनिक दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर। और बता दो, ये कोई छोटा मोटा बुक मेला नहीं है, बस ये रीजन का सबसे पुराना और लार्जेस्ट बुक फेयर में से एक है। ये पहली बार लॉन्च हुआ था इन द ईयर 1972, मतलब इस फेयर ने जनरेशन को ग्रो होते देखा है। इस बार अराउंड 500 पब्लिशिंग हाउसेस फ्रॉम 40 प्लस कंट्रीज एक ही रूफ के नीचे होने वाले हैं, मतलब प्योर लिटरेरी मल्टीवर्स वाइब्स। वाओ भाई, आजकल ना हम सब रील्स को स्क्रॉल करते रहते हैं, अटेंशन स्पैन इतना इंस्टेंट नूडल जैसा बन गया है, तो मे बी दिस फेयर सिर्फ बुक्स खरीदने का नहीं, अपने फोकस को शायद रीबूट करने का भी एक चांस हो सकता है। और बेस्ट पार्ट, ये सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं है, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, कल्चरल एक्टिविटीज, मतलब अगर आपको राइटिंग, पोएट्री, सेल्फ ग्रोथ, बिजनेस, पेरेंटिंग या इवन कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट है, तो यहाँ आइडियाज का पूरा भंडार आपको मिलने वाला है। चलिए टाइमिंग भी नोट कर लीजिए, 14 मई का ओपनिंग है, उसके अलावा 11:45 AM से लेकर 10 PM डेली आपको ये 9 AM से मिलेगा, खाली फर्स्ट डे 11:45 का है। अगर फ्राइडे की बात करें तो 3 PM से लेकर 10 PM तक है, एंड यू नो वॉट, मजे की बात, इन सबके बीच दैट एंट्री इज एब्सोल्यूटली फ्री। माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार थाईलैंड में एक बंदा था जिसकी अंतिम इच्छा थी कि उसके अंतिम संस्कार में चीयर गर्ल्स आए।
3: भाई इसका भी सही है, इसने अपनी आफ्टर लाइफ पार्टी का फुल प्लान सेट कर रखा था और ऊपर से अब ये शोक सभा नहीं शौक सभा होगी।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: कथक के हर कदम में छुपा है ग्रेस कल्चर और कॉन्फिडेंस। एम के आर्ट्स एकेडमी अब दो ब्रांचेस में अल वक्रा अल जनूब गार्डन्स ओल्ड एयरपोर्ट। 6 साल से लेकर हर एज के लर्नर्स के लिए सर्टिफाइड कोर्सेज अवेलेबल। एनरोल नाउ, कॉल या व्हाट्सएप करें 5112424। एम के आर्ट्स एकेडमी वेयर ट्रेडिशन मीट्स एक्सलेंस।
6: एकदम सही सुना तुमने, किम्स हेल्थ पर मिल रहा है फ्री डेंटल कंसल्टेशन। कोई पेमेंट नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, बस पहले अपने डेंटल इश्यूज पहचानो, ट्रीटमेंट डिसाइड बाद में करो।
7: लिमिटेड ऑफर वैलिड फॉर जनरल एंड स्पेशलाइज्ड बोथ। बुक करो अपना फ्री डेंटल चेकअप सिर्फ किम्स हेल्थ पर।
8: दोस्ती का उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
9: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
10: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
11: खूब मिलेगा, मिलेगा।
12: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
13: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: कैसे कोई सभी को खुश कर सकता है, कोई आइसक्रीम या बिरयानी थोड़ी ना है हम। वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, और वक्त हो चला है कि आफरीन अपने डायरी से कुछ चंद लाइंस जो होते हैं वो आपके लिए यहाँ पर अर्ज करें।
1: आफरीन की डायरी से शायरी।
0: तो अर्ज किया है कि तेरे इश्क में लिखे हैं मैंने अल्फाज ऐसे ऐसे, तेरे इश्क में लिखे हैं मैंने अल्फाज ऐसे ऐसे, कुछ लोग हम पर फिदा हो गए, कुछ हमसे खफा हो गए। और होता है ना ऐसे जिंदगी में कि भाई सभी को खुश नहीं रख सकते हैं हम फिलहाल के लिए, भाई अपने सुकून और अपने इश्क की तरफ बस वहीं पर तवज्जो रखते हुए आगे बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। राइट इट ऑन मिर्ची आपकी सिंपली आफरीन के साथ, माइक से दिल तक, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: रजा मुराद, जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर द अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज द अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
3: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स्थ स्टैंडर्ड में मैं दो बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
2: वेल, रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood,
1: Bollywood, only on Mirchi, it's hot.

देखिए दोस्तों, हर हफ्ते की तरह, हर शो की तरह आज भी गुड बाय कहने का वक्त आ गया है, लेकिन आज का गुड बाय थोड़ी सी दिल के ज्यादा करीब है मेरे। और वो इसलिए क्योंकि दोस्तों आज मिर्ची मॉर्निंग्स का मेरा कुछ दिनों के लिए ब्रेक होने वाला है। इट्स गोना बी द लास्ट शो फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स, क्योंकि इंशाल्लाह मैं हज के सफर पर जा रही हूँ। एक ऐसा सफर जहाँ इंसान दुनिया से थोड़ा डिस्कनेक्ट होके अल्लाह ताला से रिकनेक्ट होता है। नो फिल्टर्स, नो नॉइज, नो रेस, बस दुआएं, सुकून और शुक्र। और इस वक्त दिल में एक ही चीज़ है, अगर कभी भी मेरे किसी बात से, मेरे किसी मजाक से या अनजाने में दिल दुखाया हो तो दिल से माफ़ी चाहती हूँ। जो लोग इस साल हज के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, अल्लाह आपका सफ़र आसान करे, आपकी इबादत कबूल करे और हर दुआ को रहमत बना दे। और जो अभी इंतज़ार में है, अल्लाह उन्हें भी अपने घर का बुलावा नसीब करे। मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, मैं भी हर खास जगह पर आप सभी को याद रखूँगी। जल्दी लौटूंगी, लेकिन तब तक माइक से दिल तक, दिस इज योर आरजे आफरीन साइनिंग ऑफ फ्रॉम मिर्ची मॉर्निंग्स, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड एंड क्लोजर टू हिम। टाटा, बाय बाय, सायोनारा। सुधरेगा मिर्ची, इट्स हॉट सेंटर।

0: मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची बताओ सवाल क्या है?
0: So I recently met a girl through arranged marriage setup. You know, she's good, but she earns way more than me. I feel there is a problem. क्या करूं?
1: तो तुम ये पूछ रहे हो कि वो तुमसे ज्यादा कमाती है तो मैं क्या करूं? शर्म करो शर्म.
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा.

0: ये खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज फ्रॉम द फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी 1994 में जब ये फिल्म रिलीज हुई, भाई इस गाने ने अपने आप में एक तहलका मचाया था. एंड वो आइकॉनिक ट्रैक जिसमें अक्षय कुमार नजर आए, जिसमें शिल्पा शेट्टी नजर आई, भाई ये कौन ही भूल सकता है. एंड मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही कॉलेज का ऐसा कोई फंक्शन हो या शायद ही घर का कोई ऐसा फंक्शन हो जिसमें इस गाने में परफॉर्मेंस जो है वो ना दी गई हो.
1: Mirchi Anshu.
0: Hey, welcome back. You're listening to me, Mirchi, and this is RJ Anshu with you. Well, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाने एक बार फिर से आ चुकी हूँ. एंड सच कहूँ, आज सुबह सुबह कुछ तो खास है जो मैंने एक बार फिर से पढ़ा. कोई तो खास बात है जो मेरे दिल को बस छू गई. एंड आपको पता है कि मेरा जो रिचुअल है ये फिक्स्ड है कि अगर कोई भी अच्छा थॉट मेरे ख्याल में आता है, एंड इफ आई कम क्रॉस समथिंग, आई जस्ट फील लाइक शेयरिंग इट विद यू ऑल. देखिए, लाइफ में ना अक्सर ये होता है कि हम बहुत कुछ सोचते हैं. सबसे ज़्यादा वक्त अगर इंसान किसी बात में बिताता है, सो दैट इज़ सोचने में, यू नो, थॉट्स. एंड ऐसा माना जाता है कि एक दिन में नियरली 70,000 थॉट्स जो है हमारे माइंड को क्रॉस करते हैं. कैन यू बिलीव इट, 70,000. मतलब इतने तो मुझे लोग भी याद नहीं कि मैंने अपने पूरे जीवन में या जिंदगी में मिले हो. लेकिन बात इतनी है ना कि रियलिटी अक्सर वो नहीं होती जो हमारे थॉट्स में होती है. इट इज़ जस्ट दैट मैक्सिमम चीज़ें हमारे थॉट में होती हैं एंड असल में बात जो होती है काफ़ी अलग होती है. अब इमेजिन करें कि अगर आपके थॉट्स जो हैं आपकी रियलिटी के साथ अलाइन हो जाए, तो भाई आपके अंदर का वो जो दर्द है ना कि भाई ऐसा हुआ तो हुआ कैसा. बेटा इतना समझ जाओ, जो सोचते हो वो चाहते हो कि अगर हो तो अच्छी बात है, और जो सोचते हो अगर चाहते हो कि वो ना हो, तो ऐसी बातों को अपने थॉट्स में भी एग्जिस्ट क्यों ही होने देना. क्यों, क्या कहते हैं आरजे गौरव, सुबह सुबह आ गए बेटा टिफिन खाने के लिए. ये वही कॉलेज का चोर बच्चा है जो औरों का टिफिन निकाल निकाल के खाया करता था.
2: मैं सच बोल रहा हूँ, ये इतनी देर से रेडियो पर थी और इधर मैं इसका टिफिन निपटा रहा था. इसके चेहरे पे एक टेंशन का भाव जो दिखा है मुझे.
0: नहीं, मैं एक्चुअल में बता रही हूँ, मैं जो बात करने वाली थी ना भूल गई. मतलब ये वही कैटेगरी का है. मतलब जब आप लंच बॉक्स में अपने टिफिन को खोले तो आपको रियलाइज होता है भाई टिफिन कहाँ गया.
2: आज लग रहा टिफिन कोई लाया नहीं था क्या. मैं
0: चलिए जी, मैं अपने टिफिन को बचाऊं, आप जो अपनी जरा सोच और सवालों को बचाएं. एंड गुड मॉर्निंग मैसेज भेजें 5000 1896. लेट्स गेट कनेक्टेड देयर. मीनवाइल नवराज हंस की आवाज, हर्षदीप कौर का साथ, एक बहुत ही प्यारा सा गाना फ्रॉम द फिल्म एक लड़की को देखा. पार्टी मोड ऑन हो जाए. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.
3: गुड़ वाली चाह किन्न पीती, बुआ जी का नाड़ा किन्न खिंचे.

0: Pepe Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Murga, murga. Na vidva la murga.
1: Mirchi, murga. Hello.
2: Hello, bhai Santosh se baat kar raha hu meri.
1: Ji bol raha
2: hu. Haan ji, bhai Santosh yahan थाने से बोल रहा हूँ, आपको थाना आना पड़ेगा।
1: क्यों?
2: मैं आपको यही बता रहा हूँ, आप वहाँ पे गए थे जंतर मंतर?
1: गए थे जी।
2: आपने धरने पे बैठे थे आप?
1: जी बैठे थे।
2: वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ था, सबके लाठियाँ पड़ी थी, आपके रह गई हैं, आपकी 3 लाठियाँ लगनी है, यहाँ आके लगवा लो जल्दी से।
1: हाँ, हम तो जस्टिस के लिए गए थे सर वहाँ पे।
2: जस्टिस कैसा जस्टिस भाई, कैसा? मैं ये नहीं जानता जस्टिस। आप वहाँ पे गए थे, आप इस बात को मान रहे हो?
1: जी जी गए थे जी।
2: लाठी चार्ज हुआ वहाँ पे?
1: जी जी।
2: आपके पड़ी लाठी कोई?
1: मेरे तो नहीं पड़ी।
2: वही तो मैं कह रहा हूँ, आपके 3 लाठियाँ रख गई हैं यार, 3 लाठियाँ आपके लगनी है और आपको आने में परेशानी है, तो आपके एरिया इंचार्ज से बोल देंगे, वो वहाँ चले जाओ, वो 2-3 लाठियाँ मार देगा आपके यार। वैसे ही मीडिया ने हमें बदनाम कर रखा है, वो कह रहे हैं सबकी लाठी पड़ी, आपके पड़ी नहीं, आप आगे बढ़वाओ यार जल्दी से।
1: सर आप नाराज क्यों?
2: नहीं नाराज की कोई बात है, बताइए। हाँ बताओ।
1: सर अपने दोस्तों के कहने पे गया था, कहाँ पे? बहुत दूर था सर लाठी।
2: तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आप बहुत दूर थे ना वहाँ से भाई,
1: बहुत दूर था सर
2: भाई। इतने मैं यही तो कह रहा हूँ, बहुत दूर खड़े थे आप, आपके कोई लाठी लगी है नहीं लगी है बताओ?
1: दूर था तो सर मेरे कैसे लगती?
2: वही तो मैं कह रहा हूँ यार, आप बच गए, 3 लाठियाँ रजिस्टर में चढ़ाई, अब आपके नहीं लगाएंगे तो बात कैसे बनेगी?
1: सर नाराज क्यों है?
2: नहीं
1: तो
2: नाराजगी की तो बात है,
1: मैं दोस्तों के कहने पे गया।
2: तो अब मैं आपसे, मैं भी आपका दोस्त हुआ, आपको आ जाओ, 3 लाठियाँ मारेंगे आपके, छोड़ देंगे आपको यार, क्या परेशानी है? वो भी हमसे परेशानी ये हो गई कि रजिस्टर में 3 लाठी चढ़ा दी, इसलिए मारनी है भाई, जल्दी आ जाओ भाई यार।
1: सर मैं शाम में आ जाऊंगा
2: यार। नहीं नहीं यार, मेरे को तमीज सिखा रहे हैं आप, हैं? मेरे को तमीज सिखा रहा है, मैं यार तमीज से बात कर रहा हूँ, मैं तमीज से बात कर रहा हूँ भाई, इस बात समझ में नहीं आ रही, लाठी चार्ज हुआ था उसमें 3 लाठियाँ तुम्हारे नाम की है,
1: वो
2: बहुत दूर था,
1: नाराज
2: वाली बात है यार। ओके चलो, लाठी मत करो, लाठी नहीं मारेंगे, मुर्गा बन जाओ। संतोष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। भैया मुझे किसी ने बताया था तुम धरने पे गए थे और तुम्हारी कोई लाठी नहीं लगी थी, हालांकि वहाँ लाठी चार्ज हुआ था और अब तो अब मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए आप
1: कुकड़ू को।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
3: और एड ब्रेक भी, मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
5: बार बार।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
3: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Well, Aditya Rakhani ki khoobsurat si awaaz and what a lovely track it is. Yaar, ye singer na kaafi kamaal and kaafi alag hai. Matlab, iski awaaz mein jo ek kharash hai na, yaar, ye wo wali hai jo gale mein khichkich nahi, balki dil ko sukoon deti hai. Mirchi Anshu. अजी, थोड़ा पड़ोसियों का हालचाल पूछ के आ जाएं। वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाने एक बार फिर से आ चुकी हूँ। बस अगर पड़ोसियों की बात करें तो मैं बस यूएई की बात कर रही थी। क्या है ना, इस वक्त कतर के एयर स्पेस को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो ग्रेजुअली हमारे लिए फ्लेक्सिबिलिटी फीजिबिलिटी बढ़ती जा रही है। अब देखिए ना, अगर यूएई ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो आबू धाबी के लिए डबल फ्लाइट्स जो हैं हर दिन अब अवेलेबल हैं। तो अगर आपको लगे ये पड़ोसियों का जाके हाल चाल पूछ के आना, तो दुबई के ऑप्शंस तो हैं अब आबू धाबी के भी आ गए, जरा जाके देख लो। वैसे पड़ोसियों से याद आया, हम जो है ना अपने पड़ोसियों के यहाँ बचपन में काफ़ी जाया करते थे। दो तीन रीजंस होते थे। एक तो खेलना होता था, उनके बच्चों के साथ खेल में बड़ा मजा आता था। सेकेंड, जब जब बर्थडे पार्टी उनके यहाँ होती थी, आंटी हमें एकदम अच्छे से कहती थी कि जो सबसे ज़्यादा गुब्बारे फुलाएगा, जो घर का डेकोरेशन सबसे अच्छी तरह से करेगा, उसको केक का सबसे बड़ा पीस मिलेगा। हाय, ऐसे पड़ोसी अब मिले तो कहाँ ही मिले। एंड तीसरा एक और रीज़न होता था, जब जब मम्मी कहती थी उनके यहाँ से जाके मतलब मिर्ची ले आओ, टमाटर ले आओ, हाय, मतलब अगर पड़ोसियों के साथ ये रिश्ता मेंटेन नहीं किया तो बताओ जिंदगी में आखिरकार क्या ही किया। क्या कतर में भी आपके ऐसे कोई पड़ोसी हैं जिनके यहाँ मिर्ची टमाटर का ये लेना देना यू नो प्रदान आन चलता रहता है? 5000 1896, आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतर या मिर्ची अंशु। चलिए जी, ये बात तो मैंने आप तक पहुँचाई दी। अभी फिलहाल काम की बात ये है कि फहीम अब्दुल्ला की आवाज़ में बहुत ही प्यारा सा नया गाना है, वो आप तक पहुँचाते हैं। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।
1: मिर्ची फ्रेश माल।
2: ड्रीमी वाइब और रोमांटिक फील के साथ सुनो शांत मेरा दिल।

इस गाने को गाया है फहीम अब्दुल्ला ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म चांद मेरा दिल से सुनते रहिए चांद मेरा दिल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: फ्रेशी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार थाईलैंड में एक बंदा था जिसकी अंतिम इच्छा थी कि उसके अंतिम संस्कार में चीयर गर्ल्स आए।
3: हाय इसका भी सही है, इसने अपनी आफ्टर लाइफ पार्टी का फुल प्लान सेट कर रखा था और ऊपर से अब ये शोक सभा नहीं शौक सभा होगी।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
6: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: Well, बादशाह अरिजीत सिंह की खूबसूरत सी आवाज and what a power pack track it is. मतलब बादशाह एंड अरिजीत सिंह का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से मैजिकल हो सकता है भाई, ये तो मैंने कभी ना सोचा था.
1: मिर्ची अंशु
0: वैसे कोई विसल भी इतनी मैजिकल हो सकती है, ये भी मैंने पहले कभी ना सोचा था. वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू. वेल, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाने एक बार फिर से आ चुकी हूँ. एंड वैसे भी अगर आज के दिन को देखने की कोशिश करें सो इट इज इंडीड वेरी स्पेशल. फाइनली जिस दिन का बेसब्री से होता है इंतजार, वो हमारी लाइफ में आ चुका है. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट थर्सडे. तो भाई अभी से आपकी तैयारी कराना मैं शुरू करूँ, मतलब देखिए फिल्में देखना है, मूवी देखना है, सीरीज देखना है, ये काम वीकेंड में जरूर करना है. घूमना फिरना, खाना आराम, ये तो होता रहेगा, लेकिन यार फिल्मों से ना एक अलग कनेक्शन है. कहीं ना कहीं फिल्में जो हैं आपको किसी बात की कभी याद दिलाती हैं, या तो कोई स्टोरी जो आपकी जिंदगी से लिंक होती है, मर्ज होती है, या तो फिर कई कहानी ऐसी होती हैं जो आपको लाइफ में डायरेक्शन दे देती हैं. इसलिए तो कहते हैं इंडियन सिनेमा जो है भाई, इसका तोड़ कोई हो ही नहीं सकता. चलिए जी, कोई थी बहुत ही प्यारी सी विसल है जो इस वक्त मैं आपके बीच पेश करूंगी. आपको सुनना है एंड मुझे ये बताना है कि भाई ये विसल बजी तो आखिरकार किस एक्टर के जरिए बजी, इन किस फिल्म में बजी. फटाफट से करेक्ट आंसर एज यूजुअल 5000 1896. वी विल गेट कनेक्टेड देयर इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु. जवाब जो है अगर अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर भेजेंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी. जनता आवाम तक मैं वो पहुंचाऊंगी. बट हियर

Whoa, now this is so soothing. भाई कोई और सिटी बजाए ना तो हमारे घर वाले जो हैं उसकी सब कुछ बजा दिया करते थे लेकिन अगर ऐसी कोई सिटी बजाए तो मैं अपने घर वालों तक बात जो है वो पहुँचने ही ना देना. 5000 1896 आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. ये वसल किस फिल्म से है? Meanwhile, शान की आवाज़ गायत्री अय्यर का साथ ही अगला रोमांटिक ट्रैक कमिंग योर वे. एंजॉय. बिंदी का नाम अंशु.

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: हिमेश रेशमिया, अगर आप एक रेडियो जॉकी होते तो आप किस टॉपिक पर प्रोग्राम करते?
3: मैं डेफिनेटली लव का ही प्रोग्राम करना चाहता, जो प्रॉब्लम है कॉलर की और रोमांस में, लव में छोटी छोटी बातें, वो कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
2: हिमेश रेशमिया, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: खट खट।
5: Who there?
4: बनता।
5: बनता who?
4: अरे बनता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को।
5: खट खट। Who there?
6: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot.

0: Well, Sachin Jigar ki composition and what a lovely track it is by Raghav Chaitanya from the film Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya. Lekin us waqt na meri baaton mein aapka jiya jo hai ulajhta nahi hai, lekin aapki zindagi ki sari uljhanon ko kam and door karne ke liye main jo hoon zarur aa hi jaati hoon.
1: मिर्ची अंशु
0: वैसे वो जो लास्ट वाली लाइन थी ना वो 101% अप्रोप्रिएट है. वो तू कमाल है. हाय मेरी आवाज हो ना हो लेकिन हाँ मेरी बातें हैं आपको और मेरा जो कनेक्शन है ये जरूर बड़ा ही कमाल है. तभी तो आपके इतने भर भर के रिप्लाईज हैं एंड मजा आ गया यार. मतलब एक बार फिर से हम 90s के एरा में जब जाते हैं ना दिल जो है खुशी से गदगद यानी कि बाग बाग हो जाता है. हैविंग सेड दैट अब से कुछ देर पहले कोई तो आइकॉनिक सी धुन व्हिसल वाली ट्यून मैंने आपके बीच पेश की थी. आपको आइडेंटिफाई करना था कि ये है तो है कौन सी फिल्म से. नाउ फॉर द सेक ऑफ पीपल हू हैव जस्ट जॉइन मैं जल्दी से ये धुन एक बार फिर से सुनाऊंगी. ये व्हिसल ट्यून फिर से सुनाऊंगी. अगर आपको लगे अभी भी सुनते सुनते आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि भाई ये कौन सी फिल्म है और कौन से एक्टर हैं तो करेक्ट आंसर सही जवाब 5001896. विल वेट फॉर योर रिप्लाइज. इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु. सो हियर

0: राइट यू, अब लोग बाग किस तरह से इसे पहचान पाए बताएं।
1: हाय अंशु, दिस इज द दिलवाले दुल्हन ले जाए। शाहरुख़ान विद काजल।
2: गुड मॉर्निंग अंशु, दिस इज प्रवीण। द मूवी नेम इज दिल तो पागल है एंड द एक्टर इज किंग खान। हैव अ ग्रेट डे अहेड।
3: Good morning, RJ Anshu. This is Madhulika calling. The whistle tune that you played was from the movie Dil To Pagal Hai. And Shah Rukh Khan, the actor in this movie, and I think it was Karishma Kapoor and Madhuri Dixit. What a fantastic movie. Thanks.
4: Good morning, Anshu. Ye Dil To Pagal Hai. Shah Rukh Khan, Madhuri, Karishma Kapoor.
0: वेल एब्सोल्युटली, थैंक यू सो वेरी मच। आप सबने जो कहा ये पूरी तरह से सही है। इसके साथ ही यूसुफ, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर रिप्लाई। राजू, वेल वी हैव गॉट रेहान एंड बहुत सारे ऐसे लिसनर्स हैं जो रेगुलरली मैसेज करते हैं। मैं सबका नाम इस वक्त नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन हाँ आपके जवाब जो है ना हमारे दिल को जरूर छूते हैं, तो आपके लिए तालियां हो जाए यार। वेल इस वक्त अगर मैं इस फिल्म की बात करूँ तो 1997 में रिलीज हुई इस आइकॉनिक फिल्म को डायरेक्ट एंड प्रोड्यूस किया द लेजेंडरी यश चोपड़ा ने, एंड स्क्रीन पर हाई रोमांस करते हुए नजर आया तो वो है खुद बादशाह यानी कि शाहरुख खान, ग्रेसफुल क्वीन माधुरी दीक्षित एंड सुपर एनर्जेटिक करिश्मा कपूर। या लेकिन ये सारी बातें तो आपको ऑलरेडी पता है। इंटरेस्टिंग बात जो है, चलिए मैं आपको ये बताती हूँ, ये विसल जिसने इस फिल्म को सुपर आइकॉनिक जरूर बनाया, क्या आपको पता है इन्होंने सही मायने में इट वॉज नॉट शाहरुख खान जिन्होंने इस विसल के पीछे अपनी आवाज दी। अरे ना ना, वेल इस ट्यून के पीछे अगर कोई है तो वो है लेजेंडरी बॉलीवुड विस्लर नागेश सुर्वे, नॉट शाहरुख खान, एंड ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ बॉलीवुड्स मोस्ट आइकॉनिक प्रोफेशनल विस्लर्स एंड हैज रिपोर्टेडली गिवन विसल पीसेस इन मोर देन 1600 सॉन्ग्स ओवर द डेकेड्स। एंड ये विसल इतना सिग्नेटरी बना कि भाई ना जाने कितने 90s के बच्चों ने इसे कॉपी कर अपनी अपनी गर्लफ्रेंड या क्रश को पटाने की मनाने की कोशिश जो है वो की और जरूर की। वेल इस विसल की कहानी तो मैंने आपको बता दी, लेकिन आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ दैट दिल तो पागल है वाज वन ऑफ द फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म्स दैट मेड म्यूजिकल थिएटर स्टाइल स्टोरी टेलिंग सुपर कूल इन मेन स्ट्रीम सिनेमा। एंड उसके बाद डांस बेस्ड लव स्टोरीज ऑन स्टेज परफॉर्मेंस वाली फिल्म्स जो है ना, इनका एक अलग ही ट्रेंड शुरू हुआ। इनफैक्ट यश चोपड़ा ने अपनी फिल्म को मार्केट इजी नाम से किया था, फर्स्ट म्यूजिकल फिल्म, मतलब सब डायलॉग्स नहीं, म्यूजिक और डांस के थ्रू भी सारी की सारी उन जज्बातों को, मतलब फीलिंग्स को और भी ज्यादा फील करना है। क्या आपने ये वाली विसल कभी ट्राई की अपनी लाइफ में? कभी तो कोशिश की होगी। 5000 1896 आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। मीनवाइल लता मंगेशकर की आवाज उदित नारायण का साथ एंड इस फिल्म का मेरा सबसे फेवरेट ट्रैक आपके लिए। गाना पसंद आए तो थैंक यू जरूर बोलना। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: हेल्पलाइन?
1: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
0: मेरे घर का फ्रिज बिगड़ गया है, क्या करूं?
1: फ्रिज बिगड़ गया है, बड़ा ही गंभीर मामला है। मैं तो यही कहूंगा कि परवरिश में ध्यान रखना था, अब क्या?
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Aajan Show with you. Well, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाने एक बार फिर से आ चुकी हूँ. मिर्ची घड़ी में उस वक्त बज रहे हैं ठीक 11. चलिए करते हैं उस खूबसूरत से आवर की शुरुआत गुरु रंधावा एंड हीर की आवाज में इस पावर पैक ब्रांड न्यू ट्रैक के साथ. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: अरिजीत सिंह अनिकता गांधी की खूबसूरत सी आवाज एंड 101% यार कुछ नहीं, आपसे मेरा बड़ा गहरा एंड बड़ा कमाल का रिश्ता है ना। Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Aaj Anshu with you. Well, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाने एक बार फिर से आ चुकी हूँ. एंड सच कहूँ यार, आपको और हमारा ये जो रिश्ता है ना, ये जो हमारा रिश्ता है, ये मुझे बहुत खास, बहुत स्पेशल लगता है. याद मुझे वो दिन याद आते हैं जब हम स्कूल कॉलेज टाइम्स में कभी कभी रैंडमली स्ट्रेंजर्स के साथ चैट किया करते थे. हमने उन्हें देखा नहीं है, हमने उन्हें जाना नहीं, लेकिन बस उनकी बातें जो है ना दिल में घर कर जाती थी. मतलब एक अलग सा खूबसूरत सा प्यारा सा रिश्ता जो है ना बन ही जाता था. एंड कहीं ना कहीं ये बॉन्ड जो है ना मुझे आपके साथ फील होता है. लेकिन देखिए, यहाँ पे बात इतनी है कि मेरे बारे में तो आप बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि रेडियो एक ऐसा मीडियम है, रेडियो एक ऐसा जरिया है जब मुझे लगता है कि कोई भी आरजे ना यार, ये जो रेडियो का वक्त होता है, जो हम समय यहाँ पे गुजारते हैं ना, वी आर कम्प्लीटली आसर्स. बिलीव मी, मैं जितनी ऑथेंटिक इस वक्त रेडियो में आपके साथ बात करते हुए या मुखातब होते हुए होती हूँ ना, मुझे पता नहीं, मैं इतनी ओरिजिनल लाइफ के किसी और फेस में कभी फील करती हूँ क्या. आई रियली डोंट नो. हैविंग सेड दैट, तो ये जो बॉन्ड है ये इतना कमाल है कि भैया जो भी हो ना, मुझे बड़ा मजा आता है कि हाँ कोई तो है जो मुझे सुन रहा है. एंड लेकिन सुनो, अगर आप मुझे सुन रहे हो ना तो मुझे बताओगे जरूर. मीनवाइल मैं आपको कुछ बहुत ही कमाल काम की बात तो आज बता दूं. राइट यू, आज आई पे मनी जो है भैया जोर लगा के दम लगा के हाईशा वाली फीलिंग दे रहा है, क्योंकि आई पे के जो रेट्स हैं आज बड़े कमाल है. मतलब अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो 1 रियल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 26.22. क्या ही बात है जी. एंड इसके साथ ही पाकिस्तानी रुपीज 77.03, बांग्लादेशी टका 33.66, श्रीलंकन रुपीज 89.18, एंड एक बार फिर से नेपाली रुपीज अपने ऑल टाइम हाई में पहुंचते हुए पहुंच चुका है 41.95 पर. क्या बात है यार, बढ़िया है जी. ये जो नेचुरल वाला इंक्रीमेंट है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है. ऑफिस वाले तो करे ना करे, कम से कम इन्होंने ही हमारे दिल की जो अरदास है वो सुन ली एंड हमारी मुरादें जो है पूरी होती जा रही. क्या कहती पब्लिक. वैसे वो कनेक्शन वाली बात के लिए आपके मैसेज का वेट कर रही हूँ. कनेक्टेड हो तो फटाफट से मुझे हाई हेलो कुछ तो बोलो यार. 5000 1896. लेट्स गेट कनेक्टेड. इंस्टाग्राम मिर्ची वन का तरिया मिर्ची अंशु. मीन वाइल एक्सचेंज रेट्स इज ब्रॉट टू यू बाय
1: Best exchange rates. भेजो खुशियाँ और पैसे दोनों ही घर पे.
0: राइट यू, बंजारी की आवाज़ है. ये गाना जो है इस वक्त सुपर ट्रेंडिंग है, तो बस आपको भी इससे मोहब्बत हो जाए इसलिए बार बार कई दफा मैं बजा ही देती हूँ. एंजॉय दिस ट्रैक. बंदी का नाम अंशु.

0: Mirchi. Iskabala, puskabala, sakabala. Rabbala. Burka, burka. Na vietbala, burka.
1: Mirchi, burka. Hello.
2: भाई साहब, श्रीनिवास पुरी थाने से बोल रहा हूँ. मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
1: मोबाइल?
2: ये सर, आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है, इसकी रिपोर्ट आ गई है. ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
1: क्या रिपोर्ट आ गई है?
2: यही क्या, ये मोबाइल गायब हुआ है. किसी ने कम्प्लेंट लिखवाई है. मोबाइल चोरी हो गया. ये
1: मोबाइल चोरी हो गया?
2: हाँ जी. भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
1: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो.
2: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं. चोरी का मोबाइल है ये.
1: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर.
2: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर. ऐसा है, हमारे पास सीधी कंप्लेंट है. अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे. आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये.
1: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये.
2: भाई मैं कह रहा हूँ, चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं. इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार.
1: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
2: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो. कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ.
1: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर.
2: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से. ऐसी 25 कॉल आती है हमारे पास. हाँ प्रभाकर.
1: हाँ जी सर.
2: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा. मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए.
1: अच्छा बात करवा दो. कौन है
3: ये? ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है. प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर.
1: कुकड़ों को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा.
6: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने.
4: हिट गाने कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन.
7: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: Power Pack Awards, and what a lovely track it is, yaar. Kya super energetic gaana hai from the film Ye Jawani Hai Diwani featuring the stunning Ranbir Kapoor. And ye gaana aur ye banda, dono yaar mera dil le gaye. Enjoy. Kya sach kahun, zindagi mein na isse zyada khoobsurat rishta dusra aur koi ho hi nahi sakta.
1: Mirchi Anshu.
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Arjay Anshu with you. Aapki zindagi mein mithas ke saath spice ka tadka lagane ek baar fir se aa chuki hoon. Lekin is shakhs ki bhi kahani is waqt bayan karna chahungi jisne hamari life mein kaam jo hai na bakhoobi kiya hai. Agar sabse khoobsurat rishte ki main baat karu तो मुझे ऐसा लगता है कि जो रिश्ता हमारा हमारी माँ के साथ होता है ना, यार वो किसी और के साथ कभी हो ही नहीं सकता. बहुत अलग. जेन्युइनली जो कहा जाता है ना कि बिना किसी अल्फाज के, बिना जुबान के आपकी बातों को, आपके दिल को समझना बहुत अच्छी तरह से जानती है, ये बात जो है बहुत सच है. एंड माँ का दिल जो है ना बहुत बड़ा होता है यार. आप जिंदगी में कितनी भी गलतियाँ क्यों ना कर दो, लेकिन एक दुनिया में सिर्फ माँ होती है जो बिना चाहे चाहे किसी भी तौर पे आपके लिए गलत जो है ना कभी सोच नहीं सकती. मम्मी को वो इंटेंशनली टीज करना, उन्हें परेशान करना, यू नो उनकी वो डांट खाना, यार बहुत प्यारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं. एंड पता है लेकिन जन्नत एंड सुकून कब मिलता था, जब फाइनली दिन गुजरने के बाद रात के वक्त माँ के कंधे में सर रख के सोने का मौका मिलता था. इससे खूबसूरत और प्यारा क्या हो सकता है यार. एक बात बताओ ना, किसने कहा हमने जन्नत नहीं देखी, हमने तो जी है यार. एंड बस अगर आप भी एक माँ हैं एंड आपको लगता है कि आप एक सुपर मॉम है, तो मिर्ची जो है दिल से आपको वेलकम कर रहा है. एब्सोल्युटली इस वक्त अगर किसी कहानी को बयां करने की कोशिश करूं तो वो सीधा अगर हमें कहीं लेकर जाती है तो वो है मिर्ची मॉमी अवार्ड्स 2026. बिल्कुल इसकी एंट्री जो है हम एक्सेप्ट करना आप शुरू कर चुके हैं. एंड अगर आपको लगता है कि आपका बॉन्ड आपके बच्चे के साथ बड़ा ही कमाल, बड़ा ही खास है, तो फटाफट से एक 60 सेकंड्स तक की रील जो है आप बनाकर भेजते हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 5000 1896. नाउ इट कुड बी एनीथिंग, कंपाइलेशन ऑफ फोटोज, वीडियोज. वीडियोज जो हम ज्यादा प्रेफर करेंगे, कोई फनी रील, कोई आर्ट या डांस फॉर्म, वट एवर यू प्रेफर एंड यू लाइक, फटाफट से भेजें. एंड अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए तो हमारे ग्रैंड फिनाले में पहुंचने का मौका जो है आपको जरूर मिले ऑडिशन राउंड के बाद. एंड वी कुडंट बी मोर एक्साइटेड. सेंड योर एंट्रीज नाउ. आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 दिन का वक्त है, जो कि बहुत ज्यादा है. हम आपकी एंट्रीज का दिल से इंतजार कर रहे हैं. बाकी मुलाकात होगी मिर्ची मॉमी अवार्ड्स 2026 में. कीप लिसनिंग टू मिर्ची. बंदी का नाम अंशु. एंजॉय.

0: में शी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार थाईलैंड में एक बंदा था जिसकी अंतिम इच्छा थी कि उसके अंतिम संस्कार में चीयर गर्ल्स आए।
3: हाय इसका भी सही है, इसने अपनी आफ्टर लाइफ पार्टी का फुल प्लान सेट कर रखा था और ऊपर से अब ये शोक सभा नहीं शौक सभा होगी।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
6: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
7: बहुत कुछ होगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन।

0: मतलब रजत सिंह की आवाज़, सचिन जिगर की कॉम्पोजिशन एंड व्हाट अ लवली खूबसूरत प्यारा सा गाना मैंने तो आपको सुना दिया, अब आप जो है थोड़ा सा काम कर दें।
1: मिर्ची अंशु
0: देखो अब की बार जो है ना वो बगावत बदमस मत करना। वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। वेल, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ। एंड जो लोग मुझे रोज सुनते हैं बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि यार मुझे मीठा कितना पसंद है। ऐसा अगर स्वीट टूथ, जितनी प्यारी जितनी मीठी मेरी बातें होती है ना, नहीं घर वालों को जुबान थोड़ी तीखी लगती है, लेकिन हाँ मुझे मिठाइयाँ बहुत पसंद है यार। लेकिन ना, मैं अपने वेट को पूरी तरह से ट्रैक पे रखती हूँ, मुझे वर्कआउट करके उसे बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करना बर्न करना आता है। अरे एक जिंदगी मिली है, खुल के जियो खाओ, बाकी जो करना है वो कर ही लो। हैविंग सेड दैट, अब कोई तो एक डेजर्ट है, कोई तो एक खास डिश है जिसकी कहानी इस वक्त अपनी जुबानी में पेश करने वाली हूँ। आप सबसे पहले इस कहानी को समझेंगे, सुनेंगे, पहेली बुझाएंगे और मुझे बताएंगे कि मैं किस डेजर्ट की बात कर रही हूँ। एंड करेक्ट आंसर पता चल जाए पर आपसे भेज देना यार 5000186 पर, 5000186 पर विल गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतर या मिर्ची अंशु। लेकिन सुनो, सिर्फ सही जवाब नहीं भेजना है, अगर घर पे कभी खास डिश कभी बनाओ तो मेरे लिए भी जरूर भेजना है। आई लव इट एंड घर की मिठाइयां मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, जस्ट सेइंग। राइट, तो चलिए अब ये कौन सी मिठाई है? ईद की है ये खास मिठास, ईद की है ये खास मिठास, दूध का प्यार ड्राई फ्रूट्स के साथ, कभी पतली सी मीठी सी डोरियां जैसे हमें बांध ही ले, तो कभी इसकी महक घर को बस महका ही दे। वल एक बोल से बढ़ जाती है सबके दिल की बात और बन भी जाती है। अभी कौन सी मिठाई है यार जो ईद की खास है, दूध का प्यार भी है, डोरियां जो है हम सबको बांधे रखते हैं, और इसके एक बोल से सबके दिल की बात जो है वो बन जाती है। 5000186, इट्स वेरी इजी यार। अब ये ना पहचाना तो क्या ही जाना। विशाल मिश्रा की आवाज़, हंसिका परी का साथ, सैयारे से सबसे फेवरेट ट्रैक मैं आप तक पहुंचाती हूँ। एंड आप वो मिठाई का डब्बा तैयार रखना, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची बंदी का नाम अंशु।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है. What did you steal in your childhood?
2: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे. मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसके चॉकलेट्स खत्म कर दिए. कभी आज तक बोला नहीं कि वो मैं था.
1: What a way to confess, अभय देओल. अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज ए चाइल्ड. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डा, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
3: Only on Mirchi. It's hot.
4: Cut, cut.
5: Who that?
4: Agar kar.
5: Agar kar who?
4: Agar karna hai to kar, warna chhod de.
5: Cut, cut. Who that?
6: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot. It's hot. It's hot.

0: मित्र वेदी की प्यारी सी आवाज है। नैना का क्या कसूर ना यार, आंखों का कसूर कभी कहां ही होता है ना।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Aaj Aanshu with you. Well, आपसे कुछ देर पहले आपके बीच पेश की मैंने एक खूबसूरत सी पहेली, जिसको बुझाकर आपको मुझे बस ये बताना था कि इसमें छुपी जो कहानी है वो आखिरकार किस मीठे की है, जो आपकी जिंदगी में ढेर सारा मिठास घोलने की कोशिश कर ही रही है। एक काम करते हैं, फॉर द सेक ऑफ पीपल हु हैव जस्ट जॉइन, मैं फिर से पहेली जो है वो दोहराती हूँ। अभी भी लगे कि भाई पहचान लिया है तो करेक्ट आंसर भेज ही देना 5000 1896, वी विल गेट कनेक्टेड देयर। वेल, ये जो मिठाई है ईद की, ये खास मिठास दूध का प्यार, ड्राई फ्रूट्स के साथ हर घर की पहली महकती सी याद और एक बोल से बन जाती है सबके दिल की बात। तो ये कौन है जरा देखिए लोग बाग का क्या कहना है।
2: गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। ये शीर खुरमा है, ईद पे बनाते हैं। ओके, सेवियां बोलते हैं इसको।
3: हाय, सो माय नेम इज मिर्जा हसनैन। वो तो मीठी मीठी सेवइयाँ हैं सबसे बेहतरीन, और कौन सी मिठाई हो सकती है इससे बेहतर, कोई नहीं है।
4: हेलो आरजे अंशु, दिस इज मधुलिका कॉलिंग। जिस मिठाई की आप बात कर रही हैं वो है आई थिंक सेवइयाँ। आई मीन किसको नहीं पसंद है, वी ऑल लव इट। थैंक यू।
0: Absolutely, आप सबने चुका है ये पूरी तरह से सही। अगर ये दास्तान किसी की है तो वो है सेवैया की, शीर खुरमा कर लें। एंड सच कहूँ मुझे खीर से ज़्यादा ना ये पसंद है। वैसे ईद और शीर खुरमा का ये जो रिश्ता है ना, ये सिर्फ एक डेजर्ट का नहीं है, ये एक इमोशन का है, एक तहजीब का है, एक मेहमान नवाजी का तरीका है। यार बहुत कम लोग जानते हैं कि शीर खुरमा का ओरिजिन जो है ये पर्शियन कल्चर से माना जाता है। शीर का मतलब होता है मिल्क एंड खुरमा का मतलब होता है, या खुरमा का मतलब होता है डेट्स, मतलब दूध और खजूर की मिठाई से बना वो प्यार जो ईद की सुबह हर घर को बस महकाई देता है। लेकिन सबसे खूबसूरत बात क्या है पता है, पुराने जमाने में ईद की नमाज के बाद लोग सबसे पहले अपने घर का शीर खुरमा पड़ोसी और मेहमानों को सर्व किया करते थे, चाहे वो किसी भी मजहब या किसी भी बैकग्राउंड से आते हों, क्योंकि माना जाता है ईद की असली मिठास तभी पूरी होती है जब वो दूसरों के साथ बांटी जाए। और इसलिए शीर खुरमा सिर्फ सेवइयों का बोल नहीं, रिश्तों को मीठा करने का एक खूबसूरत सा तरीका है, या एक खूबसूरत सी रवायत है। बढ़िया है जी, कतर में भी शीर खुरमा की खुशबू जो है अब आने वाले दिनों में मोस्ट प्रॉबली 27 मई को बिल्कुल महसूस होगी। घर पे बना और मुझ तक नहीं पहुंचा ना तो समझ जा लो मिठास के बदले ना मैं स्पाइस जो है ज़्यादा ऐड करूँ। जावेद अली की आवाज़, सुनिधि चौहान का साथ है। अगला प्यारा सा गाना दावत इश्क, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

नमस्कार, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आजांशु विद यू. वेल मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं ठीक 12. इस खूबसूरत से आवर की करते हैं शुरुआत इस अगले प्यारे से गाने के साथ. स्टेडियो टू मिर्ची, बंदी का नाम.

0: Arijit Singh and Ekta Gandhi ki khubsurat si awaaz, and what a lovely track it is from the film Bhoot Bangla featuring Vamika Gavvi and saath Akshay Kumar. Chaliye yaar, ye pyara sa gana to maine aapko suna diya, lekin koi hai jo aaj Qatar mein solid feature ho raha hai, zara unki kahani bayaan kar dijiye.
1: Mirchi Anshu
0: भाई साहब, इस वक्त चर्चे हैं, हर जगह बस इन्हीं के चर्चे. वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू. आपकी जिंदगी में मिठास तो मैं लाती हूँ, लेकिन अभी स्पाइस का तड़का लगाने का काम ना ये कर रहे हैं, हमारी सूरत चाचू की बात कर रही हूँ. चाहे आप ऑफिस जाएं, चाहे आप घर एंटर करें, या आप किसी फ्रेंड से मिलें, या रास्ते में किसी से आपकी मुलाकात हो जाए, किसी की जुबान से स्टेट पर कुछ निकले या ना निकले, लेकिन एक बात तो तय है जो 101% निकलनी है, वो बस यही, भाई क्या सॉलिड गर्मी है यार. लेकिन पता है क्या, जब मैं अपने बचपन के दिनों को याद करने की कोशिश करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में, पिछले कुछ सालों में, जो सनस्क्रीन का ट्रेंड इतना बढ़ा है या इतना चला है, हमारे दौर में तो ऐसा कुछ था ही नहीं. मैं अपने स्कूल कॉलेज टाइम्स की बात कर रही हूँ. हाँ, हम भी गर्मी के दिनों में स्कूल जाया करते थे, एंड हमेशा ना हमारे पास वो गाड़ी या रिक्शा नहीं होता था, हम कई बार अपनी साइकिल से भी जाते थे. एंड मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है हमारा सनस्क्रीन क्या होता था. एक स्कार्फ हुआ करता था जिसकी लेंथ जो है बिल्कुल हमारे एल्बो तक होती थी. ठीक है, दोनों हाथों में हमने वो पहना, फेस को है पूरी तरह से सफ़ेद कपड़े से कवर किया, एंड साथ में ऊपर में टोपी, क्योंकि ऐसा माना जाता था ये सफ़ेद कपड़े ना, मतलब विच इज़ अ फैक्ट, कि धूप जो है वो कम एब्जॉर्ब होगी. एंड हमारा सनस्क्रीन तो वही था भाई, एंड हमारी स्किन जो है वो भी परफेक्ट रही, ना ही हमें सनस्क्रीन की ज़रूरत पड़ी, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ. लेकिन आज के डेट में देखने की कोशिश करें तो सब कुछ इतना बदल गया है ना, लोग जो है कितने ज़्यादा कंसर्न हो चुके हैं. इनफैक्ट मेन को मैंने इतना ज़्यादा अपनी स्किन को लेकर कंसर्न होते हुए कभी ना देखा जितना मैं इन दिनों देखने लगी हूँ. भैया हमसे पहले तो वो लगाते हैं, भाई तेरा सनस्क्रीन क्या है, वे देख के कर भाई, थोड़ा सॉरी हल्का खरीदा है. राइट, अब चले देखते हैं आज की मौसम का हाल है तो क्या ही है.
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान.
3: वेदर अपडेट,
0: मतलब अगर आज के मैक्सिमम टेम्परेचर की मैं बात करूँ, इट इज गोइंग टू बी समवेयर अराउंड 40, मिनिमम इज गोइंग टू बी अराउंड 30. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ठंडा ठंडा पानी जो है वो पीते रहें, छाछ पीते रहें, आम का पन्ना पीते रहें, यू नो जो भी चीज़ है इलेक्ट्रोलाइट की कमी आपकी लाइफ में पूरी करती है उन्हें ज़रूर अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं. एंड सुनो, आम का पन्ना बनाओगे ना मेरे भेजना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत दिन से मैंने बनाया नहीं है, इस वीकेंड बनाने वाली हूँ, घर आपको भी पिलाएंगे. वैसे वेदर अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय
3: Weather Check, brought to you by RSL Group of Company. अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब. For bright future, call now 3100813.
0: Alright then, Arijit Singh की खूबसूरत सी आवाज और बहुत ही प्यारा सा गाना from the film Sonu की टिट्टू की स्वीटी. Now this is for all you lovely people who happen to be my good, very good friends. आपके लिए गाना मेरे दिल से डेडिकेटेड. Enjoy, बंदी का नाम अंशु.

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vidva la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Hello.
1: Yes.
2: Motor se bol rahe hain?
1: हाँ जी
2: मैडम, प्लीज किसी मैकेनिक को बुला देंगे, मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है।
1: ठीक है सर,
2: 5 सेकंड जल्दी।
3: इतने में तो एक्सीडेंट हो जाएगा यार, जल्दी बुलाओ।
1: हेलो
2: हेलो
1: हेलो,
2: प्लीज जल्दी बुला लो। कोई
1: कस्टमर के लाए। हेलो
2: हेलो, होल्ड नहीं कर सकता। हेलो,
4: हाँ जी सर।
2: सर प्लीज मेरे को बता दो, मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, ये किस तरह रुकेगी?
4: सर पे हैंड ब्रेक खींच दो।
2: एक सेकंड।
4: सर हैंड ब्रेक खींच दो सर।
2: एक सेकंड रुकिए।
4: सर साइड में, लेफ्ट साइड में।
2: ओ यार मेरा वो छोले भटूरे वाला भी निकल गया, मैं रोज का था, मैं कैसे रुकूं? एक सेकंड
4: सर, इग्निशन ऑफ कर दो।
2: इग्निशन, एक सेकंड रुकिए। ये चाबी से बंद करने को बोल रहे हैं।
4: हाँ जी।
2: एक सेकंड सर, कोई रास्ता मालूम है जिस रास्ते पे ले सकता हूँ इसको?
4: मेरे को क्या पता कहाँ पे है।
2: मैं इस वक्त पालम की तरफ से निकल रहा हूँ, पालम एयरपोर्ट की तरफ से।
4: सर इसका हैंड ब्रेक खींच दो।
2: एक सेकंड हैंड ब्रेक नहीं खींचना, एक सेकंड कुछ और। ये हैंड ब्रेक ऊपर करते हैं?
4: हाँ जी।
2: ऊपर करने से नहीं हो रहा है, और कुछ बता सकते हैं? ब्रेक बिल्कुल गए,
4: बिल्कुल गए। एक्सेलरेशन छोड़ दो सर।
2: क्या करूँ?
4: एक्सेलरेशन छोड़ दो।
2: एक सेकंड रुकिए।
4: क्या हो गया?
2: आए, गाड़ी ठुक गई। गाड़ी ठुक गई।
3: मैडम, क्या नाम है आपका?
1: दिव्या।
3: दिव्या, मैं रेडियो मिर्ची से नावेद बोल रहा हूँ। छोटा सा मजाक किया था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया हमने।
1: Oh, God. I was so
0: tense. I don't know what happened. कुकड़ों को मिर्ची मुर्गा नावेद के साथ, only on मिर्ची। It's hot.
5: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
0: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
6: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
0: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: वेल जिगर सरिया की खूबसूरत सी आवाज प्रिया सरिया का साथ बड़ा लवली ट्रैक इज फ्रॉम द फिल्म शुद्ध देसी रोमांस। चलिए जी, ये प्यारा सा खूबसूरत सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन इस वक्त कोई तो रोमांटिक सी फिल्म है जिसका बहुत ही खूबसूरत सा डायलॉग है वो आप तक पेश कर दिया जाए।
1: मिर्ची अंशु
0: Welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ। एंड सच कहूँ, अब जिस फिल्म की कोई तो दास्तान मैं आपके बीच पेश करने वाली हूँ, इसने हमारे बीच ना एकदम फ्रेश पेयरिंग को लेकर आया था। मतलब किसी ने इमेजिन नहीं किया था, विजुअलाइज भी नहीं किया था कि ऑन स्क्रीन ये दोनों इतने हसीन इतने खूबसूरत एक साथ लग सकते हैं, कंसिडरिंग द हाइट डिफरेंस। राइट, अब आपके बीच एक कॉन्वर्सेशन मैं पेश करने वाली हूँ। आप सुनेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, मुझे ये बताएंगे कि ये है तो है किस फिल्म से। हबीबी शुरू होने जा रहा है।
2: अब शुरू होता है बॉलीवुड का सरप्राइज टेस्ट।
3: ओके सर।
0: और एक दिन दोनों ही बड़ी प्यारे से किरदार है, जितनी प्यारी मैं जितने प्यारे आप, बस उतनी ही प्यारी ये बातचीत है। फटाफट से करेक्ट आंसर भेज देना 5000186। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाइज। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु एंड आई वुड रियली ऑनेस्टली अप्रिशिएट योर ऑडियो मैसेज। सो हियर यू गो।
4: सॉरी राम, वो प्रोफेसर राघव ने तुम्हें मुझे छोड़ने के लिए फोर्स किया।
5: आई लव इट मैम, I mean, it's my duty, ma'am.
4: तुम बाकी बहुत अच्छा डांस कर लेते हो।
5: yeah.
4: कहाँ से सीखा?
5: Actually, ma'am, आपको देखते ही मैं जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली बन जाता हूँ।
4: Not again.
5: संजू, लकी, विवेक और मिनी और मिस कक्का, आपकी साड़ी बहुत सुंदर है मैम।
4: राम, जितना अच्छा डांस करते हो उतनी अच्छी गाड़ी भी चला लेते हो। मुझे घर तक नहीं छोड़ोगे?
0: आप कहें तो हम छोड़ा है। देखिए, घर तक हम थोड़ी देर में जाएंगे। अभी आप जो उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में अगला गाना सुने, फटाफट से मुझे करेक्ट आंसर भेजें कि ये कॉन्वर्सेशन हुई तो हुई किस फिल्म में। 5000186। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। मीनवाइल 90s नॉस्टैल्जिया में एक बार डाइव इन करते हैं, ये अगला गाना एंजॉय करते हैं। बंदी का नाम अंशु।

0: मिर्ची स्टोरीज।
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार थाईलैंड में एक बंदा था जिसकी अंतिम इच्छा थी कि उसके अंतिम संस्कार में चीयर गर्ल्स आए।
3: हाँ, इसका भी सही है। इसने अपनी आफ्टर लाइफ पार्टी का फुल प्लान सेट कर रखा था और ऊपर से अब ये शोक सभा नहीं, शौक सभा होगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Our business is our business, none of your business.
6: पर दीदी, our entertainment is your entertainment. Entertainment.
7: Qatar का number one radio station.
8: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: खूबसूरत सी आवाज जुबिन नौटियाल का साथन, क्या प्यारा गाना। ये वही गाना है जिसने श्रीलंकन लड़की को भाई पूरी दुनिया में मशहूर जो है वो कर ही दिया।
1: मिर्ची अंशु।
0: Welcome back. You are listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ। एंड अब से कुछ देर पहले जो कॉन्वर्सेशन मैंने आपके बीच पेश की थी उसकी रियल कहानी अब बता दी जाए। एक काम करते हैं, जिन लोगों ने अभी भी ज्वाइन किया है शायद उनको समझ नहीं आ रहा है भाई बोल क्या रही है यार। अब से कुछ देर पहले बॉलीवुड की कॉन्वर्सेशन मैंने आपके बीच पेश की थी, आपको सुनकर आइडेंटिफाई कर बस मुझे ये बताना था कि ये है तो है किस फिल्म से। वो कॉन्वर्सेशन अब फिर से पहुँचा दो।
2: सॉरी राम, वो प्रोफेसर राघव ने तुम्हें मुझे छोड़ने के लिए फोर्स किया।
3: आई लव इट मैम, आई मीन इट्स माय ड्यूटी मैम।
2: तुम बाकी बहुत अच्छा डांस कर लेते हो।
3: या
2: कहाँ से सीखा?
3: एक्चुअली मैम, आपको देखते ही मैं जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली बन जाता हूँ।
2: नॉट अगेन।
0: हाय हाय हाय, क्या ही बोले अब, देखिए लोगों ने क्या बोला है। लेकिन
4: हेलो मिर्ची अंशु, द कन्वर्सेशन इज बिटवीन सुष्मिता सेन एंड शाहरुख खान फ्रॉम मैं हूं ना। थैंक यू।
5: हेलो अंशु, आपने जो अभी मूवी का डायलॉग सुनाया है उसका नाम है मैं हूँ ना शायद।
6: गुड आफ्टरनून अंशु, कैसी हैं आप? मैं अंजलि बोल रही हूँ। मैं हूँ ना मूवी का नाम है। आप बहुत बड़ी शाहरुख खान की फैन है, मैं भी हूँ। थैंक यू, बाय।
7: द मूवी है मैं हूँ ना, सुष्मिता सेन, शाहरुख खान, शाहिद खान। हाय अंशु, दिस इज राजेश विद यू। गुड आफ्टरनून।
8: हाय, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। ये जो अभी आपने ट्रेलर शो मतलब प्ले किया था, इसका ना ये मूवी का नाम है मैं हूं ना, शाहरुख खान एंड सुष्मिता सेन। मेरा नाम है अजहर अजहरुद्दीन।
9: हेलो अंशु, दिस फिल्म इज मैं हूं ना, शाहरुख खान एंड सुष्मिता सेन। थैंक यू।
10: हे आरजे अंशु, दिस इज मधुलिका कॉलिंग। आई थिंक ये आवाज है शाहरुख खान और सुष्मिता सेन की एंड द मूवी इज मैं हूं ना। थैंक यू।
0: एब्सोल्युटली, आप सब तो मेरे साथ हैं ही, लेकिन इसके साथ मैं भी जो हूँ पूरी तरह से आपके ही साथ हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर रिप्लाइंग। बहुत सारे रिप्लाईज आए इस क्वेश्चन पर, हर किसी की आवाज़ जो उस वक्त मैं रेडियो पर नहीं प्ले कर पाई। जिन लोगों ने लिख कर भेजा आपको भी बहुत बहुत दिल से थैंक यू यार, और आपके लिए बहुत जोर वाली तालियाँ। राइट यू, साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म मैं हूं ना सिर्फ एक फिल्म नहीं थी यार, ये अपने आप में ना एक इमोशन थी। एंड इट इज डायरेक्टेड बाय नन अदर देन फराह खान इन हर डायरेक्टोरियल डेब्यू, एंड इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय शाहरुख खान एंड गौरी खान अंडर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। एंड व्हाट अ कास्ट है। शाहरुख खान इज मेजर राम, सुष्मिता सेन एज द आइकॉनिक चांदनी मैम, जायद खान, अमृता राव एंड सुनील शेट्टी इन दैट इंटेंस नेगेटिव रोल, एंड म्यूजिक बाय द मैजिकल डुओ अनु मलिक एंड जावेद अख्तर। नाउ हियर कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। आपको पता है कि शाहरुख खान सुष्मिता सेन की जो केमिस्ट्री है ये इतनी एफर्टलेस थी ऑन स्क्रीन, स्पेशली इन दिस पर्टिकुलर ट्रैक। सुने यार कि कई लोगों को ये लगने लगा कि इन दोनों ने ना जाने कितनी फिल्में एक साथ पहले भी की हैं, अक्सर करते आए हैं। एंड याद है वो एक साड़ी का सीन हुआ करता है जब शाहरुख पहली बार सुष्मिता सेन को फेस करते हैं, एंड सुष्मिता जो है वो चल के आती हैं, एंड जो साड़ी है वो शाहरुख के फेस के ऊपर से होके गुजरती है। ये ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइज किया गया था शाहरुख एंड सुष्मिता के बीच, ये डायरेक्टर का कोई प्लान नहीं था। इसे कहते हैं ना, जब मंझे हुए कलाकार एक साथ साथ आए ना भाई, तो करिश्मा कुछ ऐसा होता है कि वो एक पर्टिकुलर सीन जो है ट्रेंड बन जाता है। इनफैक्ट सुष्मिता सेन ने एक और ट्रेंड सेट किया था, चांदनी मैम का ये जो वॉक है वो हर एक कॉलेज की पार्टी में, हर एक किटी पार्टी में ट्रेंड सा बना था। एंड साड़ियाँ लड़कियाँ, खासकर यंग लड़कियाँ, सुष्मिता सेन को देखकर और भी ज़्यादा अपनाने लगी। चलिए जी, जब इन दोनों की इतनी खूबसूरत सी बात हुई है तो अभिजीत एंड श्रेया घोषाल की आवाज़ में ये गाना सुनना तो उस वक्त बनता है। एंड अगर बातें अच्छी लगी और गाना और अच्छा लगने वाला है, थैंक यू मैसेज तो भेजो यार 5000 1896। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिबलिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
2: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
3: वीडियो गेम बंद हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स में लगे रहते थे।
2: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
1: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood bolda only on Mirchi it's hot।
4: खट खट,
5: कौन है?
4: ईशांत।
5: ईशांत कौन?
4: ईशांत गदाधारी भीम ईशांत।
5: खट खट, who that?
6: only on 89.6 Mirchi 1 Mirchi it's hot।

बलदेव नेगी की प्यारी सी आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज फ्रॉम द फिल्म केदारनाथ। ये खूबसूरत सा गाना तो मैंने सुना दिया, लेकिन सुनो जा रही हूँ मैं, तुमको छोड़ के जा रही हूँ। Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. वैसे इतने आसानी से तुम्हें छोड़ के चली जाऊं तो जाऊं कहां, एक बात बताओ ना। हाय, दिल का रिश्ता है यूं ना तोड़ने वाली मैं ना, और दिल तोड़ने की आदत तो मुझे बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे अगले तीन हफ्ते की अगर अपनी जर्नी की बात करूं तो मेरी मुलाकात होगी आपसे एक नए टाइम बैंड में, दैट इज मॉर्निंग 6 o'clock अंटिल 10 o'clock। बिल्कुल आफरीन जो है इस वक्त हज पे गई हुई है, तो मॉर्निंग शो जो है उसका कार्यभार मुझे संभालना है। तो नेक्स्ट 3 weeks सुबह सुबह मुलाकात होगी। भैया अलार्म को स्नूज पे डालने की तैयारी जो है कर ही लो, सुबह जल्दी उठने की तैयारी भी कर लो। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी मॉर्निंग पर्सन है, सो आई कैन प्रॉमिस एंड अश्योर यू द मॉर्निंग्स आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली मैजिकल, ब्राइट एंड शाइनी। एक नई शुरुआत करते हैं बेहतरीन गाने, खूब सारी एनर्जी एंड पॉजिटिविटी के साथ। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक मॉर्निंग शो पर। अमित मिश्रा की आवाज, अनुष्का मनचंदाना का साथ। जाने से पहले ये पावर पैक गाना तो सुना के जाऊं, क्या कहती पब्लिक। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मैं मराठी हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड बंगाली है, उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कैसे समझाऊं?
1: अरे गोचू, बंगाली है तो बंगाली में समझाना।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस।

0: फ्राइज लगा रखा है। स्लेट के टेस्ट पर पलने वाले से आप फ्रेंच फ्राइज बेहतर है ये जिद नहीं लगा सकते हो।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. और हाँ, मैं ही हूँ वो जिसने फ्रेंच फ्राइज के टेस्ट को बाद में समझा। उससे कई साल पहले से तो हमारी लाइफ में पेंसिल की स्लेट्स आ गई थी यार। हालांकि ये वो टाइम था जब हमारी स्लेट्स यूज करने की उम्र चली गई थी, लेकिन स्लेट पेंसिल्स खाने की आ गई थी। डब्बे के डब्बे खा जाते थे यार, शुक्र है ऊपर वाले का कि किडनी स्टोन्स नहीं हुए, वरना कसर तो हमने कोई नहीं छोड़ी थी। मम्मा से छिपा छिपा कर कपड़ों के बीच में रखने पड़ते थे वो डब्बे, और इसकी भीनी भीनी खुशबू बिन बारिश के भरी गर्मी में भी ना सौंधी मिट्टी का फील और खुशबू दे जाती थी। ओए होए होए होए, क्या आपने भी स्लेट पेंसिल और चॉक्स की लत लगाई अपने आप को कभी? अगर हाँ तो डीएम करो और माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। और फिलहाल के लिए 90s के गियर में मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को डालती हुई मैं आपसे कहती हूँ यू स्टे ट्यून विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी।

0: Mirchi. Iskabala, puskabala, sakabala. Gambala. Murga, murga. La virbala, murga. Mirchi, murga.
1: हेलो,
2: गुड इवनिंग मिस्टर मनोज.
1: गुड इवनिंग
2: मिस्टर मनोज, मैं तिवारी बोल रहा हूँ ऑल इंडिया चिल्ड्रन सोसाइटी से.
1: ओके
2: सर, आपको थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि हम हर हफ्ते एक फंक्शन रखते हैं जिसमें ज्यादातर पेरेंट्स और ज्यादातर बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. अनफॉर्चुनेटली आप इत्तेफाक से यहाँ पे आ नहीं पाए, तो हम उन लोगों को भी फोन कर रहे हैं और उनसे सवाल जवाब पूछ रहे हैं ताकि बच्चे की तरह उनकी भी नॉलेज अच्छी रहे. राइट फाइन. तो सर आपसे दो चार सवाल करेंगे प्लीज, आपके पास दो मिनट होंगे और यहाँ पे कई लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, हमने आपको कनेक्ट कर रखा है तो कुछ सवाल आपके होंगे, जवाब देने पड़ेंगे. राइट सर. मिस्टर मनोज आपके सवाल ये रहे, टू टू जा
1: फोर.
2: वेट सर, वेट.
1: इवेंट ये फंक्शन कहाँ हो रहा है
2: सर? यही पे लोधी रोड पे हो रहा है, अगर आप आना चाहते हैं तो आ भी जाइएगा. दूसरा आपका सवाल सर, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो
1: डर जाएगी.
2: गुड सर, वेरी गुड सर.
1: ये कोई इतने मुश्किल सवाल जवाब तो है नहीं
2: सर. आप चाहते हैं कि मुश्किल पूछे जाए आपसे, ये तो और आप हमारे लिए आसानी कर रहे हैं, हम तो जान के आसान.
1: मेरी नॉलेज चेक कर रहे हैं क्या कर रहे हैं
2: सर? वही नॉलेज ही चेक कर रहे हैं, ताकि बच्चों की तो नॉलेज हम चेक करते ही रहते हैं. पेरेंट्स को अकल कितनी है, और प्लीज बुरा मत मानिएगा, अगर आप चाहते हैं तो आपसे हम ज्यादा मुश्किल सवाल पूछ सकते हैं बड़ों वाले.
1: पूछो यार.
2: अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90
1: पूरे 100.
2: ग्रेट ग्रेट मिस्टर मनोज, ग्रेट. सर आपका अगला थोड़ा सा मुश्किल सवाल है सर. पोषण माह भाई पोषण पा, लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की चोरी चुराई, अब तो कहाँ आना पड़ेगा?
1: जेल में जाना पड़ेगा.
2: ग्रेट सर, ग्रेट. रेडियो मिर्ची पर जो भी मुझसे बात करता है उसका बन जाता है क्या?
1: समझा नहीं मैं.
2: मैं बताता हूँ सर, इसका जवाब है मुर्गा. ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ये जवाब मैंने दिया. मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका प्यारा सा जो बेटा है रोहन, उसने आपका मुर्गा बनवाया है, और ये क्विज उसी का था. जो भी नवेद से बात करता है वो खुद बोलता है क्या?
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष.
3: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स. कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: जब मूवी रिलीज हुई थी ना तो ट्रक वाले ये वाला हॉर्न बजाते हुए निकल जाते थे.
0: मिर्ची VCR.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And clearly आप समझ गए होंगे कि I'm talking about the film Dhoom. Well, इस फिल्म का नाम धूम कैसे आया ये भी सोचने की बात है, क्योंकि इसके पीछे एक कहानी है. एमी इसका नाम धूम नहीं है. Well, आदित्य चोपड़ा को ये फिल्म जो थी ना, इसका आइडिया, मतलब पूरी स्टोरी लाइन जो है उसका आइडिया 1979 में बनी एक मूवी थी काला पत्थर, उससे आया था. एंड इनफैक्ट दिस वॉज वन ऑफ हिज फादर्स एक्शन थ्रिलर्स. एट द टाइटल ऑफ दिस फिल्म केम फ्रॉम इसी फिल्म का एक गाना, धूम मचे धूम, which eventually was changed to धूम मचाले धूम. मजेदारी वाली बात तो ये है कि इस फिल्म में हीरो अमिताभ बच्चन थे और अभिषेक बच्चन धूम के हीरो बन गए. लेकिन हाँ, एक और बड़े इत्तेफाक की बात ये है कि अमिताभ बच्चन, जिनके बेटे अभिषेक बच्चन ने धूम में काम किया है, हेमा मालिनी जिनकी बेटी ईशा देओल ने धूम फिल्म में काम किया है, एंड यश चोपड़ा द डायरेक्टर, उनके बेटे उदय चोपड़ा ने इस फिल्म में काम किया है, इन तीनों ने ही एक फिल्म में साथ काम किया था. यश जी की एक फिल्म थी त्रिशूल, और उसमें ये पूरी की पूरी कास्ट थी, और वही उनके बच्चों की कास्ट कट कॉपी पेस्ट धूम में हो गई थी. रह गए जॉन, जो कि एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से थे, लेकिन जॉन के साथ अभिषेक बच्चन ने काफी अच्छी दोस्ती निभाई यार. सो मच सो दैट कि अभिषेक बच्चन जो थे ना, वो जॉन की वजह से बाइक्स बहुत पसंद करने लग गए थे, क्योंकि ऑफ कोर्स जॉन को पूरा ज्ञान था बाइक्स का. और जब ये दो जेंटलमैन बैठते थे बातें करने के लिए तो बाइक्स के बारे में इतने डिस्कशन होते थे कि इवेंचुअली अभिषेक बच्चन इस चीज को लेकर राजी हो गए थे कि वो भी एक बाइक खरीदेंगे. वो अलग बात है कि अमित जी बच्चन जी ने उनको मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं नहीं, बाइक वाइक नहीं लेगा कोई भी यहाँ पर. और फिर किसी ने बोला पेंसिल, अभिषेक बच्चन का बाइक खरीदना हो गया कैंसिल. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: मिर्ची स्टोरीज।
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार थाईलैंड में एक बंदा था जिसकी अंतिम इच्छा थी कि उसके अंतिम संस्कार में चीयर गर्ल्स आए।
0: भाई इसका भी सही है, इसने अपनी आफ्टर लाइफ पार्टी का फुल प्लान सेट कर रखा था और ऊपर से अब ये शोक सभा नहीं शौक सभा होगी।
3: मिर्ची, इट्स हॉट।
4: अर्ज किया है
5: इरशाद, इरशाद

आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल, सीधा, नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5, 10, 15, 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईपी, स्मॉलर फीस, बिगर स्माइल्स. TNC

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: काउंटडाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका फेवरेट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: किस्मत बाबू भैया, किस्मत बहुत बड़ी चीज होती है। आपको पता है जब धूम रिलीज हुई थी, एट दैट टाइम धूम को बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज मिले थे फ्रॉम द क्रिटिक्स, लेकिन उसके बावजूद दिस फिल्म वॉज अ बॉक्स ऑफिस हिट।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड आज धूम के बारे में बात करते हुए इतनी सारी बातें हैं जो धूम के बारे में पता लगी हैं। पर आपको पता है संजय गढ़वी, हु इज द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म, उन्होंने इनिशियली डिसाइड किया था कि वो टॉप ऑफ द लाइन स्पोर्ट्स कार इस्तेमाल करते हुए इस फिल्म को बनाएंगे। यानी कि इट वुड नॉट हैव बीन अबाउट बाइक्स, इट वुड हैव बीन अबाउट स्पोर्ट्स कार। लेकिन इवेंचुअली दे हैड टू डू बाइक्स बिकॉज ऑफ द रीजन कि अगर कार्स करते तो फिर एक्टर्स के शक्लें दिखाने बड़ी मुश्किल हो जाती हैं और काफी मशक्कत और मेहनत लगती है उसके पीछे। तो इस वजह से उन्होंने सीधे बाइक्स को ही हाँ बोल दिया। एंड इस फिल्म को शूट करते करते संजय गढ़वी ने काफी सारे ऐसे सीन्स शूट किए थे विच वर वेरी स्टीमी एंड हॉट बिटवीन अभिषेक बच्चन एंड रिमी सेन। लेकिन फिर हुआ ये कि इवेंचुअली सबके सब बड़े अप्रिहेंसिव हो गए इस चीज को लेकर कि यार ये जो हमने सीन्स शूट कर लिए हैं ये कुछ ज्यादा ही हो गया है, मतलब यू नो इट्स नॉट गोइंग टू गो वेल विद द ऑडियंस। तो उन लोगों ने उन सारे सीन्स को कट करके रख लिया और कहा कि यार इसको हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि ऑडियंस को अगर ये सब पसंद नहीं आया ना तो फिल्म में दिक्कत हो सकती है। आई थिंक तब तक मर्डर रिलीज नहीं हुई थी शायद। एनीवेज, बट बताइए क्या, इस फिल्म के लिए संजय दत्त को जॉन इब्राहिम के रोल के लिए साइन किया गया था, लेकिन इवेंचुअली दत्त साहब के पास डेट्स नहीं थी तो ही हैड टू ऑप्ट आउट। एंड देन आदित्य चोपड़ा ने डिसाइड किया कि वो अपने विलन के कास्ट के लिए एक यंगर एक्टर को लेंगे एंड देन जॉन इब्राहिम केम इनटू द पिक्चर। अच्छा, प्रीतम दा की भी एक कहानी है, उन्होंने ऑफकोर्स इस फिल्म का म्यूजिक डायरेक्ट किया, बट वाइल वो धूम धूम जो गाना था उसको रिकॉर्ड कर रहे थे, कंपोज कर रहे थे, तो टाटा यंग ने जब इस गाने को गाया था तो उनको रिकॉर्ड करने में बड़ी दिक्कत आई थी बिकॉज टाइटल है धूम और टाटा यंग बोल रही थी धूम, और उनको न जाने कितनी बार करेक्ट करने के बावजूद जब करेक्शन नहीं मिला तो इवेंचुअली धूम वॉज लेफ्ट टू धूम और गाने में भी अब वैसा ही आया है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

The whole thing is that रुपया सबसे बड़ा है भैया. देखिए बात इतनी है, जब एक्सचेंज के रेट्स इतने कमाल इतने अच्छे होना तो हमारे लिए तो यही सबसे बढ़िया एंड सबसे बड़ा है. अगर आज के रेट पे आईपी मनी को देखने की कोशिश करें तो आखिरकार पैसा क्या बोलता है फटाफट से आपको बता दिया जाए. अगर आज से ट्रांसफर करना चाहेंगे तो वन रियल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 26.22, साथ ही पाकिस्तानी रुपीज 77.03, बांग्लादेशी टाका 33.66, लंदन रुपीज 89.18 एंड इसके साथ ही नेपाली रुपीज 41.95. तो बस घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां, लेकिन अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए सुनते रहें कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची. इट्स हॉट, एंजॉय.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
3: शाहरुख खान ऐश्वर्या राय।
4: वो उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश जोश जोश।
3: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
4: सलमान खान एंड सैफ अली खान, वो तो उन्होंने कौन से पिक्चर में भाई,
3: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होंगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
4: मैं मुझे नहीं पता।
3: हम साथ
4: कौन
3: साथ
4: सी है? ओ हाँ, हम साथ साथ है। और
3: नाना पाटेकर कटरीना कैफ,
4: ये भाई बहन थे। वेलकम।
2: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: कट।
6: अबे कौन है?
5: उत्तपा।
6: उत्तपा कौन?
5: उत्तपा मैं दो डोसा और सांबर ऑर्डर किया था, आया क्या?
6: खट खट हो दैट।
1: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: There was a time जब हमारे घर पे केबल नहीं था तो पड़ोसियों का टीवी हमारा टीवी हुआ करता था.
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन.
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. एंड ये मेरी आदत नहीं थी कि मैं कहानी घर घर की देखती, लेकिन हमारे पड़ोस वाली दीदी जो थी ना, वो कहानी घर घर की देखा करती थी. और जो जो वो देखती थी वो मैं भी देखती थी, तो मुझे भी आदत हो गई कहानी घर घर की देखने की. मतलब देयर वाज अ टाइम जब इनिशियली मुझे ऐसा लगता था कि हाँ चलो ठीक है देख रहे हैं. फिर उसके बाद एक ऐसा टाइम आया कि मैं भी एक्साइटेड हुआ करती थी कि दीदी कहानी घर घर की का टाइम हो गया है. और फिर हम सब साथ में बैठ के टीवी देखा करते थे. लेकिन आपको पता है कहानी घर घर की में एक कहानी ऐसी थी जो घर घर की नहीं थी, वो एक ही घर की कहानी हुई. बिकॉज इट वॉज अ लव स्टोरी. किसके बीच में? मानव गोहिल और उनकी नाउ वाइफ एंड देन फ्रेंड श्वेता कवात्रा की. हालांकि इन दोनों का प्यार लव एट फर्स्ट साइट नहीं था, लेकिन सबसे पहले इन दोनों के बीच में ना दोस्ती शुरू हुई थी, विच इवेंचुअली इवॉल्व्ड इनटू लव. दोनों ने इस शो में साथ में काम किया एंड दे यूज्ड टू मीट क्वाइट ऑफन ऑफ कोर्स ऑन द सेट्स ऑफ द शो. लेकिन इट वॉज इनफैक्ट काउच ऑन द सेट ऑफ कहानी घर घर की जिससे की इनकी दोस्ती की शुरुआत हुई थी. होता ये था की देयर वॉज दिस काउच जो की सेट्स पे रखा रहता था, और श्वेता जो थी ना वो अक्सर उस काउच पर जाकर एक नैप ले लिया करती थी ड्यूरिंग द शॉट. Now, एक दिन ऐसा आया जब उनके काउच पर मानव नैप ले रहे थे, और श्वेता को ये बात अच्छी नहीं लगी बिकॉज इट वॉज हर टाइम टू टेक नैप. तो उन्होंने इस बात को चुप्पी साधते हुए नहीं अपना लिया, उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि मानव को ये बात पता लगे कि वो जिस काउच पर इतने हक से सो रहे थे ना, वो हक श्वेता का था और वो टाइम भी श्वेता का था नैप लेने का. एंड ऑफकोर्स ये जो इंटरेक्शन था ये बहुत स्वीट तो नहीं था, लेकिन इवेंचुअली हुआ ये कि इस इंटरेक्शन के बाद इन दोनों की दोस्ती के दरवाजे जो थे वो खुल गए. अब जब दोस्ती के दरवाजे खुल जाते हैं ना, तो वो कहा करते हैं ना कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं रह सकते. आई थिंक इनके केस में वो बात सच हो गई, और ऊपर वाला चाहता था कि ये बात सच हो. और दोस्ती के दरवाजे खुलने के बाद प्यार ने दस्तक दी और दिल के दरवाजे खुल गए दोनों के लिए. इवेंचुअली वी ऑल नो देम एज अ वेरी ब्यूटीफुल कपल, एज वेल एज अ कपल जिनकी केमिस्ट्री देखकर कई सारे कुंवारे दिलों ने कहा है कि हाय जोड़ी हो तो ऐसी. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na fiat bala burka. Milci, burka.
2: हेलो
3: हेलो भाई, संतोष से बात कर रहा हूँ। मेरी
2: बोल रहा हूँ।
3: हाँ जी भाई, संतोष यहाँ थाने से बोल रहा हूँ। आपको थाना आना पड़ेगा।
2: क्यों?
3: मैं आपको यही बता रहा हूँ, आप वहाँ पे गए थे जंतर मंतर?
2: गए थे जी।
3: आपने धरने पे बैठे थे आप?
2: जी बैठे थे।
3: वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ था, सबके लाठियाँ पड़ी थी, आपके रह गई हैं, आपकी 3 लाठियाँ लगनी है, यहाँ आके लगवा लो जल्दी से।
2: हाँ बताओ। जस्टिस के लिए गए थे सर वहाँ पे।
3: जस्टिस कैसा? जस्टिस भाई कैसा, मैं ये नहीं जानता जस्टिस। आप वहाँ पे गए थे, आप इस बात को मान रहे हो?
2: जी जी गए थे जी।
3: लाठी चार्ज हुआ वहाँ पे?
2: जी जी।
3: आपके पड़ी लाठी कोई?
2: मेरे तो नहीं पड़ी।
3: वही तो मैं कह रहा हूँ, आपके 3 लाठियाँ रख गई हैं यार, 3 लाठियाँ आपके लगनी है और आपको आने में परेशानी है, तो आपके एरिया इंचार्ज से बोल देंगे, वो वहाँ चले जाओ, वो 2-3 लाठियाँ मार देगा आपके यार। वैसे ही मीडिया ने हमें बदनाम कर रखा है, वो कह रहे हैं सबके लाठी पड़ी, आपके पड़ी नहीं, आप आगे बढ़वाओ यार जल्दी से।
2: सर आप नाराज क्यों?
3: नहीं नाराज की बात है, बताइए। हाँ बताओ।
2: सर अपने दोस्तों के कहने पे गया था, बहुत दूर था सर लाठी।
3: तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आप बहुत दूर थे ना वहाँ से भाई, बहुत दूर थे।
2: बहुत दूर था सर
3: भाई, इतने मैं यही तो कह रहा हूँ, बहुत दूर खड़े थे आप। आपके कोई लाठी लगी है नहीं लगी है बताओ?
2: दूर था तो सर मेरे कैसे लगती?
3: वही तो मैं कह रहा हूँ यार, आप बच गए, 3 लाठी रजिस्टर पे चलाइए, अब आपके नहीं लगाएंगे तो बात कैसे बनेगी?
2: सर नाराज क्यों है?
3: नहीं
2: तो
3: नाराजगी की तो बात है,
2: मैं दोस्तों के कहने पे गया।
3: तो अब मैं आपसे, मैं भी आपका दोस्त हुआ, आपको आ जाओ, 3 लाठियां मारेंगे आपके, छोड़ देंगे आपको यार, क्या परेशानी है? वो भी हमसे परेशानी ये हो गई कि रजिस्टर में 3 लाठी चढ़ा दी, इसलिए मारनी है भाई, जल्दी आ जाओ भाई यार।
2: सर मैं शाम में आ जाऊंगा
3: यार। नहीं नहीं यार, मेरे को तमीज सिखा रहे हैं आप, हैं मेरे को तमीज सिखा रहा है, मैं यार तमीज से बात कर रहा हूँ, मैं तमीज से बात कर रहा हूँ भाई। इस बात समझ में नहीं आ रही, लाठी चार्ज हुआ था उसमें 3 लाठियां तुम्हारे नाम की है,
2: वो
3: बहुत दूर था।
2: नाराज
3: वाली बात है यार। ओके चलो, लाठी मत करो, लाठी नहीं मारेंगे, मुर्गा बन जाओ। संतोष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। भैया मुझे किसी ने बताया था तुम धरने पे गए थे और तुम्हारी कोई लाठी नहीं लगी थी, वाला के वहाँ लाठी चार्ज हुआ था और अब तुम अब मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए आप
2: कुकड़ू को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
4: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6
4: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में दिस गाना फ्रॉम द फिल्म कभी खुशी कभी गम। आई जस्ट लव दिस ट्रैक, द म्यूजिक, द पिक्चराइजेशन एंड ऑफ कोर्स माय फेवरेट्स काजोल एंड शाहरुख खान है इस गाने के अंदर। लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दिस सॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है कि अभी ना फिलहाल सूरज को थोड़ा सा और मध्यम कर देना चाहिए। लाइक आई रियली रियली फील कि काश कि सूरज के अंदर ना एक ऐसा कुछ घुमाने वाली चीज होती जिससे कि हम सूरज का वॉल्यूम जो है ना उसको थोड़ा और कम कर सकते थे। बाय वॉल्यूम आई मीन द हीट का वॉल्यूम, जो कुछ ज्यादा ही बढ़ता चला जा रहा है डे बाय डे। नहीं क्या, मतलब सीरियसली यार, गर्मी दिन ब दिन जो बढ़ती चली जा रही है, बिल्कुल बचपन के एड्स की याद आ रही है इसको झेलते झेलते, जिसमें कि सूरज जो था वो पाइप से बच्चों की एनर्जी चूसा करता था। एंड नाउ आई फील कि वो एड है तो बस एक इमेजिनेशन, बट भाई साहब गर्मियों के दिनों में दैट इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइव्स यार।
1: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
0: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, अब हमारी एनर्जीज को पंप अप करने की बारी आ चुकी है। एंड देयर इज दिस वन थिंग जिससे कि मेरी एनर्जी और आपकी एनर्जी दोनों ही रिजुवेनाइज हो जाती है, एंड दैट इज मानना मान करो गानों की पहचान। जहां पर मैं आपके लिए अ सेट ऑफ सॉन्ग्स चूज करती हूँ फ्रॉम 90s या अर्ली 2000, उन गानों की धुनों को निकालती हूँ, मिलाती हूँ, जुलाती हूँ और आपके सामने उसको सुनाती हूँ। आपको गेस करना होता है कि ये दो गाने कौन से हैं, और आज का जो मिक्स है इट गोज दिस वे। ओके जी, अब बस इतना करना है कि डीएम करना ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा, अपना नाम, अपने शहर का नाम और इन दोनों गानों के नाम लिखकर मुझे भेज दो। एंड स्टे ट्यून्ड, रहो विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। सूरज हो

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार थाईलैंड में एक बंदा था जिसकी अंतिम इच्छा थी कि उसके अंतिम संस्कार में चीयर गर्ल्स आए।
3: हाँ इसका भी सही है, इसने अपनी आफ्टर लाइफ पार्टी का फुल प्लान सेट कर रखा था और ऊपर से अब ये शोक सभा नहीं शौक सभा होगी।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
6: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
5: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
7: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
5: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
8: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
9: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।

0: Sunday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: बस बहुत हुआ प्रीतम दा के लिए, अब एक शब्द और नहीं सुनूंगी मैं.
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान.
1: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. एंड सच्ची बात है यार, कितना बोलते हैं यार, पूरी दुनिया बोलती है प्रीतम दा जो है वो इधर से कॉपी कर लेते हैं उधर से कॉपी कर लेते हैं. इनका म्यूजिक ओरिजिनल होता है कि नहीं होता है? ऑफ कोर्स होता है यार. इनफैक्ट मैं आज आपको उनका एक ऐसा गाना बताती हूँ जो उन्होंने कंपोज किया है, जो उनका ओरिजिनल है, उन्होंने कहीं से कॉपी नहीं किया है. लेकिन इस गाने को कॉपी किया गया बाय अ सर्बियन सिंगर. और पता है कौन से गाने की बात कर रही हूँ मैं? Well, जब भी मैं कहिए गाना जिसे प्रीतम दा ने कंपोज किया है, दैट वाज एक्चुअली पिक्ड अप बाय अ सर्बियन सिंगर. एंड जब भी मैं कहिए गाना 2007 में रिलीज हुआ था. 2010 में देयर इज दिस सर्बियन सिंगर जिनका नाम है डारा बबामरा, एंड शी केम अप विद दिस सॉन्ग ऑफ हर्स जिसका नाम है नेमा मिलाना. सुनो जरा. चौक गए? वेल, मुझे तो ये बात बताते हुए ना बड़ी खुशी हो रही है और बड़ी तसल्ली भी हो रही है कि चलो ठीक है यार, प्रीतम दा ने कहीं से अगर उठाया भी है कोई कट कॉपी पेस्ट करते हुए म्यूजिक का पीस, तो कई और लोगों को इंस्पायर भी किया है अपने ओरिजिनल पीसेस के साथ. क्या बोलते हो? स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Bollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
1: रजा मुराद, जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर दी अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज दी अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
2: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स स्टैंडर्ड में मैं दो बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
1: वेल, रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood,
3: Only on Mirchi, it's hot.
4: Cut, cut.
5: कौन है?
4: इशांत।
5: इशांत कौन?
4: इशांत गदाधारी भीम, इशांत।
5: Cut, cut. Who that?
6: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची बताओ सवाल क्या है?
0: So I recently met a girl through arranged marriage setup. You know she is good, but she earns way more than me. I feel there is a problem. क्या करूं?
1: तो तुम ये पूछ रहे हो कि वो तुमसे ज्यादा कमाती है तो मैं क्या करूं?

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: वो कहते हैं ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. वेल द सेम वेंट फॉर माधुरी दीक्षित, क्योंकि जब उन्होंने तेजाब की तो सबको बहुत डाउट हुआ कि ये कैसे करेगी.
0: मिर्ची 90s का सेट.
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और इन सब में द सिंगर ऑफ द फेमस सॉन्ग 1 2 3 अलका याग्निक भी थी. उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्होंने ये गाना गाया तो ऑफ कोर्स शी न्यू कि गाने में कितनी एनर्जी लगी है और उतनी ही एनर्जी इस गाने को परफॉर्म करने में भी लगनी है. लेकिन अलका ने माधुरी को देखा तो शी थॉट, ये लड़की तो कितनी चुपचाप है, ये कैसे परफॉर्म करेगी इस गाने पर. लेकिन जब गाना बना तो सबको चुप वाली माधुरी की जगह पटाका माधुरी देखने को मिली. आपको नहीं लगता कि हर इंसान के अंदर दो पर्सनालिटीज होती हैं? एक जो वो खुद के साथ होता है और दूसरा जो वो सबके सामने होता है. और सबके सामने माधुरी डायनामाइट ही निकली. वन ऑन वन और अकेले में वो कितनी ही चुप क्यों ना हो. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Milchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virtua la burga. Milchi, burga.
2: हेलो
3: भाई साहब, श्रीनिवासपुरी थाने से बोल रहे हो। मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
2: मोबाइल
3: ये सर आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
2: क्या रिपोर्ट आ गई है?
3: यही कि ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
2: मोबाइल चोरी हो गया?
3: हाँ जी भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
2: हाँ पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
3: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
2: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
3: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
2: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
3: भाई मैं कह रहा हूँ चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
2: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
3: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर बनाता हूँ।
2: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
3: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल्स आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
2: हाँ जी सर।
3: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
2: अच्छा बात करवा दो, कौन है ये?
4: ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर।
2: कुकड़ों को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट। ओ भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear Bakse,
2: यादों को चिट्ठी।
1: एक शादी के लिए मम्मा से उनकी साड़ी उधार मांगी थी, तो आज बहुत दिनों बाद तुम्हें खोला और जैसे वक्त की परतें एक एक करके उतरने लगी, तुम्हारी जंक लगी हुई कुंडी और वो हल्की सी मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू, जैसे पुरानी यादों की गठरी खुल गई हो। तुम सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं, तुम तो मेरी यादों का खजाना हो यार। तुम में बंद वो माँ की पुरानी साड़ियाँ, डैडी के खत, मेरे बचपन की तस्वीरें, टूटी फूटी गुड़ियाएं और वो डायरी, सब कुछ जैसे फिर से जी उठा। हमारी हर एक घर की शिफ्टिंग में तुम ही तो थे जो हमारे साथ सफर किया करते थे, कभी कपड़ों से भरे तो कभी किताबों से तो कभी चादरों और बर्तनों से। तुमने तो जैसे हमारा सारा बोझा उठाने का जिम्मा ले लिया था, वो भी बिना कोई शिकायत किए। कभी एक जमाना था कि तुम बेडरूम में खुले चौड़ में रखे जाते थे, फिर तुम ड्राइंग रूम का हिस्सा बन गए, जहाँ तुम 2-in-1 की फैसिलिटी थे, स्टोरेज भी और फर्नीचर भी। फर्नीचर बनकर एक सेटी की सूरत में तुम ड्राइंग रूम का लुक इम्प्रूव किया करते थे, और फिर आए फैंसी फर्नीचर्स, जिसके चलते अब तुम स्टोर रूम के कोने में रहने लगे हो। लेकिन तुम फिकर मत करो, बचपन के फील को मैंने आज भी जिंदा रखा है। तुम मेरे कमरे में सेटी के तौर पर रहते हो, और तुम में ना मैंने अपने बचपन से जुड़ी सारी यादों को संजो कर रखा है। तुम्हें जब खोलती हो ना, तो पुरानी यादों की भीनी भीनी खुशबू हमेशा मुझे घेर कर बैठ जाती है। और मैं अगर तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन दूं ना, तो मैं वो इंसान हूँ जो तुम्हारे अंदर कैद है वक्त से। हालांकि मैं बाहर हूँ, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे अंदर बंद है। तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। यू ट्यून इन टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार थाईलैंड में एक बंदा था जिसकी अंतिम इच्छा थी कि उसके अंतिम संस्कार में चीयर गर्ल्स आए।
3: हाय इसका भी सही है, इसने अपनी आफ्टर लाइफ पार्टी का फुल प्लान सेट कर रखा था और ऊपर से अब ये शोक सभा नहीं शौक सभा होगी।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
6: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
7: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Udit Narayan Alka Yagnik ki awaaz mein this gana from the film Man is cassette ke side B ka teesra gana.
2: Mirchi 90s cassette.
1: तो जी इस गाने में फरमाया गया है कि मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, मेरा मन ना जाने जुड़ गया कैसे ये बंधन। और एक्चुअली ये वो सवाल है जब हम किसी के प्यार में पड़ जाते हैं ना, तो हम कर रहे होते हैं ये सवाल, क्योंकि कहते हैं ना कि प्यार सोच समझ कर नहीं किया जाता। सही कहते हैं। आप जब सोच रहे होते हो कि ना नहीं नहीं नहीं नहीं मुझे तो प्यार व्यार में पड़ना ही नहीं है, अचान चूक ऐसी चीज होती है कि कोई आपकी जिंदगी में आता है और आपको प्यार हो जाता है। धत तेरी की, जो प्लान किया था वो तो हुआ ही नहीं ना। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली लव इज। लव कभी भी प्लान नहीं होता, इट्स ऑलवेज एंड ऑलवेज अनप्लान्ड। और इन चंद सवालों को लेकर मन का ये पूरा गाना बना दिया गया है। और इस गाने में आगे एक बहुत सही बात कही गई है, और वो ये है कि प्यार कहते हैं किसे, होता है ये दर्द क्या, आज पहली बार ये मैंने जाना दिलरुबा। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें मैं बदकिस्मत नहीं कहूंगी, खुशकिस्मत कहूंगी, कि अगर आपको एक से ज्यादा बार प्यार हुआ है, क्योंकि लोग अक्सर यही कहते हैं ना कि अभी तक सच्चा प्यार मिला नहीं। देखो प्यार हमेशा सच्चा ही होता है, सिचुएशंस ऐसी होती है कि आपको आपका प्यार जो है वो मिल नहीं पाता है फॉर एवर इन लाइफ। तो क्या होता है कि आप दो तीन बार किसी से प्यार में पड़ जाते हो, या यूं कहें कि दो तीन लोगों के प्यार में पड़ जाते हो और वो दो तीन बार होता है। लेकिन नॉट टू वरी, आपका जो प्यार है जो जिंदगी भर के लिए आपके लिए बेकरार है और बरकरार रहेगा, वो भी आपको मिल ही जाएगा यार। और आपके लिए यही दुआ करती हुई, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू से हम है रही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते, जाते जाते यही गाना आपके लिए लगाती हुई जा रही हूँ। और यहाँ के अलावा अगर आपको मुझे कहीं तलाशना है तो अपने दिल के अलावा मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी ढूंढ सकते हो बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, कॉज इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है। What did you steal in your childhood?
2: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे। मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसके चॉकलेट्स खत्म कर दिए कभी, और आज तक बोला नहीं कि वो मैं था।
1: What a way to confess, अभय देओल। अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज ए चाइल्ड। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
3: Cut, cut.
4: Who that?
3: Zaheer.
4: Zaheer. Zaheer who?
3: Zaheer si baat hai. Main hi hu. Aur koi nahi.
4: Cut, cut. Who that?
5: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची हेल्पलाइन?
1: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
0: मेरे घर का फ्रिज बिगड़ गया है, क्या करूं?
1: फ्रिज बिगड़ गया है, बड़ा ही गंभीर मामला है। मैं तो यही कहूंगा कि परवरिश में ध्यान रखना था, अब क्या?
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: अरे दिल ले गया भाई, दिल ले गया, और आपका जो दिल चुराया है वो नाम है मस्त मौला गौरव। सच कहूं तो यार, मैं किसी का अच्छा वॉलेट चुराना चाहता हूं, लेकिन फिलहाल दिल चुरा के ही काम चला रहा हूं। नाम है मस्त मौला गौरव, लेके आ गया शाम शानदार में शानदार बातें। 4:02 से ज्यादा का टाइम।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: इन सब के बीच आज से शुरुआत हो गई है उस दोहा इंटरनेशनल बुक फेयर की, जो हमारे कतर में लगता है एंड जबरदस्त रौनक लगती है। यस, 35th दोहा इंटरनेशनल बुक फेयर, और ये सेरेमनी इस बार और भी खूबसूरत हो गई, क्योंकि हर साल के साथ ये एडिशन बड़ा होता जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इस पूरे यू नो फेयर को ऑर्गेनाइज किया है, और मुझे लगता है कि दुनिया भर की बड़ी एम्बेसीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। एंड इस बार ये खास इसलिए भी है क्योंकि भाई, जब इस बार की बात करें तो लास्ट ईयर की शुरुआत से लेकर एंड तक बहुत कुछ हुआ, लेकिन जैसे ही कतर न्यू दिल्ली के इंटरनेशनल बुक फेयर में एज अ गेस्ट बनकर गया, तो हमें लगता है कि इस बार वहां पर एक झलक देखने को मिलेगी, कुछ इंडिया से भी इंस्पिरेशन लेकर अगर आई होगी तो। एंड इन सब के बीच 910 बूथ्स एंड डिस्प्लेइंग ओवर 1.85 मिलियन बुक्स। बुक्स के नाम से हम तुरंत अपने एग्जाम टाइम में चले जाते थे दोस्तों, जब मुझे एक ही किताब इतनी भारी लगती थी कि मैं उसे ही नहीं पढ़ पाता था। लेकिन मैंने किताबों के शौकीनों को देखा है, वो किताबों को पी लेते हैं, खा लेते हैं, जी लेते हैं। एंड अगर आप भी ऐसे ही हैं तो जरूर जाइए, क्योंकि ये बुक फेयर अब आपका इंतजार कर रहा है अंटिल May 23rd यहां DECC में। मस्त मौला गौरव आ गया है हमारे लिए। अगर आप इंतजार कर रहे थे तो गानों की दुकान लेके मिर्ची पर तैयार है। ये लो पहला गाना फहीम अब्दुल्ला के बाद, जल्दी जल्दी ले लो सब।
1: मिर्ची फ्रेश माल,
2: ड्रीमी वाइब और रोमांटिक फील के साथ सुनो शांत मेरा दिल।

इस गाने को गाया है फहीम अब्दुल्ला ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म चांद मेरा दिल से सुनते रहिए चांद मेरा दिल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6, मिर्ची।

0: Gaga. Energy. Escabana, escabana, sacabana. Cabana. Burka, burka.
1: La fiesta la burka. Energy, burka. Hello.
2: Hello.
1: Yes.
2: Motor से बोल रहे हैं?
1: हाँ जी.
2: Madam, please किसी mechanic को बुला देंगे, मेरी गाड़ी out of control हो गई है.
1: ठीक है sir.
2: 5 seconds जल्दी.
3: इतने में तो एक्सीडेंट हो जाएगा यार, जल्दी बुलाओ.
1: हेलो
2: हेलो
1: हेलो,
2: प्लीज जल्दी बता दो. मुझे
1: हेलो
2: हेलो होल्ड नहीं कर सकता. हेलो
4: हाँ जी सर.
2: सर प्लीज मेरे को बता दो, मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, ये किस तरह रुकेगी?
4: सर हैंड ब्रेक खींच दो.
2: एक सेकंड
4: एक सेकंड रुकिए. सर साइड में, लेफ्ट साइड में.
2: ओ यार मेरा वो छोले भटूरे वाला भी निकल गया, मैं रोज का था, मैं कैसे रुकूं? एक सेकंड
4: सर, इग्निशन ऑफ कर दो.
2: इग्निशन एक सेकंड रुकिए. ये चाबी से बंद करने को बोल रहे हैं.
4: हाँ जी.
2: एक सेकंड सर, कोई रास्ता मालूम है जिस रास्ते पे ले सकता हूँ इसको?
4: मेरे को क्या पता कहाँ पे है.
2: मैं इस वक्त पालम की तरफ से निकल रहा हूँ, पालम एयरपोर्ट की तरफ से.
4: सर इसका हैंड ब्रेक खींच दो.
2: एक सेकंड हैंड ब्रेक नहीं खींचना, एक सेकंड कुछ और. ये हैंड ब्रेक ऊपर करते हैं?
4: हाँ जी.
2: ऊपर करने से नहीं हो रहा है, और कुछ बता सकते हैं? ब्रेक बिल्कुल गए.
4: बिल्कुल गए. एक्सेलरेशन छोड़ दो सर.
2: क्या करूँ?
4: एक्सेलरेशन छोड़ दो.
2: एक सेकंड रुकिए.
4: क्या हो गया?
2: गाड़ी ठुक गई.
3: मैडम क्या नाम है आपका?
1: दिव्या.
3: दिव्या मैं रेडियो मिर्ची से नावेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया हमने.
1: I was so tense, I don't know what happened.
5: मिर्ची मुर्गा नावेद के साथ, only on मिर्ची. It's hot.
6: यार बजट टीवी बन रहा है, प्राइसेस देखे, सब्जी को हाथ लगाओ तो करंट लगता है.
7: मैंने बोला था ना मी 12th का वेट कर.
6: क्यों, सब सस्ता हो जाएगा क्या?
7: सब जगह नहीं, सिर्फ पेरिस हाइपरमार्केट में. मुमताजा ब्रांच की 4th एनिवर्सरी है 12th to 18th में. इट्स अ बिग प्राइस रिडक्शन,
6: किलर ऑफर्स. मैं अभी बैग पैक करता हूँ.
7: जॉइन द सेलिब्रेशन ऑफ सेविंग्स, ह्यूज डिस्काउंट्स ओनली एट पेरिस हाइपरमार्केट. मुमताजा, डोंट मिस आउट.
8: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं.
5: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
9: बार बार.
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
5: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: अरे कोई आपका हो ना हो सही है, लेकिन कतर हर उसके साथ है जो कतर की तरक्की में साथ देने आता है। एंड कतर को पता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वैल्यू, और इसीलिए कतर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क ने लॉन्च किया है $30 मिलियन का टेक वेंचर फंड।
1: #974974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: यस, हम आपको बता दें कतर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क QTSP ने लॉन्च कर दिया है अपने मेंबर ऑफ कतर फाउंडेशन के साथ मिलकर $30 मिलियन का टेक वेंचर फंड। एंड ये अपने आप में पहला एक पार्टनर फंड की तरह है। ये फंड स्पेशली उन यंग फाउंडर्स और डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए है जो इनोवेशन के साथ कतर के फ्यूचर में अपना फ्यूचर देखते हैं और उसे स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। अगर आप ऐसे ही प्राउड फीलिंग करते हैं कि कतर सिर्फ बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स को भी आगे वैल्यू दे रहा है, तो ये समझ लीजिए इट्स वन सच नेशन जहां पर वाकई में आइडिया और टेक्नोलॉजी अगर आपके पास है तो इन्वेस्ट करने के लिए कतर एकदम तैयार है। तो तैयार हो जाइए, कुछ अच्छे स्टार्टअप्स के प्लान बनाइए। वरना बचपन में अगर मैं अपनी बात करूं, साइंस प्रोजेक्ट कुछ थर्मोकोल चार्ट पेपर ग्लू लगा के बना लेता था, लगता था दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप मैं ही बना रहा हूं। मैंने तो एक बार मॉल बनाया था और फिर एक लड़के ने अपना पेंसिल बॉक्स उस पे गिराया, मॉल ऐसा धाराशाही हुआ, थर्मोकोल का पूछिए मत। लेकिन सच बात यह यार कि हम अपने वो चार्ट पेपर फेविकॉल वाली दुनिया में खुश थे और आज यहाँ अगर ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाओ तो डायरेक्ट $1 मिलियन फंड मिल रहा। 89.6 मिर्ची वन पर स्टार्टअप का टाइम है दोस्तों, कल से नहीं अभी से शुरू करो मिर्ची थॉट।
2: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
3: Shish.

0: अमाल मलिक, अरिजीत सिंह, तुलसी कुमार की आवाज एंड एयरलिफ्ट का ये गाना किसने सुनाया जनाब? और मेरे साथ चल रहा है मेरा शो शाम शानदार, जो लेकर आते हैं
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
0: एंड हम आप तक हर खबर लेकर आते हैं। अभी फिलहाल बात करें फोर्थ जीसीसी गेम के मेडल स्टैंडिंग की, जहां पर 29 टोटल मेडल्स के साथ कतर ने नंबर वन की पोजीशन बना ली है। यस, विद 29 टोटल मेडल्स कतर के पास है इस वक्त 11 गोल्ड, 10 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज एंड 29 टोटल मेडल्स। ये बता रहा है कि कतर ने दमदार प्रस्तुति दे दी है। दूसरे नंबर पर 21 मेडल जिसमें 9 गोल्ड के साथ सऊदी अरेबिया सेकंड पोजीशन पर, वहीं थर्ड पोजीशन पर बहरीन है 11 मेडल्स के साथ। यूएई सबसे पीछे इस वक्त अगर कहें तो यूएई 10 मेडल्स के साथ फोर्थ पोजीशन पर, हालांकि इनके नीचे ओमान और कुवैत है। स्टैंडिंग यही है क्योंकि 6 कंट्रीज में पार्टिसिपेट कर रही है एंड नंबर वन की पोजीशन कतर के पास बनी हुई है। होस्ट नेशन होने के नाते मुझे लगता है हमारे पास होम एडवांटेज है, होम का क्राउड है एंड हम सब चीयर कर सकते हैं, तो जरूर कीजिए। वीकेंड आ रहा है, जरूर जाइए जहां जहां ये गेम्स हो रहे हैं, अलग अलग वेन्यू हैं, आप ऑनलाइन इसकी टिकट बुक कर सकते हैं एंड जाकर सपोर्ट कीजिए ताकि आप आने वाले टाइम में जीसीसी के बेस्ट टैलेंट्स को ओलंपिक तक पहुंचते देखें और कहें अरे इसको तो हमने कतर में देखा था, ये तो जबरदस्त खेलता है। फिर लोग कहेंगे यार बड़ा नॉलेज है इसको। मिर्ची थॉट
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार थाईलैंड में एक बंदा था जिसकी अंतिम इच्छा थी कि उसके अंतिम संस्कार में चीयर गर्ल्स आए।
3: हाँ इसका भी सही है, इसने अपनी आफ्टर लाइफ पार्टी का फुल प्लान सेट कर रखा था और ऊपर से अब ये शोक सभा नहीं शौक सभा होगी।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स सिंपल सीधा नो टेंशन चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5 10 15 20 ऑफर वैलिड टिल July 31st आईपी स्मॉलर फीस बिगर स्माइल्स TNC अप्लाई
1: तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
2: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
3: दोनों मिलेगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6
4: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: सच कह रहे हैं दोस्तों, अभी भी मौसम ऐसा है कि सुबह, दोपहर, शाम और फिर रात हो रही है। वो दिन भी आएंगे जब सीधे दोपहर ही होगी। बदलते मौसम के मिजाज ये बता रहे कि टेम्परेचर अब 40 के ऊपर लगातार हमें मिल रहा है, लेकिन घबराना नहीं दोस्तों, इस टेम्परेचर से हमारा आपका एक ही भला होगा, आने वाले टाइम में जल्दी जल्दी समर्स बीतते जाएंगे, फिर हम विंटर्स की तरफ बढ़ जाएंगे। 6 महीने बाद की बात अभी से कर रहा हूं मैं।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: वैसे फिलहाल बात करें तो अब दिन का मैक्सिमम तापमान एक बार फिर से 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, वहीं मिनिमम तापमान की बात की जाए तो 28 डिग्री सेल्सियस। हवाओं की रफ्तार वीकेंड पर जरूर थोड़ी तेज चल रही है, 22 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास, और अगले कुछ दिनों तक अभी मौसम काफी ज्यादा डस्टी रह सकता है। तो प्लीज अगर आपको थोड़ा भी एलर्जी है, एस्थमेटिक है आप, तो थोड़ा अपना ध्यान रखना है, एंड कोशिश कीजिए जब भी बाहर निकल रहे हैं तो पर्याप्त पानी पीकर निकलें, एंड साथ में अपने आप को बचाने के लिए अच्छे से शेड्स पहने एंड कोशिश करें सनस्क्रीन लगाएं ताकि आप प्रोटेक्ट रहें किसी भी तरह की टैनिंग से। मस्त प्रोग्राम, बस यही चाहता है आप यूं ही हमेशा चमकते रहें, आपको किसी की नजर न लगे। मिर्ची इट्स हॉट।
2: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: Ajay Atul, the music composer duo and siblings, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
3: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
4: वीडियो गेम्स बंद हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है, और दूसरी बात अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स में लगे रहते थे।
3: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
2: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
5: कथक के हर कदम में छुपा है ग्रेस, कल्चर और कॉन्फिडेंस। MK आर्ट्स एकेडमी अब 2 ब्रांचेस में, अलवक्रा, अलजनूब गार्डन्स, ओल्ड एयरपोर्ट। 6 साल से लेकर हर एज के लर्नर्स के लिए सर्टिफाइड कोर्सेज अवेलेबल। एनरोल नाउ, कॉल या व्हाट्सएप करें 5112424। MK आर्ट्स एकेडमी, वेयर ट्रेडिशन मीट्स एक्सीलेंस।
6: खट खट,
7: हु देयर?
6: Whom are you?
7: Whom are you?
6: अरे whom are you looking for, madam?
7: खट खट, हु देयर?
1: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मैं मराठी हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड बंगाली है, उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कैसे समझाऊँ?
1: अरे गोचू, बंगाली है तो बंगाली में समझाना।
2: मस्त जोक मारा, ये हंस रहे हल्का हंस।

0: आ गई। अगर आ गई है तो अच्छी बात है, उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट भी ले लो।
1: मस्त मौला गौरव।
0: अरे बात करें दुनिया में उस नई नन्ही सी जान की, अगर वो आती है तो हमारे कतर में बर्थ सर्टिफिकेट मिस्टर पब्लिक हेल्थ ने उसके लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। लेकिन फिलहाल घड़ी पे हम टाइम अनाउंसमेंट कर दे 5:03 से ज्यादा।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: और अब हम बात करेंगे उस इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने की है। यस, अनाउंस किया है ऑफिशियल वर्किंग आवर्स बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन सेक्शन का कतर की कुछ हेल्थ फैसिलिटीज में। बता दें आपको, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने सोशल मीडिया पोस्ट पर बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स एंड बर्थ सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट के लिए सुबह 7:30 से दोपहर 1:30 बजे तक का टाइम मुकर्रर किया है। मॉर्निंग शिफ्ट में एट वुमेन्स वेलनेस एंड रिसर्च सेंटर, अलवकरा हॉस्पिटल, आयशा बिन हमद अल अतिया हॉस्पिटल, क्यूबन हॉस्पिटल, सिद्रा मेडिसिन अल अहली हॉस्पिटल, दोहा क्लिनिक हॉस्पिटल, आलिमादी हॉस्पिटल। और इतने नहीं, इनमें इवनिंग वर्किंग आवर्स भी है। यस, ये दोपहर 1:30 बजे से 6:30 बजे शाम तक भी आपको यही बर्थ सर्टिफिकेट बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स देंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा भी लेट होते हैं दोस्त, तो अगले दिन फिर से लाइन में लगना पड़ेगा। वैसे सच में यार, मैं अपने बारे में याद करता हूं तो मुझे यही लगता है कि मुझे जिंदगी में एक चीज में बड़ा डर लगता था कि मैं काउंटर तक पहुंचूं और वहां सिस्टम फेल हो जाए। हालांकि कतर में ऐसा नहीं होता, यही बस अच्छी बात है। 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।
2: शाम शानदार, brought to you by Kim's Health Medical Center.

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Mirchi, burga. हेलो,
2: गुड इवनिंग मिस्टर मनोज.
1: गुड इवनिंग
2: मिस्टर मनोज, मैं तिवारी बोल रहा हूँ ऑल इंडिया चिल्ड्रन सोसाइटी से.
1: ओके
2: सर, आपको थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि हम हर हफ्ते एक फंक्शन रखते हैं जिसमें ज्यादातर पेरेंट्स और ज्यादातर बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. अनफॉर्चुनेटली आप इत्तेफाक से यहाँ पे आ नहीं पाए, तो हम उन लोगों को भी फोन कर रहे हैं और उनसे सवाल जवाब पूछ रहे हैं ताकि बच्चे की तरह उनकी भी नॉलेज अच्छी रहे. राइट फाइन. तो सर आपसे दो चार सवाल करेंगे प्लीज, आपके पास दो मिनट होंगे और यहाँ पे कई लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, हमने आपको कनेक्ट कर रखा है, तो कुछ सवाल आपके होंगे, जवाब देने पड़ेंगे. राइट सर. मिस्टर मनोज, आपके सवाल ये रहे, टू टू जा
1: फोर.
2: वेट सर, वेट.
1: इवेंट ये फंक्शन कहाँ हो रहा है
2: सर? यहीं पे लोधी रोड पे हो रहा है, अगर आप आना चाहते हैं तो आ भी जाइएगा. दूसरा आपका सवाल सर, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो
1: डर जाएगी.
2: गुड सर, वेरी गुड सर.
1: ये कोई इतने मुश्किल सवाल जवाब तो है नहीं
2: सर. आप चाहते हैं कि मुश्किल पूछे जाए आपसे, ये तो और आप हमारे लिए आसानी कर रहे हैं, हम तो जान के आसान.
1: मेरी नॉलेज चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं
2: सर? वही नॉलेज ही चेक कर रहे हैं, ताकि बच्चों की तो नॉलेज हम चेक करते ही रहते हैं. पेरेंट्स को अकल कितनी है, और प्लीज बुरा मत मानिएगा, अगर आप चाहते हैं तो आपसे हम ज्यादा मुश्किल सवाल पूछ सकते हैं बड़ों वाले.
1: पूछो यार.
2: अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90
1: पूरे 100.
2: ग्रेट ग्रेट मिस्टर मनोज, ग्रेट. सर आपका अगला थोड़ा सा मुश्किल सवाल है सर. पोषम मावई पोषम पाल, लाल किले में क्या हुआ? 100 रुपए की चोरी चुराई, अब तो कहाँ आना पड़ेगा?
1: जेल में जाना पड़ेगा.
2: ग्रेट सर, ग्रेट. रेडियो मिर्ची पर जो भी मुझसे बात करता है उसका बन जाता है क्या?
1: समझा नहीं मैं.
2: मैं बताता हूँ सर, इसका जवाब है मुर्गा. मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका प्यारा सा जो बेटा है रोहन, उसने आपका मुर्गा बनवाया है, और ये क्विज उसी का था. जो भी नवेद से बात करता है वो खुद बोलता है क्या?
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.
4: यार बजट ही बन रहा है, प्राइसेस देखे, सब्जी को हाथ लगाओ तो करंट लगता है.
5: मैंने बोला था ना, मी 12th का वेट कर.
4: क्यों, सब सस्ता हो जाएगा क्या?
5: सब जगह नहीं, सिर्फ पेरिस हाइपरमार्केट में. मुमताजा ब्रांच की 4th एनिवर्सरी है 12th to 18th में. इट्स अ बिग प्राइस रिडक्शन,
4: किलर ऑफर्स. मैं अभी बैग पैक करता हूँ.
5: जॉइन द सेलिब्रेशन ऑफ सेविंग्स, ह्यूज डिस्काउंट्स ओनली एट पेरिस हाइपरमार्केट. मुमताजा, डोंट मिस आउट.
6: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा.
7: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
8: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने.
9: हिट गाने
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: अरे लगता है इसने भी रेट देख लिया, इसीलिए झिंगाट गाने पे नाच रहा है।
1: मस्त मौला गौरव।
0: अगर आज पैसे मिल जाए ना दोस्त यारों से, तो सच में घर भेज के लखपति फिर से बन जाओ यार। मतलब जो रेट मिलने अब तक के सबसे बेस्टी टाइप है। अगर बात करें एक कतरी रियाल के बदले मिलने वाले इंडियन रुपीज 26 रुपए 25 पैसे 26.25 भारतीय मुद्रा में इस वक्त मिल रहे हैं, इनका मौके का फायदा उठाने का टाइम आ गया है दोस्तों। इसके अलावा बात की जाए तो 1 कतरी रियाल के बदले मिलने वाले लंकन रुपीज 89.70, पाकिस्तान रुपीज की बात करें जनाब 1 कतरी रियाल के बदले 77.00 यानी कि 77 एग्जैक्ट पाकिस्तान रुपीज अगेंस्ट 1 कतरी रियाल। अगर हम नेपाल रुपीज की बात करें तो फाइव हजूर 1 कतरी रियाल के बदले 41.95 का भालचर दाई। हाँ जी 41.95 करोड़ छो हजूर, मोहिनी घर भेजना है तो राइट टाइम छो। अगर इसके बाद हम बांधू बांग्लादेश टका बात करेगा दादा 8 कतरी रियाल के बदले 33.65 तो 33.65 बांग्लादेश टका का रेट मस्त मौला गौरव के साथ। अगर पैसे हैं तो जल्दी भेज दो घर, इसमें बिल्कुल ना करो लेट, क्योंकि जबरदस्त मिल रहे हैं आईपीए पे एक्सचेंज रेट। मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार थाईलैंड में एक बंदा था जिसकी अंतिम इच्छा थी कि उसके अंतिम संस्कार में चीयर गर्ल्स आए।
3: हाय इसका भी सही है, इसने अपनी आफ्टर लाइफ पार्टी का फुल प्लान सेट कर रखा था और ऊपर से अब ये शोक सभा नहीं शौक सभा होगी।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: When you're hungry for real flavor, think Indie Grill. Authentic Indian cuisine, rich spices, sizzling grills, unforgettable taste. Al Saad, West Bay and the Pearl. Dine in or take away. Indie Grill, where Indian flavors come alive.
6: कथक के हर कदम में छुपा है ग्रेस कल्चर और कॉन्फिडेंस। एम के आर्ट्स एकेडमी अब दो ब्रांचेस में अल वक्रा अल जनूब गार्डन्स ओल्ड एयरपोर्ट। 6 साल से लेकर हर एज के लर्नर्स के लिए सर्टिफाइड कोर्सेज अवेलेबल। एनरोल नाउ, कॉल या व्हाट्सएप करें 5112424240। एम के आर्ट्स एकेडमी वेयर ट्रेडिशन मीट्स एक्सलेंस।
7: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझो।
8: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
9: बहुत कुछ होगा।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

मेरा किताबों से रिश्ता यही वाला था। अरे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। मस्त मौला गौरव आपके साथ है। एंड मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा रिलेशन बुक्स के साथ ऐसे ही होता था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो वही पढ़ पाएंगे, क्योंकि साल भर हम कुछ पढ़ ही नहीं पाते थे। लेकिन अगर आप है रीडिंग के शौकीन और किताबों पर किताबें खरीदते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, फिर भी मन नहीं मानता, तो फिर है आपके लिए 35th दोहा इंटरनेशनल बुक फेयर जो शुरू हो चुका है हमारे कतार में। यस, दोहा एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर में 23 मई तक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑर्गेनाइज किया हुआ है 35th एडिशन ऑफ दोहा इंटरनेशनल बुक फेयर। ये अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा वाला बुक फेयर है एंड इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहां पर 1.85 मिलियन बुक्स हिस्सा ले रही हैं और इसके अलावा 231,000 टाइटल्स भी अवेलेबल हैं। इतनी सारी किताबें, इतने सारे टाइटल्स, ये बता रहा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा एडिशन है। और किताबें अगर आप

0: जा रहा है। सोचिए अगर मैंने पढ़ी होती किताबें तो आज ये गाने ऐसे गाता नहीं ना। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, हिस्सा बनिए एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस। बच्चों को भी ले जाइए, क्योंकि एक बार अगर बच्चों के मन में ये आ गए किताबें ही सबसे अच्छी हैं दुनिया में, बस फिर क्या है, लॉटरी लगेगी, पढ़ाई करके वो आगे बड़ा इंसान बनेगा और फिर मस्त मौला गौरव जैसे इंसान को सुन भी पाएगा रेडियो पे 89.6 मिर्ची 1। इट्स हॉट
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: हिमेश रेशमिया, अगर आप एक रेडियो जॉकी होते तो आप किस टॉपिक पर प्रोग्राम करते?
3: मैं डेफिनेटली लव का ही प्रोग्राम करना चाहता, जो प्रॉब्लम है कॉलर की और रोमांस में, लव में छोटी छोटी बातें, वो कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
2: हिमेश रेशमिया, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है, क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
5: तो इंतजार खत्म। RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
4: अभी कॉल करें 3100813।
5: कथक के हर कदम में छुपा है ग्रेस, कल्चर और कॉन्फिडेंस। MK आर्ट्स एकेडमी अब दो ब्रांचेस में, अलवक्रा अलजनूब गार्डन्स ओल्ड एयरपोर्ट। 6 साल से लेकर हर एज के लर्नर्स के लिए सर्टिफाइड कोर्सेज अवेलेबल। एनरोल नाउ, कॉल या व्हाट्सएप करें 5112424240। MK आर्ट्स एकेडमी, वेयर ट्रेडिशन मीट्स एक्सलेंस।
6: खट खट,
7: कौन है?
6: अज्जू।
7: अज्जू कौन?
6: अज्जू ना आए बालमा, सावन बीता जाए। होए
7: खट खट, हो दैट
8: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। मिर्ची इट्स हॉट।

0: है वीकेंड प्लान तो आपका भी है। मौसम अभी ठीक ठाक है, सुबह शाम अच्छी खासी एकदम से माहौल बना देती हैं हवाएं, एंड मुझे लगता है कि बीच के लिए भी वीकेंड आउटिंग बढ़िया है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, डस्टी वार्निंग्स है इन सब के बीच। कल अपने घर से अगर कुछ देखना चाहते हैं तो सारे कतर के जितने रहने वाले उनको बता दें कि वीनस, यस प्लैनेट वीनस, अपने सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट पर होगा सन के एकदम करीब। और हमारे और आपके पास मौका है कि 15 मई यानी कि कल के दिन हम वीनस को अपने सबसे करीब देख पाए, वो भी अपनी खुली इन्हीं आंखों से। यस, रात 8:36 पर लोकल टाइम आफ्टर सनसेट एंड बिफोर द प्लैनेट सेट्स इन कतर स्काई आप ये पूरा नजारा देख पाओगे। कतर कैलेंडर हाउस ने अनाउंस कर दिया है, मौका है, अपनी आंखों से ही देखना पड़ेगा, कोई दूरबीन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर टाइम है एंड कुछ अच्छा देखना चाहते हो तो मुझे लगता है दो इंटरनेशनल बुक फेयर का हिस्सा बन जाओ। 35th एडिशन, बिगेस्ट एवर, जहां पर मिलियंस ऑफ बुक्स आपका इंतजार कर रही है। आप पहुंच जाइए DCC एंड जाइए, इसका हिस्सा बन जाइए। पार्किंग का कोई इश्यू नहीं है क्योंकि आपके पास दोहा मेट्रो, कतर रेल, ये सारी इजी वाली ट्रांसपोर्ट सर्विस आपके लेकर आता है। इस उम्मीद में कि ये वीकेंड वेल स्पेंड होगा। मस्मोला गौरव ले रहा अलविदा, लौटेंगे सैटरडे की शाम शानदार में हफ्ते का बेस्ट लेकर। तब तक ले हबीबी यहीं जमे रहिए मिर्ची, इट्स हॉट, टाटा बाय, मस्सलामा।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मेरे हस्बैंड ऑफिस से रोज लेट आते हैं और खाना खा के सीधा सो जाते हैं, क्या करूं?
1: अरे मैडम, उनको बोलो खाना खा के सीधा ना सोए, बाएं साइड सोए, उससे क्या हेल्थ भी अच्छी रहेगी।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में बज गए शाम के 6 एंड यू एंजॉयिंग क्लब मिर्ची
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर
3: लेडीज एंड जेंटलमैन फैस्टन योर सीट बेल्ट्स एंड वेट फॉर द नो स्मोकिंग साइन वी आर गोना गो ऑन अ राइड.

Party people, volume full, mood on turbo. आज का सीन सिंपल है, no overthinking, only over dancing. और नाचने के बहुत सारे reasons भी है. पहला वाला reason है हमारे DJ Richard का जन्मदिन, जो कि 1 मई को आता है, मतलब लेबर उनका और happiness हमारा, जो कि हमें मिलता है क्लब मिर्ची से. Thank you so much Richard for making our weekends fantabulous. And here's your listeners, Dree, Ride Music. Shrijoy Bhattacharya, Shudipto Roy, DVJ Arv, AKD, Mahesh Chogle and Shahib Ghosh wishing you a happy belated birthday. And may I add my name too? Mirti Oyontika, giving you loads of love and a warm hug. Ishq bhi chal raha hai aur dance floor bhi chalega. So let's light it up. DJ Richard.

कुछ आज ग्रूव डिसाइड करेगा. द ट्यून इज टंटनन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका. एंड आई एम श्योर विद दिस काइंड ऑफ म्यूजिक वी आर ऑल गोइंग टू गेट लकी टुनाइट. Like the legend of the thing.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: यार बजट टीवी बन रहा है, प्राइसेस देखिए, सब्जी को हाथ लगाओ तो करंट लगता है।
2: मैंने बोला था ना, मई 12th का वेट कर।
1: क्यों, सब सस्ता हो जाएगा क्या?
2: सब जगह नहीं, सिर्फ पेरिस हाइपरमार्केट में मुमताजा ब्रांच की 4th एनिवर्सरी है। 12th टू 18th में इट्स अ बिग प्राइस रिडक्शन,
1: किलर ऑफर्स। मैं अभी बैग पैक करता हूँ।
2: जॉइन द सेलिब्रेशन ऑफ सेविंग्स, ह्यूज डिस्काउंट्स ओनली एट पेरिस हाइपरमार्केट। मुमताजा, डोंट मिस आउट।
3: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
4: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
5: आएंगे दीदी।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
8: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

बैक अगेन दिल में जो है बोल दे क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका और इसी बीट पे छोड़ दो यार खुद को डांस फ्लोर के नाम पे सौंप दो चुप क्यों रहे

नहीं नहीं पीने के बाद सिर्फ डांस करो, बातें नहीं. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योनिका एंड पीपल हु स्टिल वांट टू गिव लेक्चर्स आफ्टर ड्रिंक्स, ये है असली इमोशनल अत्याचार.

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में बज गए 7 एंड यू एंजॉय क्लब मिर्ची
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर
3: लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर गोना गो

रंगीला मूड हो या हार्ड ब्रेक बॉस, वी ऑल विल सर्वाइव एंड डांस. डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका विथ यू ऑन क्लब मिर्ची. दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
2: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो।

0: Follow me up, cho-cho-cho. Sin anime in the camera, oh.
1: Club Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
2: Mirchi Stories.
3: बस 24 घंटे ही रहेंगी
4: यार। थाईलैंड में एक बंदा था जिसकी अंतिम इच्छा थी कि उसके अंतिम संस्कार में चीयर गर्ल्स आए।
5: भाई इसका भी सही है, इसने अपनी आफ्टर लाइफ पार्टी का फुल प्लान सेट कर रखा था और ऊपर से अब ये शोक सभा नहीं शौक सभा होगी।
6: मिर्ची, इट्स हॉट।
7: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
8: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
7: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
9: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
7: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
10: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
11: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।
12: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।
1: Club Mirchi.

इश्क बिना भी पार्टी चलती है। क्लब मिर्ची है शो का नाम। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका आपके साथ। बस बीट्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बाकी लिरिक्स अ लॉट ऑफ टाइम्स ना तुम जानो ना हम।

क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योन तिका। आप बोलो या ना बोलो, ग्रूव एंड बीट्स यहाँ पे बोलती है नॉन स्टॉप। एंड अगर आप सोच रहे हो कि आप ब्रेक लोगे थोड़ा, सो जाइए सजना।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal. Only on Mirchi. It's hot.
2: रजा मुराद, जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर द अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज द अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
3: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स स्टैंडर्ड में मैं दो बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
2: वेल, रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Bollywood Boldal.
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
4: Only on Mirchi, it's hot.
5: Ladies and gentlemen.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. Nafis wala murga. Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Yes.
3: Motor se bol rahe hain?
2: हाँ जी
3: मैडम, प्लीज किसी मैकेनिक को बुला देंगे, मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है।
2: ठीक है सर,
3: 5 सेकंड जल्दी।
4: इतने में तो एक्सीडेंट हो जाएगा यार, जल्दी बुलाओ।
2: हेलो
3: हेलो
2: हेलो,
3: प्लीज जल्दी बुला लो।
2: सॉरी, कोई कस्टमर उनके लाए गाड़ी। हेलो
3: हेलो, होल्ड नहीं कर सकता। हेलो,
5: हाँ जी सर।
3: सर प्लीज मेरे को बता दो, मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, ये किस तरह रुकेगी?
5: सर हैंड ब्रेक खींच दो।
3: एक सेकंड।
5: सर हैंड ब्रेक खींच दो सर।
3: एक सेकंड रुकिए।
5: सर साइड में, लेफ्ट साइड में।
3: ओ यार, मेरा वो छोले भटूरे वाला भी निकल गया, मैं रोज का था, मैं कैसे रुकूं? एक सेकंड
5: सर, इग्निशन ऑफ कर दो।
3: इग्निशन, एक सेकंड रुकिए। ये चाबी से बंद करने को बोल रहे हैं।
5: हाँ जी।
3: एक सेकंड सर, कोई रास्ता मालूम है जिस रास्ते पे ले सकता हूँ इसको?
5: मेरे को क्या पता कहाँ पे है।
3: मैं इस वक्त पालम की तरफ से निकल रहा हूँ, पालम एयरपोर्ट की तरफ से।
5: सर इसका हैंड ब्रेक खींच दो।
3: एक सेकंड हैंड ब्रेक नहीं खींच रहा है, एक सेकंड कुछ और। ये हैंड ब्रेक ऊपर करते हैं?
5: हाँ जी।
3: ऊपर करने से नहीं हो रहा है, और कुछ बता सकते हैं? ब्रेक बिल्कुल गए,
5: बिल्कुल गए। एक्सेलरेशन छोड़ दो सर।
3: क्या करूँ?
5: एक्सेलरेशन छोड़ दो।
3: एक सेकंड रुकिए।
5: क्या हो गया?
3: गाड़ी ठुक गई।
2: Yes.
4: मैडम, क्या नाम है आपका?
2: दिव्या।
4: दिव्या, मैं रेडियो मिर्ची से नावेद बोल रहा हूँ। छोटा सा मजाक किया था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया हमने।
2: Oh, God. I was so dense, I don't know what happened.
6: मिर्ची मुर्गा नावेद के साथ, only on मिर्ची। It's

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में रात के 8 की पारिंग विद क्लब मिर्ची
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर
3: लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर गोना गो
4: ऑन अ राइड

के नशे में हर वीकेंड पे आ ही जाते हैं डीजे रिचर्ड एंड हिज प्लेलिस्ट ऑन क्लब मिर्ची। बाय द वे हैप्पी बिलेटेड बर्थडे रिची। डीजे रिचर्ड के साथ मैं भी रहती हूँ, मेरा नाम है मिर्ची ओयो अंतिका।

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: हेलो भाई संतोष से बात कर रहा हूँ मेरी
2: जी बोल रहा हूँ
3: हाँ जी भाई संतोष यहाँ थाने से बोल रहा हूँ आपको थाना आना पड़ेगा
2: क्यों
3: मैं आपको यही बता रहा हूँ आप वहाँ पे गए थे जंतर मंतर
2: जी गए थे जी
3: आपने धरने पे बैठे थे आप
2: जी बैठे थे
3: वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ था सबके लाठियाँ पड़ी थी आपके रह गई हैं आपकी तीन लाठियाँ लगनी है यहाँ के लगवा लो जल्दी से
2: हम तो जस्टिस के लिए गए थे सर वहाँ पे
3: जस्टिस कैसा जस्टिस भाई कैसा मैं ये नहीं जानता जस्टिस आप वहाँ पे गए थे आप इस बात को मान रहे हो
2: जी गए थे जी
3: लाठी चार्ज हुआ वहाँ पे
2: जी
3: आपके पड़ी लाठी कोई
2: मेरे तो नहीं पड़ी
3: वही तो मैं कह रहा हूँ आपके तीन लाठियाँ रख गई हैं यार तीन लाठियाँ आपके लगनी है और आपको आने में परेशानी है तो आपके एरिया इंचार्ज से बोल देंगे वो वहाँ चले जाओ वो दो तीन लाठियाँ मार देगा आपके यार वैसे मीडिया ने हमें बदनाम कर रखा है वो कह रहे हैं सबके लाठी पड़ी है आपके पड़ी नहीं आप आगे बढ़वाओ यार जल्दी से
2: सर आप नाराज क्यों
3: नहीं नहीं नाराज क्यों की बात है बताइए हाँ बताओ
2: सर अपने दोस्तों के कहने पे गया था कहाँ पे बहुत दूर था लाठी
3: तो वही तो मैं कह रहा हूँ आप बहुत दूर थे ना वहाँ से भाई
2: बहुत दूर था
3: भाई इतने मैं यही तो कह रहा हूँ बहुत दूर खड़े थे आपके कोई लाठी लगी है नहीं लगी है बताओ
2: दूर था तो सर मेरे कैसे लगती
3: वही तो मैं कह रहा हूँ यार आप बच गए तीन लाठियां रजिस्टर पे चलाइए अब आपके नहीं लगाएंगे तो बात कैसे बनेगी
2: सर नाराज क्यों है मैं
3: नहीं
2: तो
3: नाराजगी की तो बात है
2: मैं दोस्तों के कहने पे गया
3: तो अब मैं आपसे मैं भी आपका दोस्त हुआ आपको आ जाओ तीन लाठियां मारेंगे आपके छोड़ देंगे आपको यार क्या परेशानी है वो भी हमसे परेशानी ये हो गई कि रजिस्टर में तीन लाठी चढ़ा दी इसलिए मारनी है भाई जल्दी आ जाओ भाई
2: सर मैं शाम में आ जाऊंगा
3: यार नहीं नहीं यार मेरे को तमीज सिखा रहे हैं आप हैं मेरे को तमीज सिखा रहा है मैं यार तमीज से बात कर रहा हूँ मैं तमीज से बात कर रहा हूँ भाई इस बात समझ में नहीं आ रही लाठी चार्ज हुआ था उसमें तीन लाठियां तुम्हारे नाम की है
2: वो
3: बहुत दूर था
2: नाराज
3: वाली बात है यार ओके चलो लाठी मत करो लाठी नहीं मारेंगे मुर्गा बन जाओ संतोष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ भैया मुझे किसी ने बताया था तुम धरने पे गए थे और तुम्हारी कोई लाठी नहीं लगी थी वाला के वहाँ लाठी चार्ज हुआ था और अब तो अब मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए आप
2: कुकड़ों को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: पलवानी तो सिर्फ छोरे करें
6: हमारी चोरियां चोरों से कम है के
7: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन इट्स हॉट
10: लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर गोना गो
11: क्लब मिर्ची

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। थाईलैंड में एक बंदा था जिसकी अंतिम इच्छा थी कि उसके अंतिम संस्कार में चीयर गर्ल्स आए।
4: भाई इसका भी सही है, इसने अपनी आफ्टर लाइफ पार्टी का फुल प्लान सेट कर रखा था और ऊपर से अब ये शोक सभा नहीं शौक सभा होगी।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
4: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
7: कैसे रुक सकता है?
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
5: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
9: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो
5: ऑन अ राइड।
6: कुत्तों के सामने मत नाचना।
4: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
7: कैसे रुक सकता है?
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
5: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
9: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो।

0: हर बार दिल टूटेगा और बीट ड्रॉप होगी ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयो देखा। आई जस्ट माइट प्ले दर्दे डिस्को नाउ फॉर यू, लेट्स गो।
1: वो हसीना वो नीलम परी

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है. व्हाट डिड यू स्टील इन योर चाइल्डहुड?
4: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे. मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसके चॉकलेट्स खत्म कर दिए. कभी आज तक बोला नहीं कि वो मैं था.
3: व्हाट अ वे टू कन्फेस अभय देओल. अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज अ चाइल्ड. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोलडाल. Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boldar.
2: Only on Mirchi, it's hot.
5: Cut, cut.
6: Who's that?
5: Butt.
6: Butt? Are butt who?
5: Butt, butt, butt, butt, butt, butt, butt. Bike बहुत आवाज करती है.
6: Cut, cut. Who that?
7: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot. With Mirchi, fresh mal.
8: Say wow! Hey guys, this is Varun Dhawan. Wow, that goes wow.
9: Swag, style aur non-stop dancing ke liye taiyar ho jao.
8: Add it, turn it up and don't sit now. Just go wow.
9: Wow! Say wow!

0: वाओ।
1: इस अपबीट ट्रैक को गाया है हार्डी संधु और किरण बाजवा ने। म्यूजिक कंपोज किया है तनिष्क बागची, रॉनी अजनाली और गिल मचराई ने। लिरिक्स लिखे हैं रॉनी अजनाली और गिल मचराई ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है का ये सुपरहिट गाना सुनते रहिए ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।

ready for this. मैं और तू रिचर्ड एंड मिर्ची ओयो देगा काफी है हम और हमारे साथ क्लब मिर्ची एंजॉय कर रहा है पूरा देश इनफैक्ट इंटरनेशनल है बॉस क्लब मिर्ची जा रही है सैया जी द बेसलाइन्स टू गुड

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये।

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो,
3: गुड इवनिंग मिस्टर मनोज.
2: गुड इवनिंग
3: मिस्टर मनोज, मैं तिवारी बोल रहा हूँ ऑल इंडिया चिल्ड्रन सोसाइटी से.
2: ओके
3: सर, आपको थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि हम हर हफ्ते एक फंक्शन रखते हैं जिसमें ज्यादातर पेरेंट्स और ज्यादातर बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. अनफॉर्चुनेटली आप इत्तेफाक से यहाँ पे आ नहीं पाए, तो हम उन लोगों को भी फोन कर रहे हैं और उनसे सवाल जवाब पूछ रहे हैं ताकि बच्चे की तरह उनकी भी नॉलेज अच्छी रहे. राइट फाइन. तो सर आपसे दो चार सवाल करेंगे प्लीज, आपके पास दो मिनट होंगे और यहाँ पे कई लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं. हमने आपको कनेक्ट कर रखा है तो कुछ सवाल आपके होंगे, जवाब देने पड़ेंगे. राइट सर. मिस्टर मनोज, आपके सवाल ये रहे, टू टू जा
2: टू टू जा फोर.
3: वेट सर, वेट.
2: इवेंट ये फंक्शन कहाँ हो रहा है?
3: सर यहीं पे लोधी रोड पे हो रहा है, अगर आप आना चाहते हैं तो आ भी जाइएगा. दूसरा आपका सवाल सर, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो
2: डर जाएगी.
3: गुड सर, वेरी गुड सर.
2: ये कोई इतने मुश्किल सवाल जवाब तो है नहीं
3: सर. आप चाहते हैं कि मुश्किल पूछे जाए आपसे, ये तो और आप हमारे लिए आसानी कर रहे हैं, हम तो जान के आसान.
2: मेरी नॉलेज चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं
3: सर? वही नॉलेज ही चेक कर रहे हैं, ताकि बच्चों की तो नॉलेज हम चेक करते ही रहते हैं. पेरेंट्स को अकल कितनी है, और प्लीज बुरा मत मानिएगा, अगर आप चाहते हैं तो आपसे हम ज्यादा मुश्किल सवाल पूछ सकते हैं बड़ों वाले.
2: पूछो यार.
3: अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90
2: पूरे 100.
3: ग्रेट ग्रेट मिस्टर मनोज, ग्रेट. सर आपका अगला थोड़ा सा मुश्किल सवाल है सर. पोषम मावई पोषम पाल, लाल किले में क्या हुआ? 100 रुपए की चोरी चुराई, अब तो कहाँ आना पड़ेगा?
2: जेल में जाना पड़ेगा.
3: ग्रेट सर, ग्रेट. रेडियो मिर्ची पर जो भी मुझसे बात करता है उसका बन जाता है क्या?
2: समझा नहीं मैं
3: बताता हूँ सर, इसका जवाब है मुर्गा. मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका प्यारा सा जो बेटा है रोहन, उसने आपका मुर्गा बनवाया है, और ये क्विज उसी का था. जो भी नवेद से बात करता है वो खुद बोलता है क्या?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष.
4: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स. कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.
6: लेडीज एंड जेंटलमैन,
7: On a ride.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। थाईलैंड में एक बंदा था जिसकी अंतिम इच्छा थी कि उसके अंतिम संस्कार में चीयर गर्ल्स आए।
4: हाँ, इसका भी सही है। इसने अपनी आफ्टर लाइफ पार्टी का फुल प्लान सेट कर रखा था और ऊपर से अब ये शोक सभा नहीं, शौक सभा होगी।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: दोस्ती का उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
7: भाई साहब, सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
8: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
9: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM, मिर्ची वन।
12: इट्स हॉट।
13: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो।

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयो. देखा लाइफ हो या डांस फ्लोर, थोड़ा कंफ्यूजन जरूरी है. और अगर करना है क्लियर आपके थॉट्स और दिखाना है प्यार हम लोगों को, आ जाइए हमारे सोशल मीडिया पे डीजे रिचर्ड ऑफिशियल, दैट्स हिम एंड ऑयो देखा AYNTIK, दैट्स मी ऑन इंस्टा एंड

प्यार पे वारी जावा क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल देगा। फिलहाल तो शरारत लेवल हाई, इनोसेंस ऑन एयरप्लेन मोड, लेट्स गो, वी हैव शरारत।

0: अभी टाइम नहीं मिलता है, और दूसरी बात अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स में लगे रहते थे।
1: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
2: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे मिर्ची इट्स हॉट
3: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन,
3: on a ride.
5: Club Mirchi.

की बातें पीने बाद पर ड्राइविंग पीने के बाद एकदम नहीं. नो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग. हैव फन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योनिका डांस फ्लोर पे आके बोलेंगे एक साथ बचना ए हसीनो.

Attention, please. This is a final call.

आज इस मुबारक मौके पर मैं आप लोगों को मेरी और कामिनी की दास्तान सुनाना चाहता हूं, मोहब्बत की दास्तान।

सोने लगते क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयो देखा मुझे तो ऑमलेट भी प्यारी लगती है बट सनी साइड अप लेट्स हैव सनी सनी ऑन क्लब मिर्ची.

0: It's Chicago, baby.
1: और इसी हाई नोट पे वॉल्यूम थोड़ा कम, यादें फुल लाउड लेके एग्जिट मारेंगे. लेकिन जाने से पहले साइन ऑफ ट्रैक आपके लिए, शिकागो बेबी. विल सी यू अगेन नेक्स्ट वीक. एंटिल देन यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बस पॉज होनी नहीं चाहिए आपकी डांसिंग. कैच यू ऑन द नेक्स्ट ड्रॉप. टाटा.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Hello, Mirchi Helpline.
2: Mirchi Helpline, what is the question?
1: मेरे हस्बैंड ऑफिस से रोज लेट आते हैं और खाना खा के सीधा सो जाते हैं, क्या करूं?
2: अरे मैडम, उनको बोलो खाना खा के सीधा ना सोए, बाएं साइड सोए, उससे क्या हेल्थ भी अच्छी रहेगी।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: पार्टी पीपल वॉल्यूम फुल मुड ऑन टर्बो. आज का सीन सिंपल है, नो ओवर थिंकिंग, ओनली ओवर डांसिंग. और नाचने के बहुत सारे रीजंस भी है. पहला वाला रीजन है हमारे डीजे रिचर्ड का जन्मदिन, जो कि 1 मई को आता है, मतलब लेबर उनका और हैप्पीनेस हमारा, जो कि हमें मिलता है क्लब मिर्ची से. थैंक यू सो मच रिचर्ड फॉर मेकिंग आवर वीकेंड्स फैंटाब्यूलस. एंड हियर्स योर लिसनर्स ड्री राइड म्यूजिक, श्रीजॉय भट्टाचार्य, सुदीप्त रॉय, डीवीजे अर्व, एकेडी, महेश चौगले एंड शाहिब घोष. विशिंग यू अ हैप्पी बिलेटेड बर्थडे. एंड मे आई ऐड माय नेम टू मिर्ची और योंतिका, गिविंग यू लोड्स ऑफ लव एंड अ वार्म हग. इश्क भी चल रहा है और डांस फ्लोर भी चलेगा. सो लेट्स लाइट इट अप.
1: डीजे रिचर्ड.

सब कुछ आज ग्रूव डिसाइड करेगा. द ट्यून इज टंटनन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका. एंड आई एम श्योर विद दिस काइंड ऑफ म्यूजिक वी आर ऑल गोइंग टू गेट लकी टुनाइट. Like the legend of the Phoenix.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। थाईलैंड में एक बंदा था जिसकी अंतिम इच्छा थी कि उसके अंतिम संस्कार में चीयर गर्ल्स आए।
4: भाई इसका भी सही है, इसने अपनी आफ्टर लाइफ पार्टी का फुल प्लान सेट कर रखा था और ऊपर से अब ये शोक सभा नहीं शौक सभा होगी।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: लेडीज एंड जेंटलमैन,
0: Club Mirchi.

बैक अगेन दिल में जो है बोल दे क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयो अंतिका और इसी बीट पे छोड़ दो यार खुद को डांस फ्लोर के नाम पे सौंप दो चुप क्यों रहे

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: हिमेश रेशमिया, अगर आप एक रेडियो जॉकी होते तो आप किस टॉपिक पर प्रोग्राम करते?
4: मैं डेफिनेटली लव का ही प्रोग्राम करना चाहता, जो प्रॉब्लम है कॉलर की और रोमांस में, लव में, छोटी छोटी बातें कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
3: हिमेश रेशमिया, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डाल।
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
0: Only on Mirchi. It's hot.
5: Cut, cut.
6: Who that?
5: Jassie.
6: Jassie? कौन सी वाली जस्सी?
4: छोटी छोटी बातें वो कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
3: हिमेश रेशमिया, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डा।
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
0: Only on Mirchi. It's hot.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Hello, Mirchi helpline?
2: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची बताओ सवाल क्या है.
1: सो आई रिसेंटली मेट अ गर्ल थ्रू अरेंज मैरिज सेटअप. यू नो शी इज गुड बट शी अर्न्स वे मोर देन मी. आई फील देयर इज अ प्रॉब्लम. क्या करूं?
2: तो तुम ये पूछ रहे हो कि वो तुमसे ज्यादा कमाती है तो मैं क्या करूं? शर्म करो शर्म.
3: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा.

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

रंगीला मूड हो या हार्ड ब्रेक बॉस, वी ऑल विल सर्वाइव एंड डांस. डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका विथ यू ऑन लव मिर्ची. दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iskabana, puskabana, sakabana. Rambana. Murga, murga. Navid wala murga. Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Bhai sahab, Srinivas Puri Thana se bol raha hu. Mobile kahan se mila aapko? ये सर आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
3: क्या रिपोर्ट आ गई है?
4: यही कि ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
3: मोबाइल चोरी हो गया?
4: हाँ जी। भाई साहब हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
3: हाँ पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
4: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
3: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
4: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
3: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
4: भाई मैं कह रहा हूँ चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
3: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
4: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर बनाता हूँ।
3: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
4: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
3: हाँ जी सर।
4: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
3: अच्छा बात करवा दो, कौन है ये?
5: ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर।
3: कुकड़ों को
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। ओ भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM Mirchi 1. It's hot.
7: Ladies and gentlemen, we are gonna go
8: on a ride.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार थाईलैंड में एक बंदा था जिसकी अंतिम इच्छा थी कि उसके अंतिम संस्कार में चीयर गर्ल्स आए।
4: भाई इसका भी सही है, इसने अपनी आफ्टर लाइफ पार्टी का फुल प्लान सेट कर रखा था और ऊपर से अब ये शोक सभा नहीं शौक सभा होगी।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
7: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
11: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव

इश्क बिना भी पार्टी चलती है, क्लब मिर्ची है शो का नाम। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका आपके साथ, बस बीट्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बाकी लिरिक्स अ लॉट ऑफ टाइम्स ना तुम जानो ना हम। क्यों?

Love Club Mirchi with DJ Richard and Mirchi or Yontika. आप बोलो या ना बोलो, groove and beats यहाँ पे बोलती है non-stop. And अगर आप सोच रहे हो कि आप break लोगे थोड़ा, सो जाइए सजना.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
4: शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय।
5: वो उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश, जोश, जोश।
4: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
5: सलमान खान एंड सैफ अली खान, वो तो उन्होंने कौन से पिक्चर में भाई,
4: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होंगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
5: मैं, मुझे नहीं पता।
4: हम साथ
5: कौन
4: साथ
5: सी है? ओ, हाँ, हम साथ साथ है। और
4: नाना पाटेकर, कटरीना कैफ,
5: ये भाई बहन थे। वेलकम।
3: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डाल,
2: बॉलीवुड, बॉलीवुड, बॉलीवुड बोल्डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Ladies and gentlemen.

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंदिका. तुम मेरे ना हुए बट दिस प्लेलिस्ट डेफिनेटली इज, एंड फॉर दैट क्लब मिर्ची के साथ एंजॉय करेंगे नॉनस्टॉप.

नहीं नहीं, पीने के बाद सिर्फ डांस करो, बातें नहीं. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योनिका एंड पीपल हु स्टिल वांट टू गिव लेक्चर्स आफ्टर ड्रिंक्स. ये है असली इमोशनल अत्याचार.

बैक अगेन क्लब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका आपके साथ। और अगर बॉडी मूव नहीं हो रही है तो वाईफाई ऑफ करके डांस ट्राई करो। रेडियो पे तो क्लब मिर्ची का प्लेलिस्ट सॉलिड है। डीजे रिचर्ड इज द किंग ऑफ मई, हिज बर्थडे वाज ऑन 1st, सो हे हैप्पी बिलेटेड बर्थडे वंस अगेन रिची।

के नशे में हर वीकेंड पे आ ही जाते हैं डीजे रिचर्ड एंड हिज प्लेलिस्ट ऑन क्लब मिर्ची। बाय द वे हैप्पी बिलेटेड बर्थडे रिची। डीजे रिचर्ड के साथ मैं भी रहती हूँ, मेरा नाम है मिर्ची ओयो अंतिका।

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: हेलो भाई, संतोष से बात कर रहा हूँ। मेरी
2: बोल रहा हूँ।
3: हाँ जी भाई, संतोष यहाँ थाने से बोल रहा हूँ। आपको थाना आना पड़ेगा।
2: क्यों?
3: मैं आपको यही बता रहा हूँ, आप वहाँ पे गए थे जंतर मंतर?
2: गए थे जी।
3: आपने धरने पे बैठे थे आप?
2: जी बैठे थे।
3: वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ था, सबके लाठियाँ पड़ी थी, आपके रह गई हैं, आपकी 3 लाठियाँ लगनी है, यहाँ आके लगवा लो जल्दी से।
2: हाँ बताओ। जस्टिस के लिए गए थे सर वहाँ पे।
3: जस्टिस कैसा? जस्टिस भाई कैसा, मैं ये नहीं जानता जस्टिस। आप वहाँ पे गए थे, आप इस बात को मान रहे हो?
2: जी गए थे जी।
3: लाठी चार्ज हुआ वहाँ पे?
2: जी।
3: आपके पड़ी लाठी कोई?
2: मेरे तो नहीं पड़ी।
3: वही तो मैं कह रहा हूँ, आपके 3 लाठियाँ रख गई हैं यार, 3 लाठियाँ आपके लगनी है और आपको आने में परेशानी है, तो आपके एरिया इंचार्ज से बोल देंगे, वो वहाँ चले जाओ, वो 2-3 लाठियाँ मार देगा आपके यार। वैसे ही मीडिया ने हमें बदनाम कर रखा है, वो कह रहे हैं सबकी लाठी पड़ी, आपके पड़ी नहीं, आप आगे बढ़वाओ यार जल्दी से।
2: सर आप नाराज क्यों?
3: नहीं नाराज की बात है, बताइए। हाँ बताओ।
2: सर अपने दोस्तों के कहने पे गया था, कहाँ पे? बहुत दूर था सर, लाठी।
3: तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आप बहुत दूर थे ना वहाँ से भाई,
2: बहुत दूर था सर
3: भाई। इतने मैं यही तो कह रहा हूँ, बहुत दूर खड़े थे आप। आपके कोई लाठी लगी है नहीं लगी है बताओ?
2: दूर था तो सर मेरे कैसे लगती?
3: वही तो मैं कह रहा हूँ यार, आप बच गए, 3 लाठियाँ रजिस्टर में चढ़ाई, अब आपके नहीं लगाएंगे तो बात कैसे बनेगी?
2: सर नाराज क्यों है?
3: नहीं
2: तो
3: नाराजगी की तो बात है,
2: मैं दोस्तों के कहने पे गया।
3: तो अब मैं आपसे, मैं भी आपका दोस्त हुआ, आपको आ जाओ, 3 लाठियाँ मारेंगे आपके, छोड़ देंगे आपको यार, क्या परेशानी है? वो भी हमसे परेशानी ये हो गई कि रजिस्टर में 3 लाठी चढ़ा दी, इसलिए मारनी है भाई, जल्दी आ जाओ भाई यार।
2: सर मैं शाम में आ जाऊंगा
3: यार। नहीं नहीं यार, मेरे को तमीज सिखा रहे हैं आप, हैं? मेरे को तमीज सिखा रहा है, मैं यार तमीज से बात कर रहा हूँ, मैं तमीज से बात कर रहा हूँ भाई। इस बात समझ में नहीं आ रही, लाठी चार्ज हुआ था, उसमें 3 लाठियाँ तुम्हारे नाम की है,
2: वो
3: बहुत दूर था।
2: नाराज
3: वाली बात है यार। ओके चलो, लाठी मत करो, लाठी नहीं मारेंगे, मुर्गा बन जाओ। संतोष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। भैया मुझे किसी ने बताया था तुम धरने पे गए थे और तुम्हारी कोई लाठी नहीं लगी थी, हालांकि वहाँ लाठी चार्ज हुआ था और अब तो अब मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए आप
2: कुकड़ों को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। ये पगला।
5: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
4: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
6: बार बार।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
4: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
8: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो
9: ऑन अ राइड।
10: Mirchi.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। थाईलैंड में एक बंदा था जिसकी अंतिम इच्छा थी कि उसके अंतिम संस्कार में चीयर गर्ल्स आए।
4: भाई इसका भी सही है, इसने अपनी आफ्टर लाइफ पार्टी का फुल प्लान सेट कर रखा था और ऊपर से अब ये शोक सभा नहीं शौक सभा होगी।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
7: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
8: बहुत कुछ होगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM
11: मिर्ची 1,
12: इट्स हॉट।
13: लेडीज एंड जेंटलमैन,

हर बार दिल टूटेगा और बीट ड्रॉप होगी ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका. आई जस्ट माइट प्ले दर्दे डिस्को नाउ फॉर यू. लेट्स गो.

0: Hot Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: रजा मुराद, जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर द अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज द अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
4: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स स्टैंडर्ड में मैं 2 बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
3: ओ वेल वेल, रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood
2: Boldal. Only on Mirchi, it's hot.
5: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go.
6: On a ride.

0: Ready for this?
1: मैं और तू रिचर्ड एंड मिर्ची ओयो देगा काफी है हम और हमारे साथ क्लब मिर्ची एंजॉय कर रहा है पूरा देश इनफैक्ट इंटरनेशनल है बॉस क्लब मिर्ची जा रही है सैया जी द बेसलाइंस टू गर्ल्स

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये।

0: मिर्ची हेल्पलाइन?
1: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
0: मेरे घर का फ्रिज बिगड़ गया है, क्या करूं?
1: फ्रिज बिगड़ गया है, बड़ा ही गंभीर मामला है। मैं तो यही कहूंगा कि परवरिश में ध्यान रखना था, अब क्या?
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are

Voices in my head go.

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो,
3: गुड इवनिंग मिस्टर मनोज।
2: गुड इवनिंग
3: मिस्टर मनोज, मैं तिवारी बोल रहा हूँ ऑल इंडिया चिल्ड्रन सोसाइटी से।
2: ओके
3: सर, आपको थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि हम हर हफ्ते एक फंक्शन रखते हैं जिसमें ज्यादातर पेरेंट्स और ज्यादातर बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। अनफॉर्चुनेटली आप इत्तेफाक से यहाँ पे आ नहीं पाए, तो हम उन लोगों को भी फोन कर रहे हैं और उनसे सवाल जवाब पूछ रहे हैं ताकि बच्चे की तरह उनकी भी नॉलेज अच्छी रहे। राइट फाइन। तो सर आपसे दो चार सवाल करेंगे, प्लीज आपके पास दो मिनट होंगे। और यहाँ पे कई लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, हमने आपको कनेक्ट कर रखा है, तो कुछ सवाल आपके होंगे, जवाब देने पड़ेंगे। राइट सर। मिस्टर मनोज आपके सवाल ये रहे, टू टू जा
2: टू टू जा फोर।
3: वेट सर, वेट।
2: इवेंट ये फंक्शन कहाँ हो रहा है?
3: सर यहीं पे लोधी रोड पे हो रहा है, अगर आप आना चाहते हैं तो आ भी जाइएगा। दूसरा आपका सवाल सर, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो
2: डर जाएगी।
3: गुड सर, वेरी गुड सर।
2: सर ये कोई इतने मुश्किल सवाल जवाब से है नहीं।
3: सर आप चाहते हैं कि मुश्किल पूछे जाए आपसे, ये तो और आप हमारे लिए आसानी कर रहे हैं, हम तो जान के आसान।
2: मेरी नॉलेज चेक कर रहे हैं क्या कर रहे हैं
3: सर? वही नॉलेज ही चेक कर रहे हैं, ताकि बच्चों की तो नॉलेज हम चेक करते ही रहते हैं। पेरेंट्स को अकल कितनी है, और प्लीज बुरा मत मानिएगा, अगर आप चाहते हैं तो आपसे हम ज्यादा मुश्किल सवाल पूछ सकते हैं बड़ों वाले।
2: पूछो यार।
3: अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90
2: पूरे 100।
3: ग्रेट ग्रेट मिस्टर मनोज, ग्रेट। सर आपका अगला थोड़ा सा मुश्किल सवाल है सर। पोषण माह भाई पोषण पाल, लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की चोरी चुराई, अब तो कहाँ आना पड़ेगा?
2: जेल में जाना पड़ेगा।
3: ग्रेट सर, ग्रेट। रेडियो मिर्ची पर जो भी मुझसे बात करता है उसका बन जाता है क्या?
2: समझा नहीं मैं।
3: मैं बताता हूँ सर, इसका जवाब है मुर्गा। मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका प्यारा सा जो बेटा है रोहन, उसने आपका मुर्गा बनवाया है, और ये क्विज उसी का था। जो भी नवेद से बात करता है वो खुद बोलता है क्या?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: Ladies and gentlemen.

देगा। लाइफ हो या डांस फ्लोर, थोड़ा कंफ्यूजन जरूरी है। और अगर करना है क्लियर आपके थॉट्स और दिखाना है प्यार हम लोगों को, आ जाइए हमारे सोशल मीडिया पे, डीजे रिचर्ड ऑफिशियल, दैट्स हिम एंड ऑन योंटिका, AYNTIK, दैट्स मी ऑन इंस्टा एंड फेसबुक।

0: Ritchie, only on Ritchie. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Ritchie stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। थाईलैंड में एक बंदा था जिसकी अंतिम इच्छा थी कि उसके अंतिम संस्कार में चीयर गर्ल्स आए।
4: भाई इसका भी सही है, इसने अपनी आफ्टर लाइफ पार्टी का फुल प्लान सेट कर रखा था और ऊपर से अब ये शोक सभा नहीं शौक सभा होगी।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: Our business is our business, none of your business.
7: पर दीदी, our entertainment is your entertainment. Entertainment.
8: Qatar का number one radio station.
9: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.
10: Ladies and gentlemen.

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयो। देखा लाइफ हो या डांस फ्लोर, थोड़ा कंफ्यूजन जरूरी है, और अगर करना है क्लियर आपके थॉट्स और दिखाना है प्यार हम लोगों को, आ जाइए हमारे सोशल मीडिया पे डीजे रिचर्ड ऑफिशियल, दैट्स हिम एंड ओयो देखा AYNTIK, दैट्स मी ऑन इंस्टा

के प्यार पे वारी जवा क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल देगा। फिलहाल तो शरारत लेवल हाई, इनोसेंस ऑन एयरप्लेन मोड। लेट्स गो, वी हैव शरारत।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है. What did you steal in your childhood?
4: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे. मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसके चॉकलेट्स खत्म कर दे कभी, और आज तक बोला नहीं कि वो मैं था.
3: What a way to confess, अभय देओल. अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज ए चाइल्ड. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोल्डाल. Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boldar.
2: Only on Mirchi. It's hot.
5: Cut, cut.
6: कौन है?
5: अज्जू.
6: अज्जू कौन?
5: अज्जू ना आए बालमा, सावन बीता जाए. होए!
6: Cut, cut. Who that?
7: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot.
8: Ladies and gentlemen. We are gonna

की बातें पीने बाद पर ड्राइविंग पीने के बाद एकदम नहीं. नो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग. हैव फन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योनिका डांस फ्लोर पे आके बोलेंगे एक साथ बचना ए हसीनो.

आज इस मुबारक मौके पर मैं आप लोगों को मेरी और कामिनी की दास्तान सुनाना चाहता हूं, मोहब्बत की दास्तान।

0: It's Chicago, baby.
1: और इसी हाई नोट पे वॉल्यूम थोड़ा कम, यादें फुल लाउड लेके एग्जिट मारेंगे. लेकिन जाने से पहले साइन ऑफ ट्रैक आपके लिए, शिकागो बेबी. वी सी यू अगेन नेक्स्ट वीक. एंटिल देन यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बस पॉज होनी नहीं चाहिए आपकी डांसिंग. कैच यू ऑन द नेक्स्ट ड्रॉप.

0: एक पके माटी के पात्र में दुख शर्करा युक्त करा कंदरा उपजित उषण पर प्रधान हो तो काकशेष्टा बकोना ध्यान अमर स्वान निद्रा अवश्य प्राप्त हो सकते हैं। नमस्कार।
1: मैंने दूरदर्शन में सुना है।